मीडियम 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम या 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह का समय है, उठिए, जागिए, नींद को त्यागिए, बिस्तर को त्यागिए, उठिए, अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण कीजिए और आकाशवाणी लखनऊ ट्यून इन कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे कार्यक्रम जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाते ही हैं, बल्कि आपको अंदर तक प्रसन्न और एकदम ऊर्जावान बना देते हैं। तो जल्दी जल्दी आंखें खोलिए और स्वागत कीजिए इस नई सुबह का, जो आपके लिए अनंत संभावनाएं और न जाने कितनी सारी तोहफे लेकर आया है आज की ये सुबह। तो उठिए और इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्ते लखनऊ, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और

0: प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रमों में हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियां, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, यही तो ध्येय है हमारा। तो सबसे पहले कृषि से जुड़ी बातें। कृषि चर्चा में आज की चर्चा का विषय है सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
2: शुभ प्रभात। कद्दू वर्गीय सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं इस मौसम में। कारण यह है कि यही एक मौसम है जिसमें हम बहुतायत से इसकी खेती करते हैं। करने को तो इसको रबी में भी करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, लेकिन जायद की बात ही कुछ और होती है। कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं उनकी देखभाल में यह कहा जाता है कि हमें कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि इस समय कीट पतंगे या जो भी रोग के कारक हैं वह खुले में रहते हैं, फसलें उतनी रहती रहीं, उनके लिए आश्रय स्थल उतना रहता नहीं, इसलिए इनके सुरक्षा कार्य को संपादित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखते तो रबी मौसम में है कि जो चोड़िल फफूदी होती है वह ज्यादा लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो इसमें हम खीरा, परवल, खरबूजा और करेला विशेष रूप से उगाते हैं उस पर ये पाई जाती है मृद्रोमिल आसिता। रोग वर्षा ऋतु के उपरांत जब तापमान 20 से 22 सेंटीग्रेड होता है तब विकराल रूप धारण करता है। इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो शिराओं द्वारा सीमित होते हैं, पत्ती के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं, अधिक नमी जो है उसकी उपस्थिति में इन भागों के नीचे पत्ती की निचली सतह पर मृद्रोमिल कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसके प्रबंधन के लिए भी वही सामान्य सी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि बोने के लिए रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, बीजों का एग्रोसान नामक कवकनाशी जो है उसका 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने पर भी फायदा होता है, मैंकोजेब 0.25% का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी नियंत्रण के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में देखा गया है। पूरी तरह रोगग्रस्त लताओं को निकाल कर जला देना चाहिए, क्योंकि वहां छोड़ेंगे तो फिर ये दूसरी जगह

0: फैलाएंगे। रोगरहित बीज उत्पादन करने के लिए गर्मी की फसल से बीज उत्पादन करना बेहतर होता है, इसलिए इसी मौसम को आप चुनें जिससे कि बीज आपका स्वस्थ मिले और अच्छा रहे। एक मलानी रोग होता है और साथ ही साथ जड़ सड़न जिसे हम कह लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है। यह आमतौर पर खीरा और खरबूजा में पाया जाता है। रोग ग्रसित एवं पूरा पौधा मुरझा जाता है, पौधे की जड़ भी सड़ जाती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और सूख ही जाता है। इसके प्रबंधन के लिए भी जैसा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया में अपनाया जाता है, रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर जला देना, बीज को कार्बंडेजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर उपचारित करके बोए हैं तो फिर कोई चिंता नहीं। धान एवं मक्का के साथ अगर हम इसे देखें तो 4 से 5 साल तक का फसल चक्र अपनाया जाता है जब, तो स्थिति बेहतर हो जाती है। खेत की गर्मी में जुताई करें और हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना अगली आने वाली फसल के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। कद्दू वर्गीय फसलों की बात हम करते हैं तो उसमें फल गलन रोग भी बहुत ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्य रूप से घिया तोरी, चिचिंडा, परवल, लौकी के साथ साथ करेला के फलों पर कवक की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से फल सड़ने लगते हैं। धरातल पर पड़े फलों का छिलका नरम गहरे हरे रंग का हो जाता है और जब नम वायुमंडल होती है तो उस स्थिति में सड़े हुए भाग पर रुई के समान घने कवक जाल विकसित हो जाते हैं, एक सामान्य सी इसकी पहचान है। भंडारण और परिवहन के समय भी फलों में यह रोग फैलता है और फिर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कारण यह होता है कि पूरी फसल तैयार रहती है, केवल मार्केट में ले जाकर के बेचने की स्थिति जो होती है उस बीच यह नुकसान पहुंचा देता है, तो पूरे किए किराए पर पानी फेर देता है। इसके लिए जरूरी यह है कि खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें, ज्यादा पानी न लगाएं। खेत की गर्मी में जुताई अगर की गई रही है, अगर ऐसी स्थिति रही है, तो फिर मान करके चलें कि इससे आपको काफी हद तक सुरक्षा मिलेगी। और ये सुरक्षा अगर इस साल नहीं मिल पा रही है तो अगले साल के लिए ध्यान रखें कि खेत की गहरी खोप गर्मी की जुताई जिस खेत में लगाना है उसे अभी से कर दें। हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना भी बेहतर सी स्थिति उत्पन्न करता है। फलों को भूमि के स्पर्श से बचाने का प्रयत्न तो बिल्कुल समसामयिक बात है, उसको आपको अभी करना ही करना है। भंडारण एवं परिवहन के समय फलों में चोट लगने से नुकसान होता है, हवादार एवं खुली जगह पर रखें। बेहतर होगा क्रेट्स का प्रयोग करें, वह सुरक्षा प्रदान करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, एंथ्रेक्नोज हो या फिर इसी तरीके के कुछ और होते हैं, लेकिन जो हमारी रोकथाम की प्रक्रिया है कद्दू वर्गीय फसलों में, बस इतने तक का ही रखेंगे ध्यान तो कोई भी फसल जो कद्दू वर्गीय है इस समय की हमारी जायद की, वह विशेष रूप से सुरक्षित रहेगी।
1: तो आज की कृषि चर्चा में विषय था सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और इसी के साथ नमस्ते लखनऊ में श्रोताओं, हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं आज सुविचार में एक बहुत ही प्यारा सा विषय, जिज्ञासा, स्वर एवं मालिक डॉक्टर शिवा राकेश का।
2: जिज्ञासा में स्वयं अपनी एक ज्ञान शक्ति होती है। जिज्ञासा के जागते ही किसी बात को जान सकने का सहायक ज्ञान स्वयं ही विकसित होने लगता है। जो जो जिज्ञासा गहरी होती जाती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति ने ही उसे दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं अन्वेषक बनाया है। यदि जिज्ञासा न होती तो मनुष्य में इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों जागते कि वे क्या है, ये विराट विश्व क्या है, इसका रचयिता कौन है और इस संपूर्ण प्रपंच का प्रयोजन क्या है, इन सब का आदि कहाँ से होता है, अंत कहाँ होगा और भला क्यों इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में वह परिश्रम करता। जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य आज जिस ज्ञानपूर्ण स्थिति में आया हुआ है कभी ना पाता। आज मनुष्य के ज्ञान भंडार में जो कुछ संचय है वह आगे भी जो वृद्धि होगी उसका भी मुख्य हेतु उसकी जिज्ञासा ही होगी। आज यदि मनुष्य की जिज्ञासु वृत्ति कुंठित अथवा तिरोहित हो जाए तो उसका ज्ञान अभिमान जहां का तहां ठप हो जाए और तब आगे भी ये जान सकने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए कि आखिर इन मंगल, चंद्र अथवा बुध ग्रहों पर क्या है, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है? क्या इन पर भी उसी प्रकार जीवन का अस्तित्व हो सकता है जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी पर? यदि इनमें

0: जीवन है तो वहाँ के जीव किस प्रकार के हैं? मनुष्य की भांति उनके परम लक्ष्य मोक्ष की क्या परिभाषा होगी? और न जाने उनका साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल, शिल्प व रहन सहन किस प्रकार का होगा? जिज्ञासा के आधार पर ही तो मनुष्य एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर आगे बढ़ता है। जब किसी में कुछ जानने अथवा सीखने की उत्सुकता ही न रहेगी, तब वे क्यों व्यर्थ में किसी विषय पर ज्ञानोपार्जन करेगा? जो जिज्ञासु है वही गहरे बैठता है। जिज्ञासु की दृष्टि सामान्य लोगों से कुछ अधिक पैनी और खोजक होती है। किसी एक दृश्य या घटना को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वे उसके लिए एक साधारण बात होती है, किंतु जब उसी विषय पर किसी जिज्ञासु व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वही साधारण बात कोई दार्शनिक अथवा कवित्वपूर्ण अभिव्यक्ति पाकर असाधारण बन जाती है। जिज्ञासु के लिए संसार की हर घटना एक रहस्य एवं एक महत्व लिए रहती है। एक रसोई के लिए भाप से बटलोई का ढक्कन उछलना सामान्य बात होती है, किंतु स्टीवेंसन के लिए भाप से ढक्कन का उठना गिरना एक असाधारण रहस्य की बात बनकर इंजन के आविष्कार का कारण बनी। एक माली के लिए पेड़ से फल गिरना एक सामान्यतम घटना है, किंतु उसके आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के ज्ञाता न्यूटन के लिए वह असाधारण महत्व की बात थी। इतनी असाधारण कि आगे चलकर उसी आधार सूत्र के बल पर अधर में लटके इस ब्रह्मांड के हर ग्रह नक्षत्र की चाल तथा अवस्था का रहस्य मालूम कर लिया गया। जिज्ञासा ज्ञान की महान जननी है। मनुष्य की जिज्ञासु बुद्धि उस चींटी की तरह सतत प्रयत्नरत रहती है जो सात पर्दों में छिपी हुई शक्कर को भी खोज कर दम लेती है। जिज्ञासु बुद्धि का सहज गुण होता है कि जब तक वह अज्ञात रहस्य को खोज नहीं लेती, संतुष्ट नहीं होती, दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। जिज्ञासु की बुद्धि बड़ी ग्रहणीय होती है। वे एक बार में ही कोई बातें देख सुनकर ग्रहण कर लेती है और फिर कभी नहीं उसे भूलती। अजिज्ञासु बुद्धि कुंद एवं कुंठित होती है। हजार बार देखने, सुनने और पढ़ने पर भी वे ना तो किसी बात को ठीक से समझ पाती है ना ही याद रख पाती है। जिज्ञासा का अभाव मनुष्य को मंद बुद्धि बना देता है। जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी बात की तह तक बैठ कर उसमें से किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता खोज लाता है। जिज्ञासा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चारों उन्नतियों की हेतु होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जिज्ञासा को प्रमाद पूर्वक नष्ट न करे, उसे विकसित एवं प्रयुक्त करे। और यदि जिज्ञासा नहीं है तो उसे चाहिए कि वह तन्मयता एवं गहरे पैठने के अभ्यास से उसे पैदा करे, क्योंकि जिज्ञासा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों महान क्षेत्रों में प्रगति का आधार बनती है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि जिज्ञासा हमारे जीवन को कितनी उन्नति प्रदान करती है। इसलिए जिज्ञासा होना मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है और इसको स्वाभाविक रूप से जीवित रहने दीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं अपनी आज की भक्ति धारा को। आरंभ करते हैं आज की आराधना।

सच्ची भक्ति वो है जो किसी स्वार्थ या इच्छा के बिना की जाए। जब मन में केवल प्रभु के प्रति प्रेम हो तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है।

जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ शांति और सुकून है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके हर मार्ग को आसान बना देते हैं।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज इसमें लीजिए सुनिए मंत्री सुमंत से श्री राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन का वृतांत सुनकर राजा दशरथ के मूर्छित होने का वर्णन। यह है अयोध्या कांड का भाग 183।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है।

राज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ है? कहाँ है लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है। श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 183। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशत् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देव

0: महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉक्टर एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्ने ही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी हो गई है कि हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दे दें। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो भारत की धरती पर सदियों से पाया जाता है और जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक विशेष स्थान रखता है। हम बात कर रहे हैं बबूल की, एक ऐसा पेड़ जो हमें छांव भी देता है, दवा भी देता है।

0: और दैनिक जीवन की अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सहज समाधान भी। बबूल का नाम आते ही बहुत से लोगों के मन में इसके कांटों की छवि उभरती है, लेकिन श्रोताओं, अगर इसकी शाखाओं पर कांटे हैं तो उसके भीतर असंख्य औषधीय गुणों का भंडार भी छिपा है। बबूल को संस्कृत में खदिर कहा जाता है, जिसका अर्थ ही होता है वो जो शरीर को शुद्ध करे। इसकी पत्तियाँ, छाल, गोंद, बीज, यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी औषधीय दृष्टि से भी उपयोगी मानी जाती हैं। बबूल सबसे पहले याद आता है दांतों की देखभाल में। पुराने जमाने में जब टूथपेस्ट और ब्रश नहीं होते थे, तब बबूल की दातुन ही सबसे प्रभावी उपाय मानी जाती थी। आज भी कई लोग इसकी टहनी से दातुन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये न केवल दांतों को साफ करती है बल्कि मसूड़ों को मजबूती भी देती है, सांसों की दुर्गंध को दूर करती है और मुंह के भीतर के कीटाणुओं का भी नाश करती है। बबूल की छाल में टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है, जो एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है और मसूड़ों की सूजन या खून बहने जैसी समस्याओं में राहत देता है। बबूल का गोंद भी उतना ही लाभकारी है। आयुर्वेद में इसे बबूल गोंद के नाम से जाना जाता है और ये खासतौर पर स्त्रियों की कमजोरी, गर्भावस्था के बाद की थकावट और बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सर्दियों में बनाए जाने वाले पिंडी या गोंद के लड्डुओं में इसका उपयोग आम है, जो शरीर को ताकत देने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो बबूल की छाल का काढ़ा गैस, अपच, दस्त और आंतों की सूजन में राहत देता है। ये आंतरिक अंगों को साफ करने और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। यदि किसी को बार बार मुंह में छाले हो रहे हो या गले में खराश बनी रहती हो, तो बबूल की छाल को उबालकर गरारा करने से बहुत लाभ होता है। ये गले के कीटाणुओं को नष्ट करता है और शांति पहुँचाता है। बबूल का पेड़ सूखा सहन कर सकता है, ये बहुत कम पानी में भी जीवित रहता है और यही विशेषता इसे हमारी त्वचा और बालों के लिए भी उपयुक्त बनाती है। बबूल की छाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से मुहासे, फुंसियाँ और त्वचा के अन्य संक्रमणों में आराम मिलता है। इसके गोंद का उपयोग बालों को जड़ से मजबूत करने वाले तेलों और लेपों में भी किया जाता है। बाल झड़ने की समस्या हो या रूसी हो, बबूल के नुस्खे अक्सर दादी नानी के घरेलू ज्ञान में पाए जाते हैं। बबूल का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये मन को भी स्थिर करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात और पित्त को संतुलित करता है, विशेष रूप से वात जन्य रोग जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया और स्नायविक कमजोरी में बबूल के तेल और काढ़े का उपयोग किया जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर की जड़ों को मजबूती देता है। जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो तना और शाखाएं भी स्थिर रहती हैं, वैसे ही शरीर भी अंदर से सुदृढ़ रहता है। ग्रामीण भारत में बबूल का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे ईंधन के रूप में, छाया देने वाले वृक्ष के रूप में और खेतों की मेड़ पर बांध की तरह भी लगाया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे केवल एक कांटेदार पेड़ के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन में एक औषधि के रूप में स्थान दें। आधुनिक जीवन में हम हर समस्या का हल दवाओं और सप्लीमेंट्स में खोजते हैं, लेकिन हमारे आसपास बबूल जैसे प्राकृतिक वैद्य मौजूद हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को धीरे धीरे ठीक करने की शक्ति रखते हैं। हमें बस थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी जिज्ञासा रखनी है और फिर हमारे घर, हमारी गली, हमारे खेत सब कुछ औषधालय बन सकता है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप बबूल के पेड़ के पास से गुजरें, तो बस उसके कांटों को न देखें, उसके भीतर छिपी सेहत की उस मिठास को पहचानिए, जो न तो बोतल में बंद है, न गोली की शक्ल में, बल्कि प्रकृति की गोद से सीधा हम तक पहुंचने वाला उपहार है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओ, आज की स्वास्थ्य चर्चा में आपने जाना कि प्रकृति ने हमें कितने उपहार दिए हैं। बस आवश्यकता है अपने अंदर की जिज्ञासा को बनाए रखने की और उन चीजों को जानने की और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए उनके उपयोग की। और नमस्ते लखनऊ में, अब वक्त हो गया है कि हम आपको बता दें कि

आज कौन कौन से कार्यक्रम हम अपनी विभिन्न सभाओं में आपके लिए लेकर आए हैं। आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत सुनिएगा खेल दर्पण, ये आज आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश होगा। रात 9:30 पर फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो मेरी पसंद। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज सुनेगा चंद्रशेखर वर्मा की कहानी फूल तोड़ना मना है। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा हाथरस और रायबरेली जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का, आज इसमें सुनिएगा आकाशवाणी रामपुर की पेशकश जिसमें रेडियो के 90 साल पूरे होने पर बेमिसाल 90 साल, इस मौजू पर बातचीत होगी डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी से। आपसे मुलाकात करेंगे फरीदुल्ला खान। अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 में विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय होगा सोशल मीडिया से बढ़ती व्यापार की संभावनाएं। सुबह 7:30 पर श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता, इसमें पर्यावरण संरक्षण मिशन लाइफ पर केंद्रित रूपक सुनिएगा, विषय होगा पुकारती धरा हमें, आलेख शिवानी श्वेतांबरा श्रीवास्तव का। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में मिथिलेश कुमार झा से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा धान की सीधी बुवाई तकनीक, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है 5:00 और 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में गौरी त्रिवेदी की वार्ता सुनिएगा सहकारी समितियों से सशक्तिकरण। किसान भाई सुनिए अपना कार्यक्रम खेती किसानी 6:50 पर, इसमें डॉक्टर दिनेश सिंह से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा गन्ने की फसल में समन्वित रोग प्रबंधन, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज सुनिए का ख्याल गायन, कलाकार होंगे जगदीश प्रसाद। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा नितिन मुकेश के गाय कुछ भजन, और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर, और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा पूजा द्विवेदी के गाय कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की, और अब से कुछ ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे आज की विविधा।

एड्स की जरूरत होती थी, लेकिन आज का दौर डिजिटल हो चुका है। अब एक छोटा दुकानदार भी अपने मोबाइल फोन से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। जी हाँ, सोशल मीडिया आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि व्यापार बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। आज भारत में करोड़ों लोग हर दिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि छोटे से छोटा व्यवसाय भी अब ऑनलाइन अपनी पहचान बना रहा है। मान लीजिए किसी महिला ने घर से ही अचार, पापड़ या कपड़ों का छोटा व्यवसाय शुरू किया। पहले उसे केवल अपने मोहल्ले तक ग्राहक मिलते थे, लेकिन आज वही महिला सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद की फोटो और वीडियो डालकर पूरे शहर, पूरे राज्य और यहाँ तक के पूरे देश से ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। यानी सोशल मीडिया ने व्यापार की सीमाओं को खत्म कर दिया है। अब मन में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया व्यापार के लिए इतना प्रभावी क्यों है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? पहला फायदा, कम खर्च में प्रचार। पहले विज्ञापन करवाना बहुत महंगा था, लेकिन आज एक छोटा व्यापारी भी अपने मोबाइल से मुफ्त में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकता है। अगर कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो या पोस्ट हजारों लोगों तक अपने आप पहुंच जाती है, यानी कम लागत में ज्यादा प्रचार। दूसरा फायदा, सीधे ग्राहकों से जुड़ाव। सोशल मीडिया व्यापारियों को अपने ग्राहकों से सीधे बात करने का मौका देता है। ग्राहक कमेंट करते हैं, सवाल पूछते और तुरंत जवाब भी पा लेते हैं। इससे भरोसा बढ़ता है और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, नए ग्राहकों तक सोशल मीडिया पहुंच बनाता है। आज लोग खरीदारी से पहले सोशल मीडिया पर चीजें देखते हैं। अगर आपका व्यापार ऑनलाइन मौजूद है तो नए ग्राहक आसानी से आपको ढूंढ सकते हैं। यानी सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार नहीं करता बल्कि ग्राहक भी लाता है। आज बड़े बड़े ब्रांड ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, किसान, शिक्षक, कलाकार और गृहिणियां भी सोशल मीडिया का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कई युवा आज सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के दम पर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। कई ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है तो कोई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कमाई कर रहा है। ये डिजिटल क्रांति रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है, लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती, भरोसा बनाए रखना। सोशल मीडिया पर लोग उसी व्यापार पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी और गुणवत्ता बनाए रखता है। अगर कोई गलत जानकारी देता है या खराब सामान बेचता है तो उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत जल्दी फैल जाती है। इसलिए ऑनलाइन व्यापार में विश्वास और पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

दूसरी चुनौती लगातार सक्रिय रहना। सोशल मीडिया पर सफल होने के लिए नियमित रूप से अच्छा कंटेंट डालना पड़ता है, ग्राहकों के सवालों का जवाब देना पड़ता है और नए ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। यानी ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मेहनत और समझदारी का काम भी है। दोस्तों, आने वाले समय पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। जो लोग आज सोशल

सोशल मीडिया की ताकत को समझ लेंगे वही भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। सरकार भी डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दे रही है। छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई उत्पाद है या कोई छोटा व्यवसाय है तो सोशल मीडिया आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। याद रखिए, आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि सफलता का रास्ता बन चुका है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ने व्यापार की दुनिया को बदल दिया है। इसने छोटे व्यापारियों को नई पहचान दी है, नए ग्राहकों से जोड़ा है और सफलता के नए दरवाजे खोले हैं। जरूरत है सही सोच, मेहनत और डिजिटल समझ की। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी डिजिटल दुनिया का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाएंगे, इसी कामना के साथ अब आज की विविधा से अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार नंदिनी का। मीडियम वेव 401.6 एक मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आपसे थोड़ी ही देर में।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित

साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन

0: द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।

0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देश भर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीन

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है, तो दिन है आपके मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह का। तो आज की ये पेशकश आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी दोस्त मैं नंदिनी मिश्रा, और मेरे साथ हैं
1: प्रीति श्रीवास्तव।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार। प्रीति, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह का
1: चौथा मंगलवार है।
0: बिल्कुल, आज चौथा मंगलवार है और इस दिन हम अपने मंगलवार और शनिवार को उनका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह लेकर आते हैं। और सबसे पहले बात, एक बहुत ही प्यारी सी बात
1: नंदिनी, बात यह है कि दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ होती
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, कितनी सुंदर बात आपने कही प्रीति, क्योंकि आदमी अपने आप से ही दूसरे का आकलन करता है,
1: आकलन
0: उसको
1: करता
0: देख
1: है।
0: के आकलन करता है, अपनी समझ के हिसाब से ही उसके बारे में समझता है, सोचता है। और क्योंकि हम लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, किसी को देखते ही, उसकी बातें सुनते ही उसको जज करने लगते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, पैरों से कांटा निकलने के बाद चलने में जो मजा आता है, वही मजा मन से अहंकार निकलने के बाद जीवन जीने में आता है।
1: क्या बात है नंदिनी, सुबह सुबह इतनी बढ़िया बात आपने बता दी हम लोगों को और हमारे श्रोताओं को कि मन से अहंकार का कांटा निकल जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है,
0: बहुत मुश्किल
1: अहंकार निकलना दूसरों के सामने आप अपने आप को
0: बिल्कुल
1: छोटा नहीं
0: अपने
1: समझना,
0: मैं को
1: खत्म
0: छोड़
1: करना।
0: देना, खत्म कर देना
1: बहुत
0: बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इस पे प्रयास किया जाए तो व्यक्ति निस्संदेह अपने मैं को पीछे रख कर अगर अपने संबंधों को, अपनी सूझबूझ को आगे रखे तो जीवन बहुत ही खुशहाल और सुंदर बन जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।

0: ये खूबसूरत गीत नंदिनी है फिल्म खोटे सिक्के का, और जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत है आर डी बर्मन साहब का, और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: और ये गीत राग खमाज पर आधारित है। जल्दी से राग खमाज के बारे में भी बता देते हैं। खमाज साठ का आश्रय राग है ये। इसके आरोह में ऋषभ रे वर्जित होता है और दोनों निषाद शुद्ध और कोमल का प्रयोग होता है, जबकि
0: अवरोह में सातों स्वर लगते हैं।

0: देखो प्रीति, आदमी को लोग चाहे जैसे भी जज करें, लेकिन उसको जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: और देखो, आगे बढ़ने की बात से आया कि 2026 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है हमारे लिए। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर जानकारी मूल्यवान है।
0: बिल्कुल
1: तो चूंकि 2026 में जन जन की गिनती से देश की प्रगति तक का ये सफर एक आंकड़ा ही नहीं होगा, बल्कि हर नागरिक की पहचान और भागीदारी का भी प्रतीक होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जनगणना वो आईना है जिसमें देश अपनी वर्तमान तस्वीर और भविष्य की संभावनाएं देखता है। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक बातचीत अजीत प्रताप सिंह से, रमन प्रीत सिंह की।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पर, जो देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला मानी जाती है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत प्रताप सिंह जी, जो कि जनपद बाराबंकी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, परंतु जनगणना जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, और आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनगणना करने की आवश्यकता क्या है और ये किस लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है?
3: देखिए, किसी भी देश की जो सरकार है या जनता है, तो उसके बारे में जो योजनाएं बनती हैं और किसको किस चीज की आवश्यकता है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए कि एक परिवार है या देश है तो कितनी आबादी वहाँ पे है, क्या संसाधन है वहाँ पे हैं, और किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं, और क्या क्या उनको चाहिए और क्या कमियां उनके पास में है और कौन चीज उपलब्ध है। तो इसकी गणना के लिए जनगणना का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है।
2: मतलब देश के विकास के लिए जनगणना आवश्यक है।
3: जी,
2: आप हमारे श्रोताओं को अजीत जी ये बताइए कि जनगणना 2027 के कितने चरण हैं और ये कब से कब तक चलने वाले हैं?
3: देखिए, जो जनगणना 2027 है, इसके मुख्यतः दो चरण हैं। पहला चरण हमारा शुरू हो गया है और ये 7 मई से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो मकान गणना होनी है 22 मई से 22 जून तक। उसके पहले एक अवसर दिया गया है, एक व्यवस्था की गई है कि सभी लोग, जो परिवार के लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मकानों की गणना स्वगणना के माध्यम से कर सकता है। तो वो गणना खुद करना है, उसको एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए। उसमें आप जब पूछेंगे गूगल से कि स्वगणना करना है, तो अपने आप बड़े सामान्य ढंग से वो दे देगा।
2: तो वेबसाइट पे जाना है,
3: वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इस पे लॉगिन करेंगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगा।
2: ठीक है।
3: और अगर बहुत जानकार कोई नहीं है, सामान्य जनता है, तो केवल ऐसे गूगल पे या क्रोम पे जाके पूछ ले कि मुझे स्वगणना करना है, कैसे करें, तो तुरंत खुल के आ जाएगा और डिटेल बता देगा।
2: ठीक है, मतलब इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना।
3: हाँ, स्मार्टफोन होना ये पहली शर्त।
2: तो अगर जनगणना 2027 में आपको भाग लेना है, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यानी स्मार्टफोन जरूरी है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मकान गणना।
3: जी,
2: इसी को स्वागणना भी कहते हैं।
3: नहीं, देखिए, जो पूरी जनगणना 2027 है, इसके दो चरण हैं।
2: जी,
3: पहले चरण में हमें मकानों की गणना करना है।
2: जी,
3: और मकानों की गणना तो प्रगणक करेंगे।
2: जी जी,
3: जो प्रगणक के पॉइंट है उस क्षेत्र के, एक निश्चित क्षेत्र होगा, उसके प्रगणक करेंगे आके 22 मई से 22 जून तक। लेकिन उसके पहले एक व्यवस्था दी गई है जनगणना में, पहली बार, क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है और ये पेपरलेस है, पहली बार की गई है, तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है लोगों को कि आप अपने मकानों की गणना का स्वगणना कर सकते हैं।
2: इस स्वागणना के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
3: जी, ऐसा मैंने बताया कि स्मार्टफोन एक जरूरी है इसके लिए। ये उस परिवार के व्यक्ति का भी हो सकता है, वो किसी से मांग सकता है, दूसरे के फोन से भी कर सकता है, लेकिन एक मोबाइल नंबर, परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है इसकी स्वगणना के लिए। क्योंकि जब इसमें लॉगिन किया जाएगा तो एक ओटीपी आएगी, ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो मोबाइल

0: नंबर दर्ज किया जाएगा। तो उस ओटीपी से फिर आगे के चरण खुलते जाएंगे इसमें, और उसमें धीरे धीरे करके वो जो भी सूचनाएं मांगेंगे, तो परिवार का जो मुखिया होगा उसका पहला नाम होगा, नाम पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जो भी 34 प्रश्न इसमें आएंगे उसमें बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न के आगे जो है विकल्प होंगे कि क्या चीज है आपके पास में।
1: मतलब श्रोताओं को यहाँ बता दें कि 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे।
0: हाँ, उसमें ऑप्शन आएगा।
1: ठीक है, तो जनगणना यानी लोगों की गणना कब से प्रारंभ हो रही है?
0: देखिए, जो पहला चरण है ये मकान गणना हमारा 22 जून को पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में जो लोगों की गणना होगी, व्यक्तियों की गणना की जाएगी, वो फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, और उसका जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च का रात का 12 बजे का समय होगा। उस समय बिल्कुल जो वास्तविक संख्या होगी उसको दर्ज करके और उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा।
1: अजीत जी, आप ये बताइए कि आपके अनुसार जनगणना में आम जन की क्या भूमिका है?
0: देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो भारत देश है दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है आज की तारीख, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश के प्रति और दुनिया के प्रति। जो भी हमारे कार्यक्रम है, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है जनगणना, इससे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है योजनाएं बनाने के बारे में, और उन्हें पता है इससे कि क्या संसाधन हमारे देशवासियों के पास में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग इसमें भाग लेंगे, और जिसे आपकी पहली बार व्यवस्था की है, अभी तक क्या होता था कि प्रगणक आए, सुपरवाइजर्स आए और उन्होंने आपसे पूछा और कर लिया और चले गए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है अभी मकान गणना की, पहले भी स्वगणना का, और मुझे लगता है कि अगला जो चरण होगा उसमें भी स्वगणना का एक समय दिया जाएगा। तो स्वगणना से होता क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ती है, हमको पता है कि हमारे परिवार में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मेरा मकान बना हुआ है तो उसकी दीवार किस चीज की है हमें ज्यादा पता है। दूसरा कोई अगर आएगा तो हो सकता है उस समय मैं घर में ना उपस्थित हूँ, जानकार व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा होगा, तो उस समय हो सकता है वो कुछ जानकारी उतनी अच्छी ना दे पाए,
1: या जितने लोग नियुक्त भी किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, हो सकता है वो सभी जगह ना पहुंच पाए।
0: नहीं नहीं, एक भी मकान नहीं छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए, हम घर के मुखिया अगर हैं, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे घर के बारे में, हमारे जो परिवार में संख्या है, लोग हैं, उनके बारे में हम सटीक जानकारी दे पाएंगे। तो वो सटीक जानकारी जब हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा बेहतर डेटा मिल जाएगा जनगणना के लिए, और उसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से आगे हो सकेगा।
1: श्रोताओं, आपने सुना कि आम जन की क्या भूमिका जनगणना में हो सकती है, उम्मीद है आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, संदेश तो यही है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है, और गणना अगर एक्यूरेट होगी, उसमें सबका योगदान रहेगा, बिल्कुल सही तथ्य सामने आएंगे, तो हमारी जो सरकार है वो 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेके चल रही है, तो उस आधार पर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब हमारे पास 2027 के बाद 47 का 20 वर्ष बचा है, और 20 वर्ष में जो डेटा जाएंगे उस डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट को नीतियां बनाने का, उनको लागू करने का बहुत ही सरल उपाय गवर्नमेंट के पास रहेगा, और बहुत बेहतर तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है सभी जितने देशवासी हैं कि ये जनगणना में जो भी जानकारी आप देंगे प्रगणक को, ये आप पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसका ना तो पुलिस इस्तेमाल कर सकती है, ना किसी कोर्ट में ये साक्ष्य के तौर पे हो सकता है, तो इसमें कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसको कहीं से भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इसलिए आप सही से सही जानकारी दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, जिससे कि बेहतरीन डेटा बन सके और जनगणना का कार्य पूरा हो सके।
1: तो श्रोताओं, अजीत जी ने जनगणना 2027 के विषय में हमें आज बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से काफी फायदा पहुंचेगा। आप हमारे कार्यक्रम को इसी प्रकार सुनते रहिए। अजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे जनगणना 2026 पर अजीत प्रताप सिंह से रमन प्रीत सिंह की बातचीत। और प्रीति, बात तो बिल्कुल सही है जैसा इन्होंने कहा कि सहयोग कीजिए, और जो भी जानकारी आपके घर लेने आए, जनगणना अधिकारी जो भी आए, उनको सही और सटीक जानकारी दीजिए।
3: सटीक जानकारी, और आपकी ये जानकारियां हमारे और आपके भविष्य के लिए ही लाभकारी होगी। हम सही सही आंकड़ों का से अपना आकलन कर सकते हैं, और अब आकलन भाई मौसम का भी होना चाहिए।
2: बहुत जरूरी है,
3: बहुत गर्मी बेहाल है पूरा लखनऊ, क्या पूरा आधा देश बेहाल हो रखा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बेहाल हो रहे हैं, और मोहम्मद दानिश जी की तरफ हम बड़ी आशा से देखते हैं, उनसे बात करते हैं,
3: अच्छी बात बताएं,
2: कुछ अच्छी बात वो देंगे, खबर बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, आइए उनसे करते हैं बातचीत। दानिश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल कैसा रहेगा।
4: बात करें तो देखा कि मौसम अभी साफ,

0: आप रहेगा थोड़ा रहेगा, परसों से मौसम में तब्दीली आएगी, जैसे कि पश्चिमी शुष्क हो रहा है, परसों से तापमान धीरे धीरे कमी आएगी और परसों से ही वर्षा की संभावना 28 रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ से आने वाले के बाद बस धीरे
1: जी।
0: में अच्छी वर्षा।
1: अच्छा, मतलब अब मौसम में काफी हमें राहत मिलने वाली है। और जी, चलिए दानी जी, आप जुड़े कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: चलिए, एक राहत की बात की दानी जी ने, बता दी कि इंतजार
1: तापमान
2: करिए,
1: में
2: तापमान में
1: गिरावट,
2: कमी आएगी और जून में अच्छी बारिश
1: बारिश
2: होगी,
1: भी
2: तो
1: मिलेगी।
2: थोड़ा अब तप के ही तो मजा मिलता है, तो
1: तपने
2: थोड़ा
1: के
2: तप
1: बाद ही देखो निखरता है, सोना बनता है, तो हम लोग सोना बन
2: सोना
1: जाएंगे।
2: बन जाएंगे।

0: श्रोता, आप ये जो गीत सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म रजनीकांता से, जो 1974 में आई थी। गायिका लता मंगेशकर, संगीत सलिल चौधरी का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण।
1: साजन का हर धड़कन पर माला मैंने।
2: आंटी, आंटी आप कहानी सुनाओगी?
3: जरूर सुनाऊंगी, इधर आओ। बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
2: तोते और बंदर की।
3: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

0: और नंदिनी, ये राग मिश्र पीलू पर आधारित था ये खूबसूरत गीत। और मिश्र पीलू मुख्य रूप से ठुपरनरी, टप्पा, दादरा और गजल जैसी उप शास्त्रीय विधाओं में गाया जाता है, जिसमें अन्य रागों के स्वर का हल्का मिश्रण करके ही इसे अधिक भावपूर्ण बनाया जाता है।
1: और प्रीति, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। और अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास हर दिन का बहुत अलग होता है और बड़ा रोचक होता है, तो कुछ बातें इतिहास की बताइए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगी?
0: सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 1999 में भारत की अंतरिक्ष रिसर्च संस्थान इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्षी कक्षा में स्थापित किया गया था।
1: उसके अलावा 1969 में, 1969 में अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री 8 दिनों की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। ये मिशन चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग से पहले किया गया अंतिम ड्रेस रिहर्सल था पृथ्वी पर, ये जो लौटे थे लोग।
0: और क्रिकेट वाले तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इस दिन को याद करके। साल 1999 में ही इंग्लैंड के टाटन में खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी। और नंदिनी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए पहली 300 से अधिक रनों की साझेदारी थी।
1: क्या बात है।

0: और ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से, जो आई थी 1994 में। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति, संगीत था डी बर्मन का और गीतकार थे जावेद अख्तर। रागदेश में बना था ये गीत। और रागदेश के बारे में बता दें कि ये खमाज थाट का प्रयोग होता है इसमें, जिससे इसकी जाति औड़ संपूर्ण बनती है और इसका वादी ऋषभ रे और संवादी पंचम प है। और जैसे कि प्रीति हमने बात की, हमारे शहर में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो कार्यक्रम होते रहते हैं। और हम अपने श्रोताओं को हमेशा कहते रहते हैं कि जाइए, इनमें भाग लीजिए, घर से बाहर निकलिए और अपने सोशल लाइफ को खूब इंजॉय कीजिए।
1: लेकिन आज एक और खास बात है, आज का दिन बहुत अच्छा है लखनऊ के लिए कि आज ही हमारे शहर के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर के ठकराल जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा
0: क्या
1: गया
0: बात
1: है।
0: है,
1: और
0: हम
1: ये
0: सभी
1: खबर आज की पहली खबर है पृष्ठ में लखनऊ के।
0: बिल्कुल, और ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरव
1: गौरव
0: का
1: क्या
0: पल
1: पूछो,
0: है कि एक और
1: लखनऊ में
0: पद्म
1: आते जा रहे
0: पुरस्कार
1: पद्म
0: हमारे शहर में आया है।
1: आया है। और दूसरी चीज की आज है ज्येष्ठ मास का चौथा मंगलवार, और जैसा हम सब जानते हैं कि ये पर्व ही नहीं बल्कि सेवा श्रद्धा और लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति का
0: बिल्कुल
1: प्रतीक बन
0: बिल्कुल,
1: चुका है।
0: हाँ, और
1: और
0: बिल्कुल
1: लखनऊ से बाहर जाने वाले भी नंदनी इसको बहुत मिस करते हैं, और पूरा शहर इस आयोजन में आज मगन हो रहता है। सुबह से हमें
0: बिल्कुल
1: दिख भी रहा था
0: बिल्कुल, और
1: तो
0: एक अलग माहौल होता है वो भक्ति में, और जो एक शक्ति है ना, वो आपको यहाँ की हवा में, आपको जहां भी जाएंगे वहां वो महसूस होगी, वो एहसास आपको जरूर मिलेगा।
1: धर्म केवल पूजा से नहीं होता बल्कि दूसरों की मदद
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: में
0: और
1: भी बसता है।
0: ये जो भंडारे लगते हैं, ये आयोजन होते हैं, इसके पीछे का भाव तो
1: तो
0: यही
1: यही
0: है
1: है
0: कि
1: कि
0: दूसरों की
1: किस
0: सहायता
1: सहायता की
0: करना,
1: जाए,
0: भरपेट भोजन के साथ खिलाना। हमारे सनातन में तो इसको बहुत पुण्य का, बल्कि किसी में भी,
1: किसी में भी
0: हाँ,
1: किसी को
0: ये
1: भी
0: बहुत
1: भोजन
0: भोजन
1: कराना
0: कराना, पानी
1: और
0: पिलाना,
1: खिलाना,
0: तो
1: और
0: ये
1: इतनी
0: बहुत पुण्य
1: चिलचिलाती
0: का,
1: गर्मी में अगर आपको
0: बिल्कुल ज्येष्ठ
1: पानी
0: माह
1: मिलता
0: में,
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये पर्व सेवा प्रेम और मानवता का उत्सव तो है ही, जहाँ हर हाथ सेवा में जुड़ता है और दिल में उमड़ती है बजरंग बली की भक्ति और उनका नाम।
0: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात बताई
1: और
0: आपने।
1: इसके साथ एक और बात हम बता दें, आज का जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत दरियापुर इंटौजा में दोपहर 12 बजे, यहाँ पर नव निर्मित पंचायत का जो अन्नपूर्णा भवन है उसका उद्घाटन है। तो जो लोग आसपास के हैं ऐसी जगह जरूर जाएं,
0: बिल्कुल
1: आप शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। और दूसरा कि आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ और श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नाटक द सिडिक्शन का मंचन का आनंद भी आप लखनऊ के नागरिक ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान गोमती नगर में शाम 7 बजे
0: तो
1: से।
0: बिल्कुल, इन आयोजनों में जाइए, अपनी भागीदारी बिल्कुल दर्ज कराइए और
1: बिल्कुल,
0: एंजॉय कीजिए इन कार्यक्रमों को।
1: और हमें भी सुनते रहिए और आगे भी सुनिए।
0: बिल्कुल,

0: श्रोताओं, आप ये जो गीत सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म नायक से, जो 2001 में आई थी। गायक उदित नारायण और अलका याग्निक, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है एआर रहमान ने।
1: और मैं आपको बता दूं, ये राग भूपेश्वरी पर आधारित है। ये ऑर्डर 5 स्वरों वाला राग है जिसमें स्वरों का प्रयोग सूक्ष्म होता है, इससे इसकी कठिन सटीक सरगम तय करना भी कठिन होता है।

0: समय हो गया है कि चला जाए, आपको नमस्कार कहा जाए, लेकिन चलने से पहले, जाने से पहले हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस मौसम में अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, घर से बाहर निकले तो खाली पेट ना निकले, कुछ ना कुछ खा के अवश्य निकले, और
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ रहें और जुड़े रहें
1: हम
0: आकाशवाणी
1: आगे
0: लखनऊ
1: लखनऊ से
0: के साथ।
1: साथ और हमारे साथ भी आगे के कार्यक्रमों में समय समाप्त होता है। नमस्कार।
0: नमस्कार। आज सुबह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, साथ ही समाप्त हुआ हमारा आज का नमस्ते लखनऊ। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफाई

0: पर वन में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिला के पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और

0: प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी

0: वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 और 5 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नमस्ते बरेली में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। श्रोताओं, गर्मियां पड़ रही हैं, जी हाँ, और साथ ही नौतपा भी शुरू हो चुके हैं। गर्मियों के वे 9 सबसे गर्म दिन होते हैं जब सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। श्रोताओं, इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं जिससे उत्तर भारत में पारा 42 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और भयंकर लू चलती है। ज्योतिषों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है, जब अग्नि तत्व सूर्य इसमें प्रवेश करते हैं तो वे इसकी शीतलता को सोख लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भीषण गर्मी पड़ती है। और साथ ही ये अवधि आमतौर पर हर साल 25 मई से 2 जून के बीच होती है। मानवताओं के अनुसार नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी पड़ती है और धरती जितनी तपती है, मानसून के दौरान उतनी ही अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। साथियों, इन 9 दिनों में चिलचिलाती धूप में

बाहर निकलने से बचना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और हल्के सूती वस्त्र पहनने चाहिए। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि नौतवा के पहले दिन भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सुबह से ही सूरज की तपिश इतनी प्रचंड थी कि दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे और जो लोग बाहर निकले उन्होंने खुद को भीषण धूप से बचाने के लिए चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। हालांकि रात करीब 9:30 बजे आंधी चलने के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर उमस और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी से राहत पाने की जद्दोजहद में जगह जगह लोगों को ठंडे पेय पदार्थों और गन्ने के रस का सहारा लेते देखा गया। वहीं रात करीब 9:30 बजे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। अचानक चली तेज धूल भरी आंधी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हवा की रफ्तार इतनी अधिक थी कि लोग जहां थे वहीं ठहर गए। देखते ही देखते वातावरण में धूल छा गई और दृश्यता बेहद कम हो गई।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सामाजिक संस्था के पंकज भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सर।
0: क्या संस्था का नाम है आपकी?
1: प्रयास रेवो सहयोग समिति है सर।
0: अच्छा, ये क्या कार्य करती है सर?
1: मूलतः हमारी संस्था सर 2013 से ब्लड डोनेशन का काम हम लोगों ने

0: से ब्लड डोनेशन का काम हम लोगों ने शुरू किया था। 3-4 महीने के अंदर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं
1: जी।
0: अभी तक बरेली के अंदर 28 बड़े कैंप हम लोग कर चुके हैं सर, और जिसमें नियर अबाउट 100 के लगभग डोनर होते हैं सर IMA बरेली के माध्यम से। इसके साथ साथ सर कोरोना के समय
1: जी
0: बरेली के अंदर सबसे बड़ी रसोई हम लोग की चली थी माँ अन्नपूर्णा रसोई के नाम से
1: जी,
0: जिसमें हम लोगों ने रोज 500 करके आदमियों का खाना 54 दिन तक पूरे बरेली शहर में सर बांटा है
1: जी,
0: जिसमें जो लोग भी कॉल करते थे उनको घरों में पहुंचाते थे। और बरेली के जो चीफ वार्डन राजीव शर्मा जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके माध्यम से सब वार्डन हमारे यहाँ आते थे, 150 से 200 पैकेट वो ले जाते थे और 150-150 के लगभग पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होते थे लोकल में, और 200 के लगभग हम लोग जिनका भी कॉल आता था उनके घरों में हम लोग पहुंचाते थे
1: जी।
0: इसके साथ सर हम लोगों ने आधार कैंप अभी तक बरेली बड़े पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 5 आधार कैंप भी हम लोगों ने लगाए हैं, और कोरोना के समय सर हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप भी
1: जी
0: कम से कम 4 वैक्सीनेशन कैंप हम लोगों ने लगाए हैं, और समय समय पर हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप भी सर करवाते हैं।
2: गर्मियां वक्त पड़ रही हैं, तो इस गर्मियों के मौसम में आम जन है जो राहगीर हैं उनके लिए क्या पेयजल वगैरह की व्यवस्था आपकी संस्था के द्वारा की गई है?
0: पेयजल की व्यवस्था हम लोगों ने इसके पहले भी किया था, राहगीरों के समय आने जाने वालों को रोड के ऊपर हम लोगों ने पानी वगैरह का व्यवस्था, ठंडा पेयजल की व्यवस्था किया था, और हम लोग खूब शीघ्र एक वाटर कूलर लगाने जा रहे हैं नियर इज्जत नगर जो कारखाना है उसी के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, क्योंकि वहाँ पर दूर दराज के आदमी आते हैं और क्योंकि गर्मी इतनी अधिक पड़ी है उनको पानी का काफी क्राइसिस होता है, अगल बगल में कोई नलकूप भी नहीं है
1: जी,
0: तो हम लोग खूब शीघ्र ही यहाँ पर एक वाटर कूलर के माध्यम से ठंडा पानी, जिससे कि जो लोग जरूरतमंद है उन लोग को ठंडा पानी इस गर्मी के मौसम में मिले, इसका हम लोग खूब जल्दी ही उसका अनावरण करने जा रहे हैं सर
2: जी। बड़ा पुण्य का काम है ये कि राहगीरों को पानी मिलेगा, या उनके ठहरने की कोई ऐसी व्यवस्था, से गर्मी पड़ रही है तो कोई जगह आपके संस्था के द्वारा कोई कैंप वगैरह या टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई हो तो वो भी हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
0: टेंट वगैरह तो नहीं, जैसे हमारे वहाँ पर जो लोग भी आते हैं
1: जी,
0: जो लोग बैंक में और बाहर काफी धूप रहती है, तो हमारा कार्यालय है सर वहीं पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का, तो उन लोग को हम लोग क्या करते हैं अपने कार्यालय के अंदर वो लोग आके बैठ जाते हैं, उनके कुर्सी में पंखा वगैरह रहता है, जिसमें उन लोग को जिनको भी पैसा वगैरह निकालना है क्योंकि बैंक की जगह छोटी है सब बाहर खड़े रहते हैं, तो वो लोग हमारे कार्यालय में आके बैठ के फॉर्म फिलअप करके पैसा निकालते हैं, या उनको अगर बाहर भी जाना पड़ता है क्योंकि एक कोई भी बाथरूम नहीं है सर, तो हम लोगों ने अपने कार्यालय से वो बाथरूम भी उन लोग को मुहैया करवाया हुआ है, वो बाथरूम में वो लोग बाथरूम करते हैं और हमारे वहाँ बैठ के वो फॉर्म फिलिंग वगैरह ये सब करते हैं
2: जी। बहुत अच्छा कार्य कर रही है आपकी संस्था, और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी संस्था इसी तरीके से सामाजिक कार्य करती रहे। आज आपसे बातचीत हुई प्रोग्राम नमस्ते बरेली में, पंकज भट्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे आमंत्रित किया। नमस्कार।

0: जी श्रोताओं, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की। तो आज इसी विषय पर डॉक्टर आरवी सिंह से हम बातचीत कर रहे हैं कि हम क्या खान पान खाएँ जिससे कि हम इस गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ रह सकें। तो आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। जी, आपका नाम?
1: जी, डॉक्टर आरवी सिंह बोल रहे हैं।
0: आरवी सिंह जी, प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आपका स्वागत है। और इस वक्त गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो गर्मियों के इस मौसम में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम स्वस्थ भी रहें और साथ साथ हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए?
1: समय जो मौसम नहीं है
0: जी,
1: लू का प्रकोप चल रहा है, ठीक है
0: जी।
1: तो जब निकले तो पूरे बांह के कपड़ा पहने, ठीक है
0: जी।
1: और मतलब जो है खान पान में भी थोड़ा बदल जाना चाहिए, जैसे दही है, खीरा है, नींबू है, ठीक है, ORS पाउडर है, तल पता जान लेना चाहिए। और पूरे कपड़े शरीर ढक के रखें
0: जी,
1: ज्यादा मतलब खुले शरीर सही नहीं रहता है, उल्लू चलती लग जाती है, पानी शरीर का सूख जाता है
0: जी,
1: तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है।
0: बिल्कुल, और कुछ संदेश हमारे श्रोताओं को?
1: थोड़ा मौसम से बच के रहिए, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें जो है लू बहुत चलती है
0: जी,
1: टेम्परेचर हाई जा रहा है, 42 जा रहा है इस समय, ठीक है
0: जी।
1: कपड़े जो है पूरे शरीर को ढांक के रखें, खाना जब खाएं तो हल्का ही खाएं, जैसे पानी ज्यादा पिए, लू से बचाव बहुत ज्यादा रखना।

जी हाँ दोस्तों, श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। अब एक नज़र बरेली की खबरों पर। आंधी में बिजली गुल, सुभाष नगर व किला में ज्यादा परेशानी। ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में तुला शेरपुर विजेता। गंगा दशहरा पर आस्था का सैलाब, रामगंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु। गंगा दशहरा पर कन्या भोज के साथ शरबत बांटा। 28 मई का अपॉइंटमेंट लिया है उनके पासपोर्ट, 27 मई को ही बनाए जाएंगे। ईद उल जुहा की छुट्टी का दिन बदल जाने से ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही 8 आवासीय कॉलोनियों में 90 दिन में निरस्त हो जाएंगे LPG कनेक्शन। परिवहन निगम की आय में 4% की आई गिरावट। दिन की बजाय रात में बस में सफर कर रहे यात्री। तपन के कारण बसों में घटी संख्या, AC बसों में यात्री भरपूर। और साथ ही भीषण गर्मी का असर, आंखों में हो रही ड्राई जलन। बड़ी 300 बेड अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास बड़ी मरीजों की संख्या, 150 में 100 लोग आंखों के खुजली और जलन बता रहे हैं। और साथ ही अब पेट्रोल के दाम शतक पार कर 102 रुपये प्रति लीटर के करीब।

सबब ने दिन गरमाया, रात में चली आंधी। गर्मी में मरीज और तीमारदार परेशान। छुट्टियां मनाने को नैनीताल कैची धाम जागेश्वर धाम की सबसे ज्यादा बुकिंग, और साथ ही बरेली होकर गुजरने वाली समर स्पेशल ट्रेनों में जून तक सीटें खाली। स्टेडियम टाइटंस ने जीता स्टेडियम प्रीमियर लीग का खिताब। परीक्षा से नहीं मेरिट से होगा एमएड में प्रवेश, और 28 मई तक भरे जाएंगे परास्नातक के परीक्षा फॉर्म। और साथियों, कल गंगा दशहरा जिले में पूरे श्रद्धा उल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। चौवारी स्थित राम गंगा नदी तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाई और माँ गंगा की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। पर्व को लेकर रविवार देर रात से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह होते होते रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा क्षेत्र श्रद्धा व भक्ति के रंग में रंग गया। माँ गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ दान पुण्य भी किया। घाटों पर दीपदान हुआ और श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर परिवार के कल्याण की प्रार्थना की।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। पहला लोकगीत हमने लिया है वीणा के स्वर में, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर सा लोकगीत।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 27 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें, विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे, यानी आज शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https.award.government.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश https://padmawards.government.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से लोकगीत। आइए अब सुनते हैं इंदु शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोकगीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल श्रेया घोषाल

0: दर्शन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना, जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनु वेखे जे कुड़िया तो कहंदी ओ माय
3: गॉड। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

कुछ। करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितने भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: जमाने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

0: करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।
1: ओ शेरा उठ जरा।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, सौदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के दीवाने शुभकामना संदेश दे रही हैं नीलम वर्मा।
1: नमस्कार, मैं नीलम वर्मा बरेली से। मैं बरेली के परवाना नगर में रहती हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रेडियो हम ये बचपन से सुनते आए हैं, इसकी एक अलग ही बात है। इसके गाने और जो हम लोगों से बातचीत होती है, जो काम करते हैं वहाँ के, जो हम लोगों से बात करते हैं, हमारे फरमाइश को पूरा करते हैं, और वो गाने सुनने में जो आनंद आता है रेडियो का, वो अब हम लोगों को जो यूट्यूब इन पे सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो रेडियो को हमेशा सुनते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। और दोबारा से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी पदाधिकारियों को। धन्यवाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाएं, वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे

0: और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BAREILLY, akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतज़ार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 और 8 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का, श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रेम मोहब्बत के साथ आप हमें कमेंट्स करते हैं हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर, उसी प्रेम और खुलूस के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शामिल करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस पहले कमेंट से। यह है पद्मा टाकिस ने बानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, और आपने सुना चाहा है फिल्म ज्वेल थीप का ये गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में। और भी ढेर सारे कमेंट हमारे पास हैं। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री यादव और केशव यादव। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और सभी मित्रगण आप हैं हमारे श्रोता। कस्बा बराडा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब सिंह राहुल और परिवारीजन। गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जयपुर निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी लोग। जिला नांदेड़ यताला महाराज से

शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल और जायसवाल परिवार के सभी लोग। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और परिवार के सभी लोग। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मैं जबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, दानिश अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया, अपार डींगिया और परिवार के सभी लोग। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ये कमेंट हमें किया है। आप हैं हमारे श्रोता कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके परिवारीजन, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, असद बाबू और परिवार के सभी लोग। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु तासु, अरणब आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, आतिक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी लोग। गांव भारासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और परिवारीजन। आप हैं हमारे श्रोता दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ में हेड बब्बू और डब्बू। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। गढ़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम अंसारी, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनके परिवार के सभी लोग। टांडा शेरगढ़ से इकरार इदरीसी, सोनी इदरीसी और परिवारीजन। विनेश कुमार श्रीवास्तव रागनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चनहटी से ये कमेंट हमारे पास आया है। बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीप का ये गीत भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से ये कमेंट हमें किया है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। आपने सुना चाहे फिल्म पगला कहीं का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसी गीत को सुनने के लिए ये कमेंट हमारे पास आया है। आर्य नगर कोह का भिलाई उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरोशी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, मौला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया निशानी और निमित आहूजा। अब है हमारे श्रोता राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, बहड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, इकरार अहमद इदरीसी, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुईज गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा गौड़, गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। आप हैं हमारे श्रोता बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और परिवार के सभी लोग। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी लोग। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, मिट्टा बजाज और परिवार के सभी लोग। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्किन और परिवारीजन।

पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और परिवार के सभी लोग। आप हैं पटियाली कासगंज से राजीव कुमार और इनके परिवार के लोग, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। तो आइए सुनते हैं फिल्म पगला कहीं का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: शुद्ध 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली

100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली पसंद के लिए ये कमेंट हमारे पास आया है शादुल शहर राजस्थान से। रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुना चाहे फिल्म नील कमल का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कलुभाई मिस्त्री मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यश दिवाकर और उमेंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीवपुरी गोस्वामी। रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से रामकुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एचएल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा। भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, कन्हैया मिश्रा, आशीष त्रिपाठी, सत्यदेव वर्मा, बीना आहूजा, कन्हैया सिंह, दिव्यांशी सिंह, 31 वाटिका सनसिटी विस्तार बरेली से। उनके साथ में हैं सत्यदेव वर्मा, गंगा साह राजपूत, उषा वर्मा और सभी परिवारीजन। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं हमारे श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सोहन जोशी, हरमिंदर चावला जी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बैदोही जोशी, बीबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर जी, बन बघेरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा, उरेटा डोंडी, लोहारा जिला बालोस से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, जिला खरगोन सनाबद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और इनके सभी परिवारीजन। आप हैं 15 PSC श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमरन और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन और बेंकुबूर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। मौलागढ़ नई बस्ती भोजपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजहरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरा मल शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोडाने। आप हैं ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार महाराष्ट्र से और साथ में हैं नरेंद्र नरवाडे। अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन बरेली से बिचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी, रोबिन भाई और इनके परिवार के सभी लोग। कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लेश्वरी साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू, लोरेडी कर्मा चौक से ही भाई यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष, अंश साहू, गांव हीरावाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी लोग। आइए सुनते हैं फिल्म नील कमल का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। आपने सुना जाए फिल्म कामचोर का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इसी गीत को सुना जाए शाहजहांपुर से आरबी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, फजलिका पंजाब, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। आप हैं खरसावा, झारखंड से सुकुरा नायक, मंजू नायक, जालेश्वर नायक, गौरव नायक और परिवार के सभी लोग। कस्बा उगती, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से सद्दाम हसन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी, सादिक सिद्दीकी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवैद और इनके परिवार के सभी लोग। उदयपुर राजस्थान से

बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नजीब फलक, लुबना और यश मंसूरी। गांव भटूनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा मेहर परिवार। घीसू, दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल, दिलवारे, राजपुर, मध्य प्रदेश से। कटरचांद खां मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ से। आप हैं शिवारा, जिला बिजनौर, यूपी से आशिक चौधरी, बेगम रेहाना, रफात अदीब और खदीर चौधरी। विराटनगर, नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके परिवार के सभी लोग। गाड़ीखाना, चाईबासा, झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू, नितिन, सावन, सचिन, शक्ति। हजारीबाग, झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, राहुल और ऋषि। बड़िंगखेड़ा, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती और इनके परिवार के सभी लोग। गांव मुरादगढ़, जिला करनाल, हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भूपेश कुमार कंबोज। लच्छनपुर, छत्तीसगढ़ से रामजू साहू, जीवनलाल रजक, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवारीजन। सेक्टर 5, सूर्य नगरी, जोधपुर, राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बॉय हिमांश, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, कुमार हेड़ा, सहारनपुर से। इसी गीत को सुनने के लिए कही मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह का ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार के लोग, जौहर महमूद। अच्छा, ये कमेंट हमारे पास आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप हैं चक 14 पीएससी, जिला श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह, राजवीर कौर, राजविंदर कौर, संदीप, जसकरण, हरदीप, मनराज और इनके परिवार के सभी लोग। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और परिवारीजन। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवीएम जैन, मलियान, सरगना, मेरठ से ही कमेंट में आया है। मेरठ कंड से दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाठन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, निधि निखिल वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं कामचोर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में।

श्रोता 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली पसंद के लिए ये कमेंट हमारे पास आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेगा मस्किन और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुना जहाँ फिल्म आस का पंछी का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत है सर। जयपुरी का संगीत है शंकर जयकिशन का। नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। ग्राम नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू और इनके परिवार के सभी लोग। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। कस्बा उपगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और परिवार के सभी लोग। ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और सभी परिवार के लोग। गाँव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा, राहुल शर्मा और इनके परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर काजल बड़वाल, लखवीर रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू और मटकू। ये कमेंट हमारे पास आया है, हमारे श्रोता हैं। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, मैंडी शर्मा। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना।

मुतला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, बनीता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार। आप हैं ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, सर्वेश कश्यप, भगवान देव, स्वाति सिंह, तान्या एवं सभी मित्रगण व परिवार के सदस्य। कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। आप हैं संबलपुर काकेड़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और परिवार के लोग। पूर्णा महाराज से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी। कमर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और इनके परिवार के लोग। पिलवीज से प्रेमपाल और इनके परिवार के लोग। गली शिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य, गुरमीत सिंह, मीता साउथ दिल्ली से। आप हैं हमारे श्रोता ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दिवेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मदरसा गेट भावपुरा मड़ियाव जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद अरमान, नवैद अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मधुरकर, सदानंद कुमार, गौरव, अरब और अर्पिता। आप हैं हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। तो आइए सुनते हैं आज का पंची फिल्म का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ पर।

ये कमेंट हमारे पास आया है पंचकुला सेक्टर 9 से, आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भावेक डिंगरा और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुनना चाहे फिल्म लगी रहो मुन्ना भाई का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। आप हैं गांव जाखोज से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, धरदेई, सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी,

बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग और इनके परिवार के सभी लोग। गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अन्नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और परिवार के लोग। राजेश सेन खंडवा का ये कमेंट हमारे पास आया है। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक और सभी परिवारजन और मित्रगण। आप हैं अनामदर्शी विश्वमित्र, राजकुमारी, सिद्धार्थ कुमार, अंजल और सभी मित्रगण, बुद्ध रेडियो लिसनर क्लब, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से। नलेश्वर नगर, नरबेल, महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला, विशाल और परिवार के लोग। बरबट बकाल, बुलठाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय और इनके परिवार के लोग। गीतांजलि करवा, आकाश करवा, आकांक्षा करवा, आप हैं बाला प्रसाद जी करवा और इनके परिवार के लोग महाराष्ट्र से। अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और शर्मा परिवार के सभी लोग, इन्होंने ये कमेंट हमें कहाँ से किया अपना पता नहीं लिखा। लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे, सागर, लखनऊ, दौन, मध्य प्रदेश से। आप हैं हमारे श्रोता ओखला संगम बिहार दिल्ली से, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके परिवार के सभी लोग। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। आप हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर एमपी से सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु और इनके परिवार के सभी लोग। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा नयाब और इनके परिवार के लोग। आचार रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, श्रीमती सरिता, प्राणता, अर्जुन और टुकटुक। अकर हाइट्स बहादुरपुरा, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गुहाड़कर, सुमित गुहाड़कर, मिस ध्वनि गुहाड़कर, परी प्रिंस, एकांश गुहाड़कर। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प, कृषिप सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह। आप हैं अर्पित यादव, देवी सिंह यादव, भगवान सिंह यादव, मजरा, दौलतपुर, आंवला, जिला बरेली से। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्ण जैन और राकेश जैन। आप हैं जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश, प्रतीश और पूरा संगई परिवार। तो आइए सुनते हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जिसको पसंद किया है दत्तनेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की, गीत है रविंद्र रवेल का और संगीत है बाबुल बोस का। साथ में हमारे बहुत सारे और भी कमेंट हैं, वैश्लव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमज खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, आप हैं हमारे श्रोता, महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और परिवार के लोग, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, आप हैं मोहल्ला मलुकपुर, जुगन गली शेर खान मस्जिद के पास से बेबी अनम, इरम, परवीन, गुलबशा, छोटी सी हानिया, तमन्ना, तायबा नूर और इनके परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है, हमारे श्रोता हैं चार भाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र मेशराम, मधु मेशराम, सत्यार्थ और ईवी, आप हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आप हैं हमारे श्रोता गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियंतम, बामिका बाड़ी थांदी, नवा शहर पंजाब से, आप हैं सौंदा दमतरी छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन और परिवार के लोग, आप हैं रश्मि झरना, भरत कुमार, राजकोट गुजरात से, और ये कमेंट हमें किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी, आप हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पंप किरण खुराना, लव्या आरब खुराना, एस के पप्पी, नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और परिवार के लोग, आप हैं सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद काशिफ कमर, मोहम्मद आकिब, शाकिब नाज, मोहम्मद जैद, खुशबू और इनके परिवार के लोग। ये कमेंट हमारे पास आया शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से, अमीन अली बदायूं रोड बेहतरी रेलवे फाटक चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश से, आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू और इनके परिवार के लोग, गजानन नादरे, मारुत राव पांचाल, गिरगांव महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। सबरंग में आइए सुनते हैं ये गीत कंचन के स्वर में।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और श्रोताओं समय हो चला है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका गिरारे का, तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम झुमका गिरारे। प्रोग्राम झुमका गिरारे में हमारा सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम झुमका गिरारे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। श्रोताओं भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में हम लोग झुमका गिरारे की टीम लेकर पहुंच गए बरेली शहर से कोसों दूर विकासखंड बिदरी चैनपुर के एक ग्राम पंचायत तैयतपुर में, जहां का वातावरण देखकर हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया। जहां का प्राकृतिक वातावरण, हरी भरी हरियाली, पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी चहचहा रहे हैं और साथ साथ पेड़ों की छांव में जो बैल गाय और भैंसियाँ बैठी हुई हैं वो बड़े ही सुकून से बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं, जिनको देखकर हमें बड़ा सुकून मिला, बड़ा प्राकृतिक आनंद आया। और कहते हैं ना कि प्रकृति और सुकून का आपस में गहरा और अटूट संबंध है। शोर शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति की गोद में बिताया गया कुछ समय मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। पेड़ पौधों की हरियाली, बहती नदियों की कलकल और ताज़ी हवा मस्तिष्क को शांत करती है और स्ट्रेस कम करती है। फूलों की रंग बिरंगी दुनिया और पक्षियों का चहचहाना मन में नई उमंग और सकारात्मकता भर देता है। तो श्रोताओं इसी ग्राम में हमने बातचीत की है कुछ ग्रामीण वासियों से प्रकृति और सुकून पर, तो आइए सुनते हैं वो बातचीत।
1: आपका नाम?
2: कालीचरण सिंह।
1: कालीचरण सिंह जी, इस वक्त हम ग्राम पंचायत तैयतपुर में हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक गांव है, इस गांव के विषय में आप हमें बताइए।
2: हाँ, ये गांव पहले से, हम तो हमारे बुजुर्ग उनके बुजुर्ग यहाँ पर बसे हुए थे, जो इस तरह की कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, हमारे बाबा या हमारे पड़ोसी लोग, तो इस तरह से लग रहा है कि बहुत पुराना गांव है। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, बहुत ही सुंदर है। हम तो देखते हैं कि हमको कहीं पर ही जाते हैं तो बाहर अच्छा नहीं लगता है। मैंने करीब 20-25 साल लगभग सेवा दे रखी है शिक्षा विभाग में, तो वहाँ भी पर्यावरण बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो पर्यावरण हम आकर के अपने यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ का भी पर्यावरण काफी अच्छा है, उतना तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा है। और इसमें लगभग 2021 से हमने, हमारे जो बड़ा बेटा है उसकी पत्नी लक्ष्मी पटेल यहाँ की ग्राम प्रधान है, और ये सब कार्य ग्राम प्रधान का लगभग देख रेख में मेरे हुआ है, और मैंने कोशिश की है कि 5 सालों के अंदर इस गांव की पर्यावरण

0: जो भी खूबसूरती है उसको मैंने और भी बढ़ाने की बहुत कोशिश की है। और हरे भरे पेड़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक हाट बाजार की व्यवस्था कर रखी है जिसमें हमने पेड़ भी लगवा रखे हैं और कुछ सालों के बाद ये पेड़ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण हमारा काफी अच्छा हो जाएगा। जो भी एक तरीके से पर्यावरण की जो स्थिति है मैं देखता हूँ काफी अच्छी है। एक सौंदर्य वातावरण अच्छा, एक प्राकृतिक वातावरण अच्छा बनाने में हम अपने आप के लिए अग्रसर करते हैं। पूरा गांव हमारा इसमें बहुत ही सहयोग करता है, जबकि हम देखते हैं कि शहरों में जहां कोई किसी संबंध नहीं रखता है, लेकिन हमारे यहां यदि कोई समस्या आती है उसको सब लोग मिलकर के उस समस्या का निदान करते हैं। मैं ये सब काम देखता हूँ, मेरे गाँव की ये स्थिति है इसके बारे में।
1: जी सिंह साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही गांव के सौंदर्यकरण के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति और सुकून की। अगर हम कंपैरिजन करें शहर और गांव का, तो देखते हैं कि गांव में बड़ा कंजेस्टेड मामलात हैं और जो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, वो गांव की अपेक्षा हमेशा अधिक रहता है। वैसे भी हम देखते हैं कि अभी हम धूप में जाएं तो वहां का तापमान अलग होता है, और हम इस पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो उसमें जो सुकून मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को ये संक्षेप में आप बताएं कि शहर का जीवन और गांव के जीवन में जो परिवर्तन, आखिर ऐसा क्यों है?
0: हाँ, शहर के जीवन में और गांव के जीवन में यदि देखा जाए तो बहुत अंतर है। शहर में यदि हम कहीं पर भी घूमते हैं, देखते हैं, तो बड़ा एक तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका, और इसी के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण के रूप में देखा जाए, हमारे यहाँ हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं, उन पेड़ों के नीचे बैठ करके जो आनंद आता है वो शहरों में लगी हुई एसी के अंदर नहीं आता है, या शहरों में लोग कमरों के अंदर जो घुसे रहते हैं और एसी का आनंद लेते हैं वो आनंद कुछ समय का है, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन गांव का वातावरण एक तरीके से सुकून का वातावरण है, यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर पर्यावरण बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। स्वास्थ्य सेवा के रूप में अगर देखा जाए तो शहर वालों के लिए ज्यादा नजदीक है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं अधिक है, हमारे यहाँ कम है, थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी हमारा गाँव अभी शहर के नजदीक है, उन शहर वाली समस्याओं को भी, उन व्यवस्थाओं को भी हम प्राप्त कर लेते हैं।
1: जी मां साहब, आपने बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां आपने गाँव से रिलेटेड और साथ ही प्रकृति और सुकून से रिलेटेड जो हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को प्रोग्राम झुमका गिरारे के माध्यम से बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम?
2: मेरा नाम हिमांशु पटेल है सर।
1: हिमांशु पटेल जी, आप ग्राम पंचायत तैयतपुर में ही रहते हैं, क्या करते हैं आप?
2: मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ।
1: एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारा जो विषय है
2: जी सर,
1: प्रकृति और सुकून, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप?
2: सर पहले अपने दादा परदादा माता पिता के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ये एनवायरमेंट दिया, हमारे लिए जो पेड़ लगाए, ये अच्छा एनवायरमेंट दिया जहाँ से हमें प्रकृति की सुबह के लिए ऑक्सीजन मिलती, नेचुरल एयर मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं शहर में क्या है, लोग एसी में रहते हैं तो वो क्या है, एक हर क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, एसी के बाहर निकलते ही उनको गर्मी लगती है। और हमारा गांव का क्या है, हम लोग जब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो हमें कहीं भी इन्वायरमेंट में हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। हम बैठे हैं, जैसे कि दो चार लोग और भी बैठे हुए हैं, एक सभा बैठी हुई है, हमारे लोगों का एक संबंध बढ़ता है, रिश्ता बढ़ता है और पूरी दिनचर्या की बात हो जाती है। और क्या है, हमने अपनी नई जनरेशन के लिए नए पेड़ लगा रखे हैं, जैसे कि क्या है, हमारे पूर्वज चले गए, हमको छोड़ के चले गए, तो एक हमको भी कुछ, एक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नई जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करके जाएं जिसके लिए वो हमें याद करें। जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। आज 26 मई है और आप देख रहे हैं कि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा है, गर्मी काफी पड़ रही है। शहर में आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहना पड़ता है, तो शहर में अच्छा लगता है या गांव का वातावरण आपको ज्यादा लुभाता है?
2: जी सर, पढ़ाई तो हम शहर से रहते हैं, वो तो मजबूरी है सर शहर के लिए, क्योंकि कॉलेज दूर पड़ता है, लेकिन हमारे लिए जो भाता है एनवायरनमेंट वो गांव का ही एनवायरनमेंट हमारे लिए भाता है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर क्या है, नेचुरल हमारी साग सब्जियां होती हैं, हरी भरी जो भी फल हैं वो भी हमें नेचुरल मिलते हैं। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है तो हमारे गांव में एक आम का एक बाग है बहुत बड़ा, ये हम वहां से लेके आते हैं। हाँ, तो हम नेचुरली जो भी हम प्रकृति से मिलता है हमें नेचुरली मिलता है, हमें पौष्टिक आहार मिलता है, जैसे कि दूध, घी, दही, मट्ठा, ये सब मिलता है, तो इससे क्या है, हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है शहर से। लेकिन गांव, शहर में रहने की हमारी मजबूरी है, लेकिन जो हमारा पोषण होता है वो हमारे गांव से ही पूर्ण होता है।
1: क्या बात है पटेल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा के लिए हमें शहर में तो रहना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारा पोषण है वो सही

रूप में गांव में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वायु मिलती है और जो भी हमें फल है सब्जियां हैं वो सब प्योर रूप में मिल पाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके पटेल जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत तैयतपुर में और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इसी ग्राम में रहते हैं। जी सर, आपका नाम?
1: राजेश सिंह।
0: राजेश सिंह जी, प्रोग्राम झुमका गिरारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हूँ और मैं इंटरनेशनल कोच भी हूँ। इंडिया की टीम लेके मैं बैंकॉक गया था और तो करीब 10 से ज्यादा मेरे जो है पहलवान कुश्ती इंटरनेशनल बने हैं और कम से कम 30 से ज्यादा जो है सर्विस में हैं।
0: जी
1: 30 से ज्यादा सर्विस में, रेलवे में, पुलिस में और काफी पहलवान जो है उसको अच्छी सर्विस मिली हुई है। टीटी है गोरखपुर में ज्यादा, मुगल सराय में है और पुलिस में काफी।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं पहलवानी के और साथ साथ आपके द्वारा सिखाए हुए या आपके अंडर में वर्क करे हुए इतने लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं और बड़ा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर राजेश जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बहुत पुरानी कहावत है, हम बचपने से सुनते आए हैं कि लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो वातावरण है, हम कह सकते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर रहे हैं हम। और आज हम यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये आपका जो गांव है ग्राम पंचायत तैयतपुर, बहुत ही प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर गांव है, ये शहर से लगभग कितनी दूरी पर है?
1: ये 10 किलोमीटर है मात्र।
0: अच्छा, मात्र 10 किलोमीटर। और यहाँ से जो नेशनल हाईवे है वो लगभग
1: वो 5 किलोमीटर होगा।
0: 5 किलोमीटर पर। और यहाँ आगे हम देखते हैं कि भुता रोड पर एक जेल भी है, वो भी लगभग यहाँ से
1: वो भी हुआ 5 किलोमीटर।
0: चलिए 5-5 किलोमीटर के, मतलब ज्यादा दूर नहीं है शहर से देखा जाए और बड़ा ही प्राकृतिक वातावरण है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, प्रकृति और सुकून, तो चूंकि आपने पूरा अपना जीवन अधिकतर आपकी शहरों में ही जॉब रही होगी,
1: शहर
0: तो शहर का जीवन और ये गांव के जीवन में अगर हम कंपेयर करें तो आपको कौन सा वातावरण अच्छा लगता था?
1: अब वो शहर और जीवन वो ये फैसिलिटी पहले शहर में ज्यादा हुआ करती थी, अब हमारे पास गांव में भी फैसिलिटी काफी, स्कूल है, अस्पताल है और सड़कें हैं जो मोस्टली बनी हुई है। फिर यहाँ गांव में पेड़ बूटे बहुत अच्छे हैं जो शहर में उतनी बढ़िया पेड़ बूटे नहीं है और यहाँ पर खुली हवा है, मिलती है गांव में, शहर में उतनी अच्छी हवा नहीं मिल पाती है। गांव में मोस्टली रहती है लाइट, अगर कभी चली ली जाए तो कोई परेशानी नहीं है और शहर में अगर लाइट चली जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से तो शहर और देहात भी अब शहर से पीछे नहीं है और अच्छे अच्छे स्कूल भी में खुल गए हैं। बस यही है कि अभी स्टेडियम वगैरह इधर नहीं है, वो जो शहर में है, बच्चे अगर कोई खेलना चाहें तब उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उसमें भी हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने की गवर्नमेंट की योजना है ही, तो वो बना भी रहे हैं, काफी जगह बन भी गए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सुकून गांव में भी है।
0: बड़ा अच्छा लगा राजेश जी आपसे बातचीत करके। चलते चलते हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करें और साथ साथ जो सरकार आज पर्यावरण के ऊपर जोर दे रही है तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे?
1: अब ये कहेंगे पेड़ जो हम काटते हैं तो उससे ज्यादा लगाने भी चाहिए, जिससे कि हमारे पॉल्यूशन जो है अच्छा रहे, बढ़िया अपना जो है एटमॉस्फेयर रहे। और दूसरे जो हमारा जीवन अच्छा तभी है कि भाई हम लोग अपना एम्स बनाएं, पढ़ाई पर बच्चों को ज्यादा लगाएं, खेल पर लगाएं, इधर उधर के संघर्ष से दूर रखें, बस तभी जो है बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और गवर्नमेंट तो भाई इतना तो नहीं दे सकती हर जगह नौकरी निकाल सके या वो कर सके, परंतु वो अपने प्रयास जो कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अपने प्रयास करने पड़ेंगे, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा कि हम अपना सेल्फ कोई काम करें या अपनी बिजनेस करें, अपना कोई और धंधा करें, तो अपन उस हिसाब से अपनी पढ़ाई जरूर करें, पढ़ें और खेलें, दो काम जरूर करने चाहिए बच्चों।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इस वक्त हम ग्राम पंचायत में ही मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ एक शिक्षक श्री केसी पटेल जी यहाँ

0: मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। केसी पटेल जी, प्रोग्राम झुमका गरियारे में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आपका।
0: इस वक्त आप पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये पाकड़ का पेड़ जो गांव के एंट्रेंस पर ही है, कितना पुराना पेड़ है ये?
1: ये करीब होगा 40 साल से ज्यादा के पुराना लग रहा है पेड़।
0: 40 साल से ज्यादा पुराना?
1: हमारे समय में ये था, हम करीब गांव से निकले हुए करीब 30 साल के आसपास हो गए। 26 साल पहले हम यहाँ गांव से गए थे, तब पेड़ ये था।
0: अच्छा अच्छा। इस पेड़ की छांव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रामवासी भी बैठे हुए हैं और साथ साथ भैंसिये भी बंधी हुई हैं, कुत्ते भी बैठे हुए हैं और साथ साथ बंदर जो है पेड़ की छांव पेड़ का आश्रय ले रहे हैं। तो आप भी पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त?
1: एकदम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सुकून लग रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि हम पूरी मतलब पूरा दिन धूप है, धूप को पूरा समय यहाँ पर गुजार सकते हैं, इतना सुकून मिल रहा है।
0: जी
1: जी। ठंड कि वो भी अपना गांव का वातावरण देखना चाह रहे थे, और हमने एक बहुत बड़ा बाग लगाया यहाँ पर, और उसे खुद देखने आए। और पेड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेहतर जीवन पाए, खुद को सुकून पाए, और आगे सेवानिवृत्ति के बाद गाँव में ही सुकून की जिंदगी पाए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने केसी पटेल जी हमारे श्रोताओं को बताई। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज सरकार जो है मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना तो योगदान दे ही रही है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों का भी ये दायित्व है कि हम पेड़ों को लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, है ना?
1: हमने अपने स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ लगाए, इतना बढ़िया मतलब हरा भरा वातावरण है। आप जो भी स्कूल में प्रवेश करेगा तो कमरों की तरफ न जाके हमारे गार्डन की तरफ जाएगा, पर भी हमारा जो शहर में मकान है वहाँ भी काफी पेड़ है। तो हम जहाँ भी रहे हैं तो प्रकृति को ही महत्व दिया है, पेड़ लगाना प्रथम इसका कारण। अब पेड़ लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये धरा सुरक्षित रहेगी। ये धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे। श्रोताओं, यह था प्रोग्राम झुमका गिरारे ग्राम पंचायत तैयतपुर से।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम झुमका गिरारे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है सौदी शिमला 4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से

0: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: जय जेरापुर, जय भारत!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि

0: वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज, पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ, वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज, वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं, महाराज जोरावर सिंह दरबार खास में।
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे, वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।

0: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
1: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
0: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है स्वदेशी 94.4 FM पर। श्रोताओं, 12 बजे हैं, आइए अब आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
6: मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य लखनऊ को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाना है। मुख्यमंत्री आज शाम प्रयागराज में नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न जन उपयोगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं हमारे नगरों को अधिक आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के साथ नागरिक जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार ने कल एलपीजी आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन भी हैं, वे पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन करते हैं या गैर पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन की भविष्य में बहाली के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान विशेष रूप से तबादलों वाले कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों, छात्रों या गैर पीएनजी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के लिए लाभदायक है। सऊदी अरब में आज से हज की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय हज के पहले दिन भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग कल मीना के टेंट सिटी में इकट्ठा हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे और कल सुबह मीना लौटकर हज के जरूरी अरकान पूरे करेंगे। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा और बड़े मंगल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सरयू तट के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंत्रोच्चार, गंगा पूजन और दान पुण्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिरों और घाटों को विशेष रूप से सजाया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई BND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई BND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

12:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गर्मी का भी खास ख्याल है, बड़ा मंगल भी है आज, और बहुत सारी चीजें हैं जो शहर में हो रही हैं। सारी चीजें शेयर करने वाले हैं हम आज के दिन, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक आप तक।

जी हाँ बिल्कुल, सेल्फी ली जाती है जब जब हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो एक बार सेल्फी, दो बार सेल्फी और लगातार सेल्फी सेल्फी चलती रहती है। फिलहाल

जो प्रोग्राम है आज का, और आज ट्यूसडे है, और हमेशा हम अलग अलग दिन के अलग अलग सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, और आज का जो सेगमेंट है वो भी है बहुत ही फायदेमंद जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आज का जो सेगमेंट है वो है फैशन डिजाइनिंग। और फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक ही लिमिटेड नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही शानदार सा तरीका है। फैशन डिजाइनिंग आज के वक्त में एक ऐसा करियर भी बन चुका है, एक ऐसा करियर ऑप्शन बन चुका है जिसमें ग्लैमर भी है, क्रिएटिविटी भी है, और बहुत सारे अवसर भी हैं, मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आज के फैशन की इस रंगीन दुनिया को थोड़ा सा और करीब जाएंगे, थोड़ा सा और जानेंगे, और क्या क्या फैशन है आजकल के मौसम में, आजकल के हिसाब से आप कौन कौन से कपड़े हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, कलर्स हैं जिनको आप पहन सकते हैं और गुड लुक आप लोगों को दे सकते हैं। फिलहाल एक ट्रैक और है जो आ रहा है आप तक, उसके बाद और बातें आपसे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
7: आई एम संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
8: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है, दैट्स व्हाई आई लव FM रेनबो।
9: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
10: बारह बजकर 17 मिनट हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की। और फैशन डिजाइनिंग में सबसे पहले तो जो ध्यान जाता है, जो हमारी और आपकी सोच जाती है, वो सिर्फ कपड़ों पर ही जाती है। और हमेशा लोग ये सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टाइल हैं, कौन कौन से ऐसे कलर हैं जिनको हम मिक्स एंड मैच करके अपनी अच्छी सी एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहने हुए, और ऐसा लगता है कि किसी शादी में जब हम जाते हैं तो कोई ऐसा डिजाइनर लहंगा हम देखते हैं, और उसके बाद हम जब हम ये सोचते हैं कि भाई किसने डिजाइन किया होगा, ये कितना कैची लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तब फिर हमें समझ में आता है कि जो इसके पीछे की मेहनत है वो किसी फैशन डिजाइनर की मेहनत है। और वो फैशन डिजाइनर की जो मेहनत है और जो इमेजिनेशन उसने किया है इस आउटफिट को तैयार करने के लिए, वो भाई कमाल की होती है। अब फैशन डिजाइनर कौन? फैशन डिजाइनर वही इंसान होता है जो नए स्टाइल्स क्रिएट करता है, कपड़ों के डिजाइन तैयार करता है और एक नए ट्रेंड्स को कह सकते हैं कि पैदा करता है, जन्म देता है। और एक बात यह भी सही है कि फैशन डिजाइनिंग केवल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़े बनाने का काम सीख लिया, कलर्स हैं, फैब्रिक्स हैं, पैटर्न्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सारा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है और आप एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे धीरे धीरे आगे और आगे जाके कामयाब फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। और हमेशा जब फैशन डिजाइनर होते हैं उनके अंदर एक नई कल्पना जन्म लेती है, अलग अलग तरह के कलर्स के साथ वो लोग खेलते हैं, कौन कौन से जो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, कहाँ पर स्लीव्स कैसी बननी है, कैसे नीचे फ्लेयर्स आने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती हैं।

फिलहाल लहंगे से याद आया कि एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है लहंगा, और वो जो गाना है उसको जब भी किसी शादी में आजकल आप जाते हैं या कहीं पर मेहंदी का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तो वो जो गाना है वो जरूर प्ले होता है।

0: कहानी है बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: हो रे खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में,
2: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
3: जोर का झटका है जोरों से लगा लगा,
0: अंदाज है सबसे निराला,
2: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

बजकर 23 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपात, अरनुम है आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं कि फैशन डिजाइनिंग में आप कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। फिलहाल आजकल देखिए आप, फैशन इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब सिर्फ इसमें कपड़े ही नहीं है, मतलब लिमिट सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फुटवेयर डिजाइनिंग है, मेकअप स्टाइलिश है।

जैसे कि बनारसी साड़ी है, लखनऊ की चिकनकारी है, गुजरात की बांधनी है, पंजाब की फुलकारी सूट्स हैं, और दुनिया भर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं। और हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन को मिलाकर एक नया ट्रेंड बना दिया है। और बहुत सारे कपड़े हैं, आप देखिए कि अगर चिकन के कुर्ते देखते हैं आप, चिकन की साड़ी देखते हैं, उसमें एक अलग अलग पोत वर्क भी आपको नजर आएगा, जरी वर्क भी नजर आएगा, कामदानी भी नजर आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अलग तरह का फ्यूजन बना के एक नई ड्रेस स्टाइल की गई है। और उसको जब हम और आप कैरी करते हैं तो फिर वो अलग ही लुक देती है, और लोग जरूर पास आके पूछते हैं भाई ये हैंडमेड है, तो आप बहुत ही स्टाइल में बताते हैं कि यस ये हैंडमेड है। और इसी तरह अलग अलग कलर्स जो हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं, कैसे सतरंगी चैनल को आप एंजॉय करते रहते हैं। और सतरंगी से याद आया कि एक और ट्रैक है जो काफी हिट हुआ था और काफी फेमस भी हुआ था, और उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि हम और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो करें।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:35 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम में आपके साथ। और मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको अपना सकते हैं और एज अ फैशन डिजाइनर अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, वो फैशन डिजाइनर बन गई, आप भी बन जाएंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर कोई शौक है, सचमुच आपको कलर से खेलने का शौक है, सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों में आपकी दिलचस्पी है और सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों को लेकर नए नए जो आइडियाज हैं वो आपके अंदर आते हैं, नई नई जो क्रिएटिविटी है वो आपके अंदर जन्म लेती है, आप रात में भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं कि कैसे एक सिंपल से कुर्ते को अच्छा सा बनाया जाए, कैसे एक अच्छी सी दुपट्टे को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, तो आप इस फील्ड में जाने के लायक हैं, जा सकते हैं आप। और फैशन डिजाइनिंग के लिए एक शानदार फील्ड भी है जो आपका इंतजार कर रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज भी कराते हैं जहां स्टिचिंग है, स्केचिंग है, टेक्सटाइल नॉलेज है और फैशन मार्केटिंग जैसी चीजें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपकी बहन ने कोर्स कर लिया तो आप भी कर लीजिए, आपकी बहन है या आपकी दोस्त है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो एक उनका सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक ही तरह के लोग होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, सामने वाले की सोच और दिमाग नहीं है। आपको नहीं पता सामने वाला का जो दिमाग है, जो सोच है, वो क्या सोच रही है, उसके अंदर कौन सा हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। और उस टैलेंट को, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको आपको उजागर करना है, समझना है आपको कि किस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है। अगर आप वाकई फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये फील्ड है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें ये सब करना नहीं, हमें सिर्फ अपने कपड़ों को ही डिजाइन करना है, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अपने कपड़ों को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पुराने कपड़े होते हैं, जो पुराने कुर्ते होते हैं, जो आउट ऑफ फैशन कहलाते हैं, या बहुत सारी ऐसी हेवी ड्रेसेस हमारे पास होती हैं जिनको हमें लगता है कि बताओ इतना महंगा ले लिया लेकिन फालतू पड़ा हुआ है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको आप तरह तरह की डिजाइन दे सकते हैं और आप कैरी करके फिर से एक बार एकदम न्यू लुक हासिल कर सकते हैं। फिलहाल एक फिल्म आई थी जो बनी थी पुरानी स्टोरी पे, लेकिन कमाल के उसके गाने, कमाल के उसके डांस नंबर, तो भाई ये जो ट्रैक है ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वक्त आपको बता दें 12:37, प्रोग्राम शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई BND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई BND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

बगदाद से लेके दिल्ली बागदाद।

आप घाघरा बनाते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने चुपके से ये घाघरा बना के तैयार कर लिया है, आप कहाँ लेकर जाएं, मार्केटिंग कौन करेगा, इतना पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करें, ये सारी जो चीजें हैं ना वो अब बहुत दूर की बात हो गई है। मतलब ऐसा होता था कि पहले कोई आपकी कोई क्रिएटिविटी होती थी, आपकी कोई आर्ट होती थी, तो फिर आप जाते थे, आप उसकी फोटो जो है उसे खींचते थे, फिर अपलोड करवाते थे, फिर विज्ञापन देते थे। लेकिन अब यूट्यूब का जमाना है और लोग बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं, जो भी उनकी रील होती है, जो भी उनमें टैलेंट होता है वो उसको उस पर डाल देते हैं। और जहां तक कहा जा सकता है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फैशन ब्लॉग्स जो है, उसकी वजह से जो नए नए डिजाइनर्स हैं उनको अपने टैलेंट को दिखाने का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है। कई यंग डिजाइनर्स हैं जो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अपने यूनिक डिजाइन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों कि फैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन लीजिए। असली फैशन वही है जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हों। कई बार सिंपल ड्रेसिंग भी बहुत क्लासी लगती है। फैशन हमें ये सिखाता है कि खुद को कैसे अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर दुनिया में फैशन ना होता तो हर इंसान एक जैसे कपड़ों में दिखाई देता। फैशन ही हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको अलग पहचान देता है। कोई ट्रेडिशनल पहनना पसंद करता है, कोई वेस्टर्न, कोई फ्यूजन स्टाइल, और हर स्टाइल जो है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। और आज के दौर में जो सस्टेनेबल फैशन का ट्रेंड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे कपड़े और डिजाइन जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। कई डिजाइनर्स तो इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फैशन के साथ वो नेचर का भी ध्यान रख सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तभी हम आगे सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप जो गर्मी है वो शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी है कि शायद हम लोग कहते हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन जरा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, जो भी बड़ी ही नहीं हुई है, उसके बारे में, उसके लिए हम क्या देके जाएंगे, हम क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गहरा विषय है, इस पे सोचना है। लेकिन अभी फिलहाल हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं, फैशन की बात कर रहे हैं। और फैशन में जब आप एक अच्छा सा ड्रेस तैयार करते हैं, एक अच्छी सी कोई भी स्टाइलिश चीज आप तैयार करते हैं तो लोग कहते हैं आफरीन आफरीन, यानी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। फिलहाल आफरीन ट्रैक याद आया और प्ले कर दिया, पहुंचा दिया आप तक।

जी हाँ, आफरीन आफरीन, आपको लगातार कहते रहना है रेनबो को लेकर। और 12:54 हो गए हैं, प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को और ये जो जाल है ना रेनबो का, प्रेम जाल, इसमें आप ऐसे ही फंसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। दोपहर का 1 बज चुका है और ये वक्त है कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। दोस्त होते हैं साथ निभाने के लिए, जिंदगी मिलती है दोस्त बनाने के लिए। हमसे दोस्ती रखोगे तो इतनी खुशी देंगे कि वक्त ही नहीं मिलेगा आंसू बहाने के लिए। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में हैं आपकी पसंद के गीत। तो शुरुआत करते हैं हम इस पहले खत के साथ। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर और इनके परिवार के सभी लोग। फिल्म चितचोर का ये गीत यशुदास की आवाज़ में, गीत है रविंद्र जैन का और संगीत भी रविंद्र जैन का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुगलानी, सुनीता जैन, जगमोहन।

प्रजापति, सुनीता शर्मा और इनके सभी साथी, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा, आप हैं छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से, जय श्री देवी, वंदना मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, खेमकरण, लक्ष्मी देवी, छोटे लाल और राम प्रसाद शर्मा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनाबद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़ और साथ में हैं बीबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री। बिलराम गेट कासकन से एमएसलम सैफी, जेबुन्निशा बेगम, अकरम सैफी, आवाद खान, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम नूरजहां, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, खटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य, स्वाति मौर्य और मौर्य परिवार के सभी लोग। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश रूप पंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी कनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन, निसार बाबा और मस्तान बाबा। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओम पाल गंगवार, अनिता गंगवार और इनके मम्मी पापा। ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटे लाल गंगवार। अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डालमिया, रईस पानू और सभी परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म चितचोर का ये गीत यशुदास की आवाज़ में।

ये खत हमारे पास आया है निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से। कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ में है आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यश पाल दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीवपुरी गोस्वामी, रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से, राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटी से विवेक और हिमांशी वर्मा, भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, कन्हैया मिश्रा, आशीष त्रिपाठी, सत्यदेव वर्मा, बीना आहूजा, कन्हैया सिंह, दिव्यांशी सिंह, 31 बाटिका सन सिटी विस्तार बरेली से, और इनके साथ में है सत्यदेव वर्मा, गंगा सहारे राजपूत, उषा वर्मा और सभी साथी। ये खत हमें भेजा है बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, बिक्की भारद्वाज, अमान जैद, इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन, उमा शंकर, मसरूर खान, अमन अब्बासी, सुहेल, भरत यादव, अमन, अनस मंसूरी, रेखा कश्यप और इनके सभी साथी। नखासा रोड उसैद बदायूं से, ऊंची मस्जिद उसैद से चांद मियाँ, तबस्सुम बेगम, असा सत्तार, शाहजहां, अली बाबा, मरजीना, अलबख्श, गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लल्ला, एन बी मिर्जा, मुनव्वर हुसैन, नसरीन, कैकशाह, अनवार मियाँ, गुमनाम शाह, बेनाम शाह, नामालूम शाह, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। आप हैं हमारे श्रोता। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांडा, साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार खमरिया बिलासपुर से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके सभी परिवारीजन, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और परिवारीजन, कस्बा सिंधौली मीरगंज से ये खत हमारे पास आया है जीशान वारसी, रेहान शेख, इमरान शेख और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया का। तो आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गीत मनर उदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत दिया है एच डी वर्मन ने।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये अनुरोध भरा खत हमारे पास आया है नाज रेडियो क्लब करेली से। निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अवरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी ने ये खत हमें भेजा है। आपने सुनना चाहा है फिल्म गौतम गोविंदा का ये गीत। गीत को गाया है आशा भोसले ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और रचना है आनंद बख्शी की। गांधी पार्क मनपुरा, तहसील पिछार, जिला शिवपुरी, उत्तर प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, धांसू, छोटू नामदेव, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव एवं समस्त नामदेव परिवार। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और वर्मा परिवार के सभी लोग। कस्बा शीशगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। शंकरपुर पोस्ट उसाबा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, आनंद, अमन, अंकिता, सुनीता, पुष्पेंद्र, सनोज, सोनी, विनीता, अनिता और सूरजश्री यादव। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल, प्रभात कमल, अमरीश कमल।

सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिचा कमल और ऐश्वर्या कमल वाशने। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक, यादव मोहल्ला सनाबाद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल कुणाल मेहरा। आप हैं मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, वार्ड नंबर 6 औला बजरिया से, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और आइए अब सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म गौतम गोविंदा का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

फूल भक्त लछावनी बरेली से विशेन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा कविता, कल्पना ईशु भावना, आदित्य देव की देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुनि देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। ग्राम पजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या और चंसौलिया परिवार के सभी लोग, रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला कुंज प्रिया, पवन बिहार बरेली से, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश नरवाड़े, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंडर छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप हैं वेरडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची और तनु कर्मकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सवालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम बाग बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका उत्कर्ष नेताम और आप हैं मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी, निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से और साथ में है नसीम अहमद। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार का मंदिर का ये गीत सुरेश वाडेकर मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है। आवाज उदित नारायण अलका याग्निक की, गीत देव कोहली का, संगीत आनंद राज आनंद का, और अनुरोध किया है आप सभी ने। गंजुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, और मुगीसापुर से ये हैं जाकिर मंसूरी, फलक और इनके सभी परिवारीजन। आप हैं नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पी एस नहापकर, निर्मला व विशाल और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदर राम गुप्ता। नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिफ्जा, नूरी, नत्थू चाचा, असीर अंसारी, अख्तर अंसारी, नन्हे और इनके परिवार के लोग। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बख्तारिया धाकड़, भोला बख्तारिया, प्रवीण बख्तारिया, रियांश और प्रतीक बख्तारिया, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, गिराम्बा पोस्ट, लदावली जिला मुरादाबाद से। आप हैं हमारे श्रोता ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिव्यांश पाल और इनके सभी परिवारीजन और मित्रगण। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। आप हैं हमारे श्रोता नई बस्ती गंजडंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ये खत्म भेजा है। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। आप हैं कासिम कॉलोनी सनाबत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना, हाशिम मीना। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, पप्पू भाई, सलीम भाई और इनके सभी मित्रगण। आप हैं राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डीलापीर रोड जिला बरेली से, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। और आप हैं हमारे श्रोता बहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कैकशा, दानिश, आदिल और शफक। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म हमको तुमसे प्यार है का ये गीत।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 27 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 26 मई 2026 को शाम 4 बजे, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये गत हमारे पास आया है गैकटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान सिद्दीक अली साबिया और इनके परिवार के सभी लोगों का। पुरानी होली चौक ग्राम करगना बरेली से गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक, पवन, युवराज, इशिता, पंकज, वीर शर्मा, संदीप, चंचल, चिंकी, सूरज और इनके सभी परिवारीजन। भूड़ बरेली से रजत कुमार, आप हैं तहसील जाफराबाद जिला जालना हुन से श्री सुधाकर राज यादव, प्रशांत, जागुताय, संचित, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली, सानवी और सभी परिवारीजन और मित्रगण। जिला बदायूं ग्राम दूरीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सतेंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। राजपैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं समस्त परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जयपाल यादव। अनारकली बाजार जगराओं से परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, एई खान और गंजडुंडवारा से जाहिद अली। आइए सुनते हैं फिल्म नाम का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत है रविंद्र जैन का, संगीत भी रविंद्र जैन का।

गांव चोहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल और इनके परिवार के सभी लोग, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, आप बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सलीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफताब और मेराज अंसारी। ये खत हमें भेजा है कृष्णनगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर देवे, रमाताई डोंगर देवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर देवे। आप हैं फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहदा सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत ग्वालकर, सरिता सिद्धांत, एकांश, प्रिंस और विश्वनगर नागपुर से शैलेश वैशाली, सुमित धोनी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लब, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज, बक्सीना, दातागंज से। आइए सुनते हैं फिल्म जलते बदन का ये गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा, फिल्म का नाम है अन्नदाता, आवाज़ मन्ना डे और सविता चौधरी की, और अनुरोध किया है आप सभी ने। खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, आप हैं टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रुपेंद्र माथुर, नीटू शर्मा, के शर्मा, चोप सिंह शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर, ग्राम बुटला दौलत, पोस्ट उजानी, जिला बदायूं से, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि, राजेश और इनके सभी परिजन, रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, आप हैं पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन, बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैटला सिरसी से मकसूद हसन, बिलसी मोहल्ला वार्ड नंबर 5 से ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत अलवी, शाहीन अलवी और आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी। आइए सुनते हैं फिल्म अन्नदाता का ये गीत मन्ना डे व साथियों की आवाज़ में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आपके पत्रों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, इसी के साथ अब अनुरोध गीत से हमें दीजिए इजाजत और अगले कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं शीशपाल, जो प्रोग्राम पेश करेंगे रसरंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत मोहम्मद परवेज के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये लोकगीत जिसको स्वर दिया था प्रतिभा पी देव ने। आई श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अंशविना सक्सेना का गाया एक और लोकगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक कव्वाली जिसको गाया है शैलेंद्र कपूर और कविता पौडवाल ने।

0: श्रोताओं, तलत अजीज की गई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: जी सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है। और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि नहीं भाई, अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले
2: हैं। देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो के। मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिए मंदाकिनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना, ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अच्छा। हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें यही सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना, तब भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है। अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जन्मवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए।

0: और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, कि लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
0: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो, उसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है, और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए थे। खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे

0: बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
0: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
1: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है। यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू करते हैं।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: है और ये
0: तो
1: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो चलिए
1: ना।
0: हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ
0: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन

0: व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाने का

0: माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल। और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं,
1: हम्म,
0: देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो ऐसा
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल,
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं।
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है। तो
1: ऐसा
0: ऐसे,
1: नहीं होना
0: हाँ, ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल,
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो
1: जी
0: दमगम
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात,
0: खुद अच्छे बने, है ना, खरा
1: बिल्कुल
0: सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो

0: बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता, सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: पड़ता
1: सबसे
0: है।
1: पहले तो
0: हाँ
1: इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि
0: हाँ
1: नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
0: बिल्कुल,
1: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
0: डिगा
1: बातों
0: नहीं
1: में
0: सकता।
1: डिगा नहीं सकता, जिसे
0: हाँ,
1: कहते हैं वो
0: मतलब
1: होना
0: अपने
1: चाहिए।
0: किरदार को हमें मजबूत बनाना
1: जी,
0: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
1: उथल
0: इधर
1: पुथल
0: इधर ढुल गए उधर ढुल
1: नहीं,
0: गए,
1: नहीं थाली
0: आपने
1: का
0: कहा
1: बैंगन जिसे कहते हैं वैसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: उधर
1: चाहिए।
0: उसकी बात सुन ली, उधर उसकी
1: जी
0: बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए, जो
1: जी
0: देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं,
1: बिल्कुल
0: ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और
1: जी
0: ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता,
1: जी
0: तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए।
0: बहुत
1: हमारी
0: अच्छा,
1: सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है।
0: हाँ
1: और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए, ऐसे
0: मतलब
1: लोग जो होते
0: गोपनीयता जो
1: हैं।
0: बातों की होती है
1: हाँ,
0: दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं,
1: हटा
0: खंडित
1: देते
0: कर
1: हैं,
0: देते
1: मतलब
0: हैं।
1: दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और
0: हाँ
1: अपना अपना
0: मतलब
1: पाने के
0: निकाल
1: लिए,
0: लेते
1: मतलब
0: हैं।
1: निकालने के
0: हाँ
1: लिए, अपने को
0: हाँ
1: सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं,
0: गिरा
1: तो वो
0: देते
1: चीज
0: हैं,
1: नहीं होनी
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना, आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
1: जी,
0: हैं।
1: सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा,
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे, कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए
1: फल
0: जाते
1: थे
0: थे,
1: जो।
0: मौसमी
1: हाँ
0: फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में
1: हाँ,
0: अक्सर होते
1: होते
0: थे।
1: हैं बिल्कुल।
0: और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल
0: बड़ा
1: होता है शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब इस
0: अच्छा
1: तरह
0: माहौल
1: की
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: पर बड़ी
0: लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा
0: हाँ,
1: होता था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावटी
1: कहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: थी।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ,
0: वही
1: होते
0: लोग
1: थे।
0: होते थे।
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी, तो उसका
1: बिल्कुल
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही करते थे।
0: पड़ता
1: हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी।
1: आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल। वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते
1: बिल्कुल,
0: थे,
1: और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते
1: थी।
0: थे, और जिसको
1: हाँ
0: कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और वही
1: हाँ
0: एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल
0: तरह के भी उनको
1: रूठने
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई नाराज हो जाता
0: होती
1: था
0: थी
1: उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे

0: रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फुफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो
0: जी
1: बहुत जल्दी नाराज हो
0: जी
1: जाते थे ना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदर पूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे,
0: जान होते थे, सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
1: कर
0: करा
1: देते थे।
0: बिल्कुल।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है, बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे चूहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है,
1: हाँ,
0: तो सब
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
0: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: शादी भी होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी
1: बात करते हैं। बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जन्मासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए थे, तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो
0: किसे
1: चुके।
0: हुए
1: बाद में
0: हैं?
1: जो भैया लोग छोड़ के गए थे उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जन्मासा जिसे जन्मासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जन्मासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: सही
0: कहा।
1: बात है।
0: हाँ, मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जलवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जन्माष्टमी में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा है गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जन्माष्टमी के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जन्माष्टमी में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी,
0: हाँ
1: तो वो तो किसी और का बगीचा है,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आम लगे हैं,
0: हाँ
1: अब बराती लगे तोड़ने में, अब
0: हाँ
1: वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से
1: रोचक
0: जनवासी
1: किस्से
0: की
1: हो
0: दुनिया
1: जाते
0: से
1: थे।
0: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: खुशबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है, है ना? वो किस्से जो हम भूल गए थे आज फिर से ताजा हो गए।
0: ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजे हैं। साथियों, ये समय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने का। आपको बता दें, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपको सुनवा रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम में हैं हमारे साथ नेमवती फतेहगंज से। आइए सुनते हैं इनके विचार।
3: मेरा नाम नेमवती है, मैं फतेहगंज पश्चिमी ग्राम नौगमे की रहने वाली हूँ, जिला बरेली। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आकाशवाणी बचपन से सुनते आ रही हूँ, मुझे आकाशवाणी सुनना बहुत पसंद है। ये मैं गाने बचपन से ही सुनती हूँ, इनका प्रोग्राम जो भी होता है, गीत संगीत जब भी व्यक्ति को सुनना होता है, मन अगर परेशान होता है तो व्यक्ति संगीत को जब सुनता है तो उसके मन में अजीब एक फीलिंग पैदा होती है।

0: का मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे पुराने गाने हैं, नगमे हैं, ये गाने सुन के व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है। ऐसा आकाशवाणी से मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, इसी को मुझे भी सुनना अच्छा लगता है। और मैं अपने श्रोताओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी जब भी समय मिले तो आकाशवाणी को सुनना पसंद करें।
1: श्रोताओं, ये थी आकाशवाणी की दीवानी नेमवती फतेहगंज पश्चिमी से। ये कार्यक्रम है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष, आकाशवाणी के दीवाने।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हम एक विषय रखते हैं जिस पर चर्चा करते हैं फोन लाइन पर भी और आपके विचार जानते हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर भी। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमसे इस विषय पर बात की। आज का विषय आपको बताए देते हैं। हमारा आज का विषय है पिछली बार घूमने कहाँ गए थे। साथियों, सभी को घूमने का बहुत शौक होता है और होना भी चाहिए, इससे बहुत जानकारी भी मिलती है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। तो बहुत लोगों का शौक होता है घूमना और अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अक्सर आप देखते होंगे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। तो घूमने का शौक लोगों में है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछली बार घूमने आप कहाँ गए थे। तो इस विषय पर हमने हमारे कई सारे श्रोताओं से फ़ोन पर भी बातचीत की और कुछ श्रोताओं ने हमारे फेसबुक पेज पर

0: अपने विचार लिख भेजे हैं। तो पहले आपको सुनवाते हैं जो फोन पर हमारी बातचीत हुई श्रोताओं से।
1: हेलो,
2: हेलो,
1: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
2: जी नमस्कार, मैं बरेली जंक्शन से करीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे।
1: करीब भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया है।
1: अच्छा करीब भाई, ये बताइए, आप घूमने तो जाते रहते होंगे कहीं?
2: जी बाहर नहीं जाते हैं, बरेली बरेली में घूमते हैं।
1: अच्छा, लेकिन घूमने का शौक तो होना चाहिए ना जी?
2: बाकी कहीं जाते घूमने नहीं होता हमारा।
1: अच्छा, घूमने का शौक होना चाहिए,
2: क्योंकि लेकिन आप काफी समय से नहीं गए घूमने।
1: हमारा आज का विषय कुछ इसी प्रकार है कि पिछली बार आप घूमने कहाँ गए थे?
2: पिछली बार घूमने हरिद्वार गए थे।
1: हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार का कैसा अनुभव रहा आपका?
2: बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। वहाँ का तो ठंडा ठंडा शीतल जल जो है बहुत ही बढ़िया लगता है
1: जी।
2: और गंगा में नहा के तो वैसे ही आदमी पवित्र हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं उसके।
1: बिल्कुल, अब दोबारा वहीं जाने का मन है कभी, अगर जाने का मौका मिले तो, या किसी और जगह जाएंगे?
2: बस हरिद्वार ही मन करता है जाने का, तीर्थ से ही।
1: अच्छा, हरिद्वार से आपका कुछ विशेष लगाव है? गरीब भाई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए आज?
2: गीत को गंगा मैया सुनाओ, कल जेठ का दशहरा हुआ था
1: जी।

0: रेडियो प्लस सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 8 जगनगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
1: राजेश श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। और राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको घूमने का शौक है क्या?
0: हाँ, शौक है। अभी कुछ समय पहले ही हम दिल्ली से वापस आए हैं। दिल्ली तो राजधानी और खूबसूरत वहाँ पे जगह है
1: जी।
0: और वहाँ से हमें अजमेर जाना पड़ा एक शादी के सिलसिले में
1: जी।
0: वहाँ काफी दार्शनिक स्थल है
1: जी।
0: वहाँ देखा, काफी खूबसूरती लगी, अच्छा लगा।
1: क्या बात है, आपको मतलब अजमेर और दिल्ली जाने का अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा
0: जी, है ना? जर्नी बहुत अच्छी रही।
1: तो अब जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो कहीं आगे जाने का भी प्लान है क्या?
0: सर अभी एकदम तो नहीं है, लेकिन हाँ, दो तीन महीने के बाद बन रहा है।
1: अच्छा, बढ़िया। तो राजेश श्रीवास्तव जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप?
0: सर फिल्म शराफत का एक टाइटल सॉन्ग है, शराफत छोड़ दी मैंने।
1: ठीक है राजेश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
0: अमरजीत जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मेरे हाल अच्छे हैं सर, जानना चाहूँगा आपके हाल कैसे हैं। आकाशवाणी बरेली में जितने भी आरजे लोग हैं सभी लोग कैसे हैं सर?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं अमरजीत जी। और अमरजीत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप पिछली बार घूमने कहाँ गए थे?
1: सर मैं पिछली बार जो घूमने गया था, मैं अभी घर पे आया हूँ। बाकी मैं यूपी मध्य प्रदेश इंदौर में था
0: जी।
1: तो वहाँ का जो घूमने गया था मैं, महेश्वर जगह है जो रानी रूपमती का किला है सर, वहाँ गया था। वहाँ मंदिर भी है और बाकी मांडवा पड़ता है वहाँ धार जिले में, वहाँ पे भी गया था सर।
0: अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ आपका?
1: सर काफी अच्छी जगह है सर, जो मंदिर भी है वहाँ पे और काफी लोग जो क्या बोले, नर्मदा नदी है सर, तो नर्मदा नदी मंदिर के पास में है।
0: अच्छा।
1: और जो रानी रूपमती का किला है सर, तो उसमें लोग स्नान करके और शिव जी पे जल चढ़ाते हैं सर। काफी अच्छा लगा मुझे वहाँ घूमने में। और जहाँ की बात की जाए तो मांडवा की, तो सर वहाँ वहाँ भी भोले बाबा का मंदिर है
0: जी
1: शंकर का, तो सर उस मंदिर पे भी घूम कर आए थे। और झाज महल है सर वहाँ, और वहाँ भी बहुत सारे किले हैं सर।
0: क्या बात है अमरजीत जी, आप घूमने के काफी शौकीन लगते हैं।
1: जी जी सर, कहीं अगर किसी काम के सिलसिले में मैं हैंड का काम करता हूँ जरी का
0: जी,
1: तो मैं कहीं भी जाता हूँ, या अहमदाबाद जाता हूँ, या सूरत जाता हूँ, या हैदराबाद जाता हूँ, तो सर संडे को घूमने ही घूमना हम लोग।
0: अच्छा, जहाँ कहीं भी आप अपने काम के सिलसिले से जाते हैं तो वहाँ आसपास की जगहों को घूम कर आते हैं अगर मौका मिलता है तो?
1: जी, बहुत छुट्टी रहती है संडे की तो।
0: जी बहुत अच्छी बात है अमरजीत जी, और ऐसे ही घूमते रहिए, क्योंकि क्या है कि घूमने से भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: नए नए लोग मिलते हैं, नई नई जगह के बारे में जानकारी होती है, तो हर किसी को घूमना चाहिए, है ना?
1: जी जी,
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमरजीत जी। अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: मुझे गीत सुना है, फिल्म का नाम रहेगा कल की आवाज, और इसमें गीत है जो मैंने प्रोग्राम के जरिए चुना है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा जब से चाहत झलक रही है।
0: ठीक है अमरजीत जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, नाम बताइए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं
1: जी? मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटे से गांव नाटाराम से आकाशवाणी पर रेलवे को फोन लगा दिया है।
0: दशरथ सेन जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है, और कुछ बताइए अपने बारे में।
1: जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हेयर कट की दुकान के साथ साथ मैं आकाशवाणी को भी सुनता रहता हूं, और बहुत सारे कस्टमर लोगों के साथ हम आकाशवाणी का लुप्त और आनंद उठाते रहते हैं।
0: बहुत खूब। तो ये बताइए दशरथ सेन जी कि आपको हमारे कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: आपके ज्यादातर तो यही प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है, उसमें बहुत दूर दूर से लोग शामिल होते हैं, उनके विचार जानने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल, सीधे आकाशवाणी से जुड़ाव हो जाता है हमारे श्रोताओं का।
1: जी जी जी, जुड़ाव भी हो जाता है, और जैसे ही समय मिलता है फिर हम कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी बरेली को भी सुना जाए।
0: क्या बात है, और सुनते रहिए। इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दशरथ सेन जी, आप घूमने का शौकीन हैं क्या?
1: जी, घूमने का शौक है, घूमते भी हैं।
0: पिछली बार आप घूमने कहाँ गए थे?
1: जी, पिछली बार हम हमारे मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गए थे।
0: जी, तो वहाँ क्या खास है?
1: नीमच जिले के एक स्थान है, सर मैं बताना चाहूँगा, वो स्थान बहुत ही धार्मिक स्थान है, माता जी का स्थान है।
0: जी,
1: वहाँ पर हम गए थे। जी, श्रीमती जी हम दोनों गए थे, तो उस स्थान का नाम है भादवा माता जी।
0: भादवा माता जी,
1: जी यहाँ पर सर एक खासियत ये है कि किसी को लकवा ग्रस्त हो गया हो तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, बस माता जी के शरण में जाओ, ठीक हो जाएगा। इसी बहाने हमारा घूमना भी हो गया और माता जी के दर्शन भी हो गया।
0: क्या बात है।

0: जरूर सभी को जब भी मौका मिले घूमने जाना चाहिए, है ना। जहाँ जाने का भी मौका मिले सबको जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो हम बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं दोबारा से,
1: रिचार्ज भी हो जाते हैं और अपडेटिव भी हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि घूमने से हमारे दिमाग के मस्तिष्क में जो कुछ कचरा मिल रहता है वो अलग हो जाता है,
0: और सबसे बड़ी बात कि अपने आप से मिलने का भी मौका मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप नए नए लोगों से तो मिलते हैं।

0: दिल्ली गए थे घूमने के लिए, और दिल्ली में बहुत मजा भी आया था सर। लाल किला भी देखा था
1: अच्छा,
0: और कुतुब मीनार भी देखा था, और बहुत बहुत सारी चीजें देखी थी और बहुत सारी चीजें खाई भी थी सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। जब घूमने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खाने भी चाहिए, और वहाँ की जो लोकल खाने का जो आइटम होता है वो भी खाना चाहिए। और जैसे आपने जगहों के नाम बताए तो हमें लगता है कि ऐतिहासिक जगहें घूमने का आपका ज्यादा शौक है।
0: जी,
1: दिल्ली में कैसा अनुभव रहा आपका?
0: बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया सफर भी रहा, और बहुत बढ़िया हमें लगा भी दिल्ली में सर। फैमिली
1: अच्छा, तो दोस्तों के साथ गए थे या फैमिली के साथ?
0: के साथ गए थे।
1: क्या बात है। तो मोहम्मद आशिक जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और अब बताइए कि कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
0: जो ईद आ रही है इसके लिए, ईद के लिए कोई सा भी गाना सुनवा दीजिए।
1: ठीक है मोहम्मद आशिक जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर जी।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए।
1: सर मैं जिला बदायूं कस्बा दादागंज से मोहम्मद आशिक बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद आशिक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और आशिक जी बताइए, आप अगर घूमने का शौक रखते हैं तो बताइए कि पिछली बार घूमने कहाँ गए थे।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं रिफा बात कर रही हूँ फरीदपुर से।
0: रिफा जी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी मैं अभी घर पे हूँ अपने, जैसे हमारी स्कूल की छुट्टियाँ बोल रही है तो मैं फैमिली याद कर रही हूँ अभी।
0: अच्छा, तो छुट्टियों का आनंद ले रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं साथ ही। तो रिफा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या घूमने का शौक है आपको, कहीं घूमने जाती हैं?
1: जी जी है।
0: तो ये बताइए कि पिछली बार घूमने कहाँ गई थी?
1: जी मैं बरेली घूम के आई थी, जुमका बाजार और आला हजरत की दरगाह पे जाना चाह रही हूँ की दरगाह पे। बरेली में मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं जाती हूँ घूमने।
0: तो बरेली में आपको बहुत अच्छा लगा?
1: जी जी बहुत अच्छा लगा।
0: और क्या क्या घूमा आपने बरेली में?
1: और जैसे मैं जुमका बाजार गई थी और जो अच्छा लगता है मैं वो खरीद लेती हूँ, और मेरा आगे का प्लान घूमने का आगरा है।
0: अच्छा, बरेली के बाद आप आगरा घूमने जाएंगी। तो झुमका बाजार से आपने क्या क्या शॉपिंग की बरेली से?
1: जी मैंने कपड़े वगैरह खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, जो मन में आता है ना खरीद लेती।
0: अच्छा, आपको शॉपिंग का भी खूब शौक है?
1: जी जी
0: सही है, अच्छी बात है। रिफा जी नई नई जगह घूमना चाहिए। अब आगरा में कोई विशेष जगह घूमने जा

0: जाने का प्लान है या किसी और काम से?
1: जी मैं जाऊंगी, घूमने के लिए जाऊंगी।
0: अच्छा, ताजमहल देखने जाना है?
1: जी जी।
0: सही है रिफा जी, आपकी यात्रा मंगल में हो, और घूमते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, सबको घूमना बहुत जरूरी है ना। अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप आज?
1: जी मैं आप लौट चले मूवी का सुनना चाहूंगी, तेरे बिना एक पल दिल नहीं लगता।
0: ठीक है रिफा जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय है पिछली बार घूमने कहाँ गए थे। इस विषय पर हमने हमारे कुछ श्रोताओं से बातचीत की और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमको अपने विचार लिख भेजे हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर। ये हमारे श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ जी लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। तो नमस्कार रेवाड़ जी आपको भी। और आगे लिखते हैं, वैसे तो सुबह से शाम तक घूमते ही रहते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, लेकिन यह तो रोजमर्रा का कार्य है। लेकिन बात दरअसल में घुमाई की चल रही है, तो हम पिछली बार जयपुर बीकानेर घूमने के लिए गए थे। वो समय थोड़ा सर्दी का था, लेकिन अभी हरिद्वार ऋषिकेश और देहरादून मसूरी जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप जहां भी चाहें वहां का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए और अपनी तरफ से भी ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो लोग बहुत लापरवाही करते हैं और वहां पर गंदगी फैला देते हैं, जिससे प्रदूषण और बीमारियां बढ़ती हैं। हम सभी को ईश्वर का ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। कई ऐसे पर्यटक हैं जो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, चिप्स के रैपर हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसको यहाँ से ले गए और वहाँ पे खाया पिया और फेंक दिया। उससे गंदगी बढ़ती है, प्रदूषण होता है और वहाँ के रहने वाले जीवों के लिए भी संकट उत्पन्न होता है और प्रकृति का तो नुकसान होता ही है। बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। और जो भी घूमने जा रहे हैं हमारे साथी लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी कूड़ा है उसको एक जगह एकत्रित करें और कहीं कूड़ेदान में ही डालें उसको। आप हैं हमारे श्रोता शेख जिया और रहमान जी, लिखते हैं पिछली बार हम घूमने के लिए नैनीताल गए थे, उससे पिछली बार गोवा और उससे पिछली बार कश्मीर गए थे। इसके अलावा बहरीन, सऊदी अरब, कतर, दुबई और अबू धाबी भी जा चुके हैं। बहुत खूब जियाउर रहमान जी, घूमते रहिए। घूमना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। घूमने का शौक अपना बरकरार बनाए रखिए। ये हमारे श्रोता सुल्तान रजा जी लिखते हैं, नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा और इनके बहुत सारे साथियों के नाम लिखे हुए हैं। आगे लिखते हैं कि पिछली बार हम जो गए थे अजमेर शरीफ ख्वाजा जी के दरबार में, जो पहली बार गए थे, और वहां पर जाकर जो फैज हासिल हुआ, क्योंकि अजमेर शरीफ जाकर और ख्वाजा साहब के दरबार में जो आराम मिलता है, ये आप कहना चाहते हैं कि वहां जाकर आपको आराम मिलता है, शायद कुछ त्रुटि हुई है लिखने में। और आगे लिखते हैं, आकाशवाणी बरेली से आज का विषय बहुत अच्छा लिया गया है, इसके लिए मिथिलेश योगेंद्र सर को नमस्कार, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस कार्यक्रम में सहभाग किया और अपनी बात बताई कि आप ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते हैं, वहां आपको अच्छा लगता है। और ये हमारे श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी, लिखते हैं पिछली बार घूमने परिवार के साथ श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ओमकारेश्वर गया था। बिल्कुल प्रवीण चौहान जी, आप घूमते रहिए, नई नई जगहें एक्सप्लोर करते रहिए। और एक और हमारे श्रोता हैं शमशुल कमर राही, लिखते हैं आकाशवाणी बरेली हमारा पसंदीदा रेडियो स्टेशन है और हम इसे कभी सुनना नहीं भूलते हैं, धन्यवाद आपका। और रहा सवाल घूमने का, तो हम पिछली बार मुंबई घूमने गए थे। देखा जाए तो मुंबई एक खूबसूरत शहर है, यहाँ बहुत सी जगह हैं जो इंसान का मन मोह लेती हैं और उन्हीं में से एक है हाजी अली दरगाह जो बीच समंदर में है। यहाँ रूहानी सुकून और सूफियाना फिजा और समंदर की लहरें, ठंडी ठंडी हवाएं मन मोह लेते हैं। बिल्कुल, तो आप नई नई जगहें घूमते रहिए, आपने बड़ी अच्छी जगह का नाम बताया और हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो भी जाने के लिए प्रेरित होंगे। और आप हैं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य जी, लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है, हम वृंदावन गए थे, मन तृप्त हो गया। बिल्कुल, आप सभी को राधे राधे, राधे राधे अनोखीलाल जी, और मन को तृप्त

करते रहिए, घूमते रहिए इसी तरह। और अंकुश अरोड़ा जी कहते हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, घूमने तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं, रेडियो पर रोज ही श्रीनगर, जालंधर, कुरुक्षेत्र, मथुरा, बरेली से रेडियो के प्रोग्राम सुन लेते हैं। सच मानिए घूमने से भी ज़्यादा आनंद रेडियो प्रोग्राम सुनकर आता है। बिल्कुल अंकुश अरोड़ा जी, रेडियो प्रोग्राम सुनकर बहुत आनंद आता है, लेकिन घूमना भी जरूरी है। घूमने से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलती हैं, नए नए लोग मिलते हैं। रेडियो से तो जानकारी मिलती ही है और उसको आप घूमते हुए भी सुन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कभी मौका लगे तो जरूर जाइए, और रेडियो तो आप सुनते ही रहिए। और हमारे श्रोता मुकेश कश्यप जी लिखते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से, आपने इस विषय पर कोई बात नहीं लिखी है। और बीआई धाकर जी की तरफ चलते हैं, लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मैं इसी माह उत्तराखंड चारधाम तीर्थ यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा पर गए थे। इसी के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान और आरती, मनसा देवी, चंडी देवी दर्शन और कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर दर्शन किए। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट स्नान, राम झूला और लक्ष्मण झूला, गीता भवन दर्शन, शुक्रताल में अक्षयवट, शुकदेव मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन, वृंदावन में बांके बिहारी जी और प्रेम मंदिर दर्शन, गोकुल बरसाना में राधा रानी जी मंदिर, अयोध्या में श्री रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन, काशी जी में बाबा विश्वनाथ जी मंदिर दर्शन और गंगा स्नान, नैमिषारण में चक्रकुंड स्नान और अन्य मंदिरों के दर्शन, प्रयागराज में संगम स्नान और लेटे हनुमान जी के दर्शन, चित्रकूट में हनुमान धारा, कामतानाथ अनुसुईया मंदिर और गुप्त गोदावरी दर्शन, मेहर में शारदा माँ मंदिर दर्शन, बागेश्वर में बालाजी दर्शन, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में दर्शन, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में दर्शन, देवास में चामुंडा माता मंदिर दर्शन और उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग और हरसिद्ध माता मंदिर के दर्शन किए। हमारी यह यात्रा 1 से 21 मई तक रही। हमारी यह धार्मिक यात्रा बहुत ही रोमांचक रही और काफ़ी आनंद आया। क्या बात है भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ जी, आप तो घूमने के बहुत शौकीन हैं और बहुत लंबी आपकी यात्रा है 1 मई से 21 मई तक की रही और इतने स्थानों के आपने दर्शन किए, भाई बहुत हिम्मत का काम है और बहुत जज्बा है आप में घूमने का, इस जज्बे को बनाए रखिए, है ना। और भूषण खेड़ा जी कहते हैं कि ये हरिद्वार घूमने गए थे। आप हैं शनिचंद्रा जी ग्राम रहमानपुर बरेली से, लिखते हैं कि जी मैं घूमने की बात करूं तो मैं पिछली बार मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गया था। ये मंदिर है किछा में छोटा केदारनाथ के नाम से, बिल्कुल हूबहू केदारनाथ मंदिर की तरह बना हुआ है जिसमें भगवान गोलजू जी की प्रतिमा स्थापित है। मैंने यहाँ पर दर्शन किए, मन को बहुत शांति मिली। वैसे मैं आपको बताऊँ मुझे सिर्फ मंदिर जाने का शौक है। बिल्कुल सबकी अपनी अपनी पसंद है शनिचंद्रा जी, किसी को मंदिर जाने का शौक है, किसी को प्राकृतिक जगहों घूमने का शौक होता है, तो लेकिन ये शौक जो है बरकरार रहना चाहिए और घूमना बहुत जरूरी है, घूमते रहिए। तब तक सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, बात हो रही है घूमने की कि आप पिछली बार घूमने कहाँ गए थे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं और नई नई जगहों के बारे में बताया है कि यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। घूमना साथियों बहुत ज़रूरी है। और अब बढ़ते हैं, ये हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान जी लिखते हैं, काफ़ी दिन पहले पिछली बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व वंदे पर गए थे, शारदा नगर पर वहाँ घूमने गए थे, काफ़ी मज़ा आया। घूमने की बहुत सारी अच्छी जगह है, नहाने के लिए भी नदी है, नहर है, आनंद आ रहा था। दोस्तों के साथ फ़ोटो भी क्लिक किए हमने। हम घूमने कहीं जाते ही नहीं, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो शाहरुख खान जी, जिम्मेदारी तो सभी के पास है, लेकिन समय जो है निकालने से निकलता है। और जब भी मौका मिले, काम भी बहुत ज़रूरी है, काम करते रहिए, लेकिन जब भी मौका मिले तो इस मौके को चूकिए मत, है ना। और ये हमारे श्रोता हैं एडवोकेट वारिस अली खान जी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं कि आज का सवाल बहुत अच्छा है, और पिछले 3 वर्षों से मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि इन 3 सालों में मैंने अपने भाई माँ बाप को खो दिया। बहुत दुखद घटना आपके साथ हुई है वारिस अली जी। इस गर्मी में मेरा इरादा दरगाह अजमेर शरीफ जाने का इरादा है, उसके बाद उत्तराखंड जाऊँगा। बिल्कुल, जब भी मौका मिले आप घूमने जाइए, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ जाइए, क्योंकि अपने आप से भी साक्षात्कार होता है जब हम घूमने जाते हैं, नए नए लोग तो मिलते ही हैं। लाल मोहम्मद अंसारी जी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लिखते हैं कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश करने वाले को हमारी तरफ से प्यार भर आदाब। तो आदाब लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपको भी। हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। आज का विषय, पिछली बार घूमने कहाँ गए थे, तो हम तो वैसे कहीं नहीं गए, मगर बच्चों ने जिद की तो नुमाइश देखने जरूर चले गए थे, जिसमें बच्चों ने खूब मस्ती की और चले आए। बिल्कुल, कहीं भी जाइए, बच्चों के लिए तो घूमना बहुत ज़रूरी है। लाल मोहम्मद जी, नुमाइश जाइए, मेले जाइए और किसी दर्शनीय स्थल जाइए, जहाँ भी मौका लगे वहाँ जाइए, और बच्चों को खूब मज़ा आता है, खूब आनंद आता है, और नए नए लोग मिलते, भीड़ भाड़ होती है, गैदरिंग होती है। और घूमने से क्या है कि बच्चों का दिमाग खुलता है, जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों के अंदर, बहुत कुछ जानने को मिलता है उन्हें घूमने से। तो जब भी मौका मिले बच्चों को भी घुमाने ले जाइए और स्वयं भी घूमिए। ये हमारे श्रोता हैं प्रदीप कुमार जी, लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, वैसे तो सुबह से शाम तक घूमते ही रहते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, लेकिन यह तो रोजमर्रा का कार्य है। लेकिन बात दरअसल घुमाई की चल रही है। पिछली बार जयपुर बीकानेर घूमने गए थे, वो समय थोड़ा सर्दी का था। ये कमेंट पड़ा हुआ सा लग रहा है। प्रदीप कुमार जी, आप अपनी बात भी बताइए कि आप घूमने कहाँ गए थे, ये बहुत ज़रूरी है, और जब भी मौका मिले आप भी घूमिए। और जमुना प्रसाद जी लिखते हैं, हम पिछली बार हरिद्वार घूमने गए थे, बहुत अच्छा लगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जमुना प्रसाद जी, हरिद्वार घूमिए, ऋषिकेश घूमिए, जहाँ मन करे वहाँ घूमिए, और लेकिन घूमिए, समय निकालिए अपने आप के लिए, अपने परिवार के साथ घूमिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, लेकिन घूमिए ज़रूर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे। आइए अब आपको जानकारी देने हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रैली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, 5:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें चर्चा की जाएगी सनबर्न से बचाव पर और होगी नीरज से वार्ता। विषय रहेगा भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। हमारे किसान साथियों का प्रिय कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें आज हेलो किसान में सुनवाएंगे आपको गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे शार्दुल विक्रमलाल, जो पशु विज्ञान विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत करेंगे राकेश शर्मा। 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का, जिसमें चर्चा की जाएगी प्रेम से रहें इस विषय पर। साथ ही सुनवाएंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में बैंक सखी के काम श्रीमती किरण देवी, ग्राम सरकड़ा फरीदपुर बरेली से, इनसे बातचीत करेंगी पूनम बहन। रेडियो हेल्पलाइन, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर, जिसमें आज का विषय होगा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बीमारियां और इनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल प्रातः 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यंग बरेली। लोकगीतों का समय रहेगा 8:45 का। कल प्रातः 10:05 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद का, जिसमें आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। दिन के 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल 11:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत

आप सुन सकेंगे कल दोपहर 1 बजे से। रस रंग, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2 बजे। आपकी बात आकाशवाणी के साथ, ये कार्यक्रम रोज की तरह प्रसारित किया जाएगा कल शाम 4:05 पर। कल शाम 5:05 का समय रहेगा कार्यक्रम भजन संध्या का। नारी संसार, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी साफ सफाई और आप इस विषय पर। साथ ही सुनवाएंगे नीतू गंगवार से वार्ता, विषय है बालिका शिक्षा का महत्व। युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6 बजे। ग्राम जगत, हमारे ग्रामीण भाइयों का ये मनपसंद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा बागों की देखभाल। साथ ही सुनवाएंगे कृषक गोष्ठी, विषय है महिलाओं का कृषि में योगदान एवं घरेलू कार्य। प्रतिभागी होंगी श्रीमती सुनीता और श्रीमती नेमवती। कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा कल शाम 7:31 का, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम मोहन झा। और कल का विषय रहेगा गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 होने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं भजन संध्या।

श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण के गाए इस भजन के साथ।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना प्रिय कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। आपकी अपनी रेडियो हम सफर अनुप्रीता सिंह यानी मेरे साथ। कैसी है मेरी सभी सखियां? उम्मीद करती हूँ सभी सखियां स्वस्थ होंगी। हाँ, ये बात है कि गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, एक तरीके से बोले तो चरम पर चल रही है। तो सखियों, अपना अपना बचाव अवश्य कीजिए। और गर्मी इतनी है क्योंकि धूप बहुत तेज है। और सखियों, ये जो धूप है ये सनबर्न का काम करती है। सुबह से ही इतनी तेज धूप लगती है जैसे दोपहर की धूप हो। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो कभी कभी क्या होता है सनबर्न भी हो जाता है, तो उससे अपना बचाव करने की सोचें। अब बचाव कैसे करना है आपको? सही कपड़ों का चुनाव कीजिए। एकदम बहुत तेज धूप से बचने के लिए फुल स्लीव्स यानी कि पूरी बाजू के कपड़े और हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े पहनिए। और कलर भी कपड़ों का बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, मतलब सूती और हल्के कलर के कपड़े पहनिए। उससे क्या होगा ना, जो धूप है वो सनबर्न बॉडी में ज़्यादा नहीं हो पाएगा। साथ ही अपनी आँखें और सिर घर से निकलने से पहले जरूर ढकिए, क्योंकि जो धूप है इस समय की वो सीधा अंदर ही जाती है, तो उससे भी आपको बचना है। आंखों पर चश्मा जरूर लगाइए जो धूप में निकलने से पहले, बहुत जरूरी है, नहीं तो आंखें रेड हो सकती हैं, आंखों में एलर्जी हो सकती है। साथ ही कोशिश तो पूरी ये कीजिए कि धूप से बचाव करें। दोपहर को 12 बजे से और 4 बजे तक कम से कम कोशिश कीजिए कि धूप में ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोचिए। और अगर फिर भी सनबर्न हो ही जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो जाती है तो उससे राहत नहीं पाई जा सकती, नहीं, राहत भी पाई जा सकती है। सबसे पहले तो आपको महसूस होगा, जहाँ पर भी सनबर्न होगा आपको जलन महसूस होगी, तो वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी की पट्टियाँ

और ठंडा ठंडा पानी लगाइए, यानी कि ठंडे पानी से धोइए उस जगह को, ठीक है। और एलोवेरा तो हर कोई जानता है, आज के समय में एलोवेरा हमारे घर के गमलों में, हमारे आसपास की क्यारियों में सभी जगह मिल जाता है। एलोवेरा जेल को जरूर लगाइए जिस जगह पे सनबर्न हुआ है, ये जलन तो दूर करता ही है, साथ ही सूजन भी कम करता है। और ऐसी जगह पे मतलब कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पे सनबर्न हो गया है तो उस जगह को बहुत साफ सुथरे तरीके से रखिए, और फिर जल्दी, कुछ ऐसा ना हो, ऐसी कोई गर्माहट ना लगे वहां पे कि वो जगह और ज्यादा मतलब आप परेशान हो जाएं। तो धूप बहुत है, ठीक है, गर्मी भी बहुत है, हर मौसम का अपना अलग एक मजा होता है, लेकिन ये जो आग बरस रही है, सनबर्न हो रहा है, इससे आप अपना बचाव स्वयं ही करेंगी।

0: खेल से संबंध रखती हैं। आइए अब चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये वार्ता। वार्ता का विषय है भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं नीरज।
1: भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज की इस प्रेरणादायक रेडियो वार्ता का विषय भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं। यदि महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त हो तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का विकास तेजी से होता है। आज महिलाएं घर की चार दीवारियों से निकलकर शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, कृषि, सेना, खेल, व्यापार और तकनीकी जैसे हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं का महत्व। कहा जाता है एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने से गांवों में महिला नेतृत्व बढ़ा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए। समाज में बेटा बेटी के बीच समानता का भाव विकसित है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका। आज महिलाएं राजनीति और प्रशासन में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी कार्यक्रम, विद्यालय, आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे उद्योग चला रही हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, खाद प्रसंस्करण जैसे कार्यों से परिवार की आय बढ़ा रही हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। देश भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्यों में महिलाओं की, ग्रामीण महिलाएं खेतों में बीज बोने, निराई गुड़ाई, पशुपालन, दूध उत्पादन और फसलों की कटाई जैसे अनेक कार्य करती हैं। खेल जगत में महिलाएं की उपलब्धियां। खेलों में भी भारतीय महिलाओं ने विश्व स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। विज्ञान और तकनीक। भारतीय महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी पहचान बना रही हैं, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष महिलाओं को विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेना और सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। आज महिलाएं भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। वे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए साहस और पराक्रम का परिचय दे रही हैं। समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं परिवार और समाज के बीच एक मजबूत कड़ी हैं। वे बच्चों को संस्कार देती हैं, परिवार को जोड़कर रखती हैं और सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाती हैं। यदि महिलाएं जागरूक हों तो बाल विवाह कम होंगे, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां कम होंगी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, रोजगार में असमानता, सुरक्षा संबंधी समस्याएं। महिलाओं के सशक्तिकरण के उपाय। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है बालिकाओं को शिक्षा बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए। समाज में बेटा बेटी के बीच समानता का भाव विकसित है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका। आज महिलाएं राजनीति और प्रशासन में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाएं खेतों में बीज बोने, निराई गुड़ाई, दूध पशुपालन उत्पादन और फसलों की कटाई जैसे अनेक कार्य करती हैं। प्रेरणादायक संदेश। प्रिय श्रोताओं, महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। आज आवश्यकता है कि यदि हम महिलाओं को

0: सम्मान, समान अवसर और आगे बढ़ने का पूरा समर्थन दें तो वे एक परिवार को एक बना सकती हैं। एक सशक्त महिला ही सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त भारत का निर्माण करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि हम सभी को मिलकर महिलाओं के सम्मान, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प लें और भारत का विकास में उनकी भागीदारी को और मजबूत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। विषय था भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी नीरज। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अब समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, और जो है इनसे मिलिए। आज हम इनसे मिलिए में लेकर आए हैं रजनी जी को, और हमने बात की है इनसे महिलाओं के लिए कानून कितना जरूरी है और कानून की जानकारी उनके लिए कितनी होनी चाहिए।
1: नाम है आपका?
2: रजनी एडवोकेट बरे।
0: रजनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी सखी से मिलती हूँ और वो सखी मेरी घर को संभालने के साथ साथ बाहर भी निकली हुई होती है और बाहर की दुनिया देखती है, काम करती है। और आज के टाइम पे ये हो भी रहा है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी बहनें आगे ना हों,
2: जी।
0: लेकिन इतने के बावजूद भी कहीं कहीं अभी भी देखने को मिल जाता है। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बच्ची जब बड़ी होती है तब से लेकर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी शायद उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। रजनी जी, हमारा विषय है महिलाओं के लिए जो है कानून की जानकारी, वो कितनी जरूरी है।
2: हाँ, सभी महिलाओं को कानून की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई बेटी है या बहन है, बाहर जा रही है, उसे हर कानून की जानकारी देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है रजनी जी, लेकिन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो हर महिला को पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो सकता, या अगर उनको थोड़ी भी जानकारी हो तो वो उस जानकारी की वजह से अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत व्यवहार ना होने दें, तो कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं? अच्छा, एक लड़की की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद बहुत से रिश्ते आजकल ऐसे देखने को मिल रहे हैं, रजनी जी ऐसी कौन सी सामान्य कानूनी जानकारियां हैं जो हर महिला को होनी चाहिए?
2: अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून
0: जी
2: महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल का शोषण,
0: जी
2: बाल विवाह और भेदभाव से सुरक्षा देता है।
0: जी
2: जानकारी होने पर वे अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर के लिए जब महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार पता होते हैं, तो वे किसी भी गलत व्यवहार का डटकर सामना कर सकते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, जैसे कई महिलाएं केवल जानकारी की कमी के कारण अत्याचार सहती रहती है।
0: जी
2: कानून की जानकारी उन्हें शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने का रास्ता दिखाती। समाज में समानता बढ़ाने के लिए कानूनी जागरूकता महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, संपत्ति और सम्मान में बराबरी का अधिकार दिलाने में मदद करती। परिवार और समाज को जागरूक करने के लिए महिलाएं अपने बच्चों को और परिवार को भी सही सही जानकारी दें, जिससे उनसे पूरा समाज मजबूत बना रहे और वो निडर रहे। महिलाओं को कानून की जानकारी केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि सम्मान, समानता, आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत जरूरी है। जागरूक महिलाएं ही सशक्त महिलाएं होती हैं, और सशक्त महिलाएं ही मजबूत समाज का निर्माण करती हैं। महिलाओं को कानून की जानकारी कितनी उपयोगी है? महिलाओं के लिए की जानकारी एक ढाल की तरह काम करती है। यह उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक बनाती है। आज के समय में महिलाओं को घर, नौकरी, शिक्षा, समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, इसलिए उनके लिए कानूनी जानकारी होना बहुत जरूरी। कानून की जानकारी होने से महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, साइबर अपराध और कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है। ये समझ पाती हैं कि किसी भी गलत व्यवहार को सहना जरूरी नहीं है और कानून उनके साथ खड़ा। इसके अलावा कानूनी जागरूकता महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। वे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।

0: समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सके। एक जागरूक महिला अपने परिवार और बच्चों को भी सही शिक्षा और अधिकारों की जानकारी दे। सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उनका लाभ तभी मिल सकता है जब महिलाओं को उनके बारे में जानकारी हो। इसलिए हर महिलाओं को अपने अधिकारों और कानून बारे में जरूर जानना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है, हर महिला को कानून के बारे में कम से कम अपने लिए तो पता होना ही चाहिए, उनकी सुरक्षा और आत्मरक्षा दोनों के लिए ही।
0: जी,
1: आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, अभी आपने सुनी हमारा जो नया सेगमेंट है, इनसे मिलिए, और उसका विषय था महिलाओं के लिए कानून की जानकारी कितनी ज़रूरी है, और हमें जानकारी दे रही थी एडवोकेट रजनी।

सखियों, खूबसूरती एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इस धूप में खूबसूरती खूबसूरती बनी रहे इसके लिए आप लोग प्रयास करते रहिए, धूप से बच के रहिए, और जो लिक्विड डाइट है उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तली भुनी चीज़ों से दूर रहिए, नहीं तो कील, मुहासे, चेहरे पर दाने, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और खूबसूरती में चार चांद कहूँ या क्या कहूँ लग सकते हैं, तो थोड़ा सा सेफ रहिए। और बस अब प्रोग्राम यहीं तक, दीजिए अपनी रेडियो सखी, रेडियो हमसफर, अनुप्रीता सिंह को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभवों को लिख। हिम्मत हो अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, समय भी रुक जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर युवा ठान ले तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। साथियों नमस्कार, कार्यक्रम युववाणी लेकर आज हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त शीशपाल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। साथियों, युववाणी कार्यक्रम में कई सारे सेगमेंट होते हैं, आप जानते ही हैं, और इसमें हम पूछते हैं आज का सवाल। आज का सवाल हमने पूछा था हमारे फेसबुक पेज पर कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। साथियों, इस सवाल का जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने हमको लिख भेजा है। और साथियों, इस सवाल की खास बात यह है कि इस सवाल के दो प्रकार के उत्तर हमको मिल रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है गोदावरी नदी, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कावेरी नदी। तो साथियों, इस सवाल का जवाब ये दोनों ही ठीक हैं, जिन्होंने लिखा है गोदावरी और जिन्होंने लिखा है कावेरी। साथियों, आपको बता दें कि ये जवाब जो हैं, दोनों ही जवाब बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है।

साथियों, हम बात कर रहे थे जो आज के सवाल की कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें साथियों, गोदावरी और कावेरी नदियों कहा जाता है, आपको बताया, लेकिन क्यों कहा जाता है ये हम अब बता रहे हैं। गोदावरी नदी जो है इसके आकार जो है इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर और पौराणिक महत्व के आधार पर दक्षिण गंगा कहा जाता है इस नदी को। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। और दूसरा जवाब था कावेरी नदी, ये जवाब भी ठीक है। धार्मिक पवित्रता है इसकी, आचार विचार और लोगों की आस्था के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है। तो इस प्रकार साथियों, दोनों जवाब जो हैं आपके सही हैं। और अब बात करते हैं साथियों, गर्मी कैसी चल रही है, मजा आ रहा है साथियों? इसका कारण क्या है? कारण भी हम ही लोग हैं कहीं ना कहीं साथियों। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधे कटते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। और साथियों, गर्मी इसलिए भी बढ़ रही है, कारण ये भी है कि अभी चल रहा है नौतपा, जो कल से शुरू हुआ है। नौतपा क्या होता है? नौतपा साथियों भीषण गर्मी के दिनों को ही कहा जाता है। ये कहा जाता है कि 9 दिन जो है गर्मी बहुत भीषण पड़ती है। जब सूरज की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं तो तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में लू, डिहाइड्रेशन, पेट की समस्याएं, कमजोरी जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं साथियों इन दिनों में गर्मी में। तो भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। हम लोग बाहर निकलते हैं तो भाई कपड़े पूरे ढक के निकलें, और सबसे विशेष बात, पानी खूब पीते रहें, शिकंजी पीते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें, और बाहर का तला भुना खाने से बचें, फास्ट फूड खाने से बचें। तो क्योंकि ये जो है बहुत नुकसानदायक है, आपका पेट खराब कर सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू कर सकता है। तो बाहर के फास्ट फूड वगैरह ऐसे खाने से बचें, तला भुना खाने से बचें, पानी खूब ज़्यादा पिएं, अपना ध्यान रखें, और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत आपको मिलेगी ज़रूर।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: साथियों, हम बात कर रहे थे गर्मी की, नौतपा की और बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात युवाओं की। साथियों, युवा ही हैं जो देश को आगे ले जाते हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को ही निभानी है, युवा ही देश के कर्णधार हैं। तो साथियों, जैसे हमने कहा गर्मी बढ़ रही है, तो इसका निराकरण भी कौन करेगा? युवा ही करेंगे। तो युवाओं को आगे आना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और साथियों, ये तो हो गई बहुत सारी बातें गर्मी की और हम लोगों की। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो गर्मी के इन दिनों में बहुत परेशान हैं। चिड़ियां हैं, कई बार बेहोश हो जाती हैं, मर भी जाती हैं, तो उनके लिए काम कौन करेगा? हम ही करेंगे, युवा ही करेंगे। साथियों, तो उनका ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में उनके लिए रखें, थोड़ा सा दाना उनके लिए रखें जो उनके प्राण को बचाएगा, और कोई भूखा या प्यासा जानवर है तो उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, तो ऐसी भीषण गर्मी में उनको भी राहत मिलेगी। और ऐसा करके, यकीन मानिएगा साथियों, ऐसा करके आपको बहुत शांति मिलेगी। एक बार करके देखिए कितना अच्छा लगता है।

श्रोताओं, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय जो है अब इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। तो कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अपने दोस्त शीशपाल को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना प्रिय कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान बाड़ी सुनन बारे सब भैया बहनन को आपकी बहन पूनम
2: और आपके भैया राकेश शर्मा की
1: राम राम, राम। और कैसे हालचाल है राकेश भैया आपके?
2: बिल्कुल हालचाल बढ़िया है का देखो इस समय भी गर्मी पड़ रही है कुछ ज्यादा।
1: हाँ भैया बात तो पड़ रही
2: तो
1: है,
2: गर्मी की वजह से थोड़ी वो समस्याएं तो हैं क्योंकि जो जरूरी काम है वे करने के लिए बाहर जाने पड़ते, बाकी और सब ठीक ठाक है।
1: अच्छा तो खेती बाड़ी में काम सही चल रहा है?
2: हाँ खेती बाड़ी को काम खैर सब ठीक ठाक चल रहा है और अगली फसल की तैयारियां चल रही है।
1: हाँ।
2: दशहरा देखो हुई है गो।
1: हाँ।
2: अब दशहरा के बाद में खुद का है हमारे भैया लोग जो धान की पौध डाली जाती है बाकी शुरुआत कर देते हैं।
1: अच्छा भैया तो जाकर आप भी शुरुआत करने वाले हैं?
2: हाँ कुछ समय के बाद में शुरुआत करिए जाएगी।
1: अच्छा अच्छा तो बात है तो अपने भैया से बहुत सी करेंगे लेकिन काओ तो सवाल पूछ लें।
2: बिल्कुल आज कौन सा सवाल लेके आई हो हमारे भैया के बीच में?
1: भैया आज को सवाल तो जय है कि हमारे भैया बहन गर्मी में गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें, तो जाको जवाब तो बतावेंगे लेकिन कार्यक्रम के आखिर में, तब तक आप सब भी जिस सवाल के जवाब पे मंथन कर लियो।
2: पूनम बहन जी सवाल तो बहुत बढ़िया लेके आई हो क्योंकि नौ तपा शुरू हो गए हैं और नौ तपा में जो नौ दिन ऐसे होते हैं कि आदमी को बिल्कुल तपाए देते हैं।
1: हाँ।
2: तो समय के अनुकूल सवाल लेके आई हो और देखो जैसे कि आज हमारो बातचीत को जो विषय है वो है प्राकृतिक खेती को महत्व, तो प्राकृतिक खेती पे हमें चर्चा करनी है। बहन जी क्या कहोगी आप?
1: भैया हम तो जय कहेंगे कि आज के समय में खेती में बहुत खर्चा होता है ना, मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाती है भैया, किसान भैया बहन घटती आय में सभी को चिंता में डाल देती है, यानी कि वे निरी वे खाद उद लगाते हैं जहाँ से उनको खर्चा तो ज्यादा होता है लेकिन जो आमदनी है वह कम होती है।
2: देखो जो महंगाई इतनी बढ़ रही है इनसे हमारे लिए राहत मिले इसके लिए समाधान सामने का निकल के आओ है प्राकृतिक खेती हो, क्योंकि जब हमारे भैया प्राकृतिक खेती करेंगे तो उनको स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक ठाक बनो रहे और जो फालतू पैसा

0: होते हैं, विभिन्न प्रकार की महंगी महंगी चीजें खेत में डालनी पड़ती हैं, बा उसे उनके लिए राहत मिलेगी।
1: हाँ भैया, और जाके अलावा पता है आपको, पहले की खेती आप देखते हैं कि पहले के जो हमारे भैया बहन हैं वे प्राकृतिक खेती कैसी होती है, जहाँ आपको पता होगा, पता हो तो बताओ हमारे भैया बहन को।
0: देखो है का कि प्राकृतिक खेती को मतलब है कि हम जा हिसाब से खेती करें कि बामा जो रासायनिक खादें हैं, जहरीली जो दवाइयां हैं, इनको प्रयोग ना करूँ जाए। केवल जैसे गोबर है, गौमूत्र है और नीम है, मट्ठा है, जो प्राकृतिक साधन हैं, उनको प्रयोग करके जब हमारे किसान भैया खेती करते हैं तो उस खेती के लिए प्राकृतिक खेती कहते हैं।
1: अच्छा भैया, यानी कि आपको कहने को मतलब जय है कि जो हमारी खेती है वह पूरी तरह प्रकृति के साथ मिलकर ही करी जाए, है ना।
0: हाँ बिल्कुल सही कही आपने। देखो जैसे कि जंगल में पेड़ हैं, बिना खाद और बिना उनमें कोई रासायनिक दवाइयाँ ना डाली जाती हैं, लेकिन फिर भी वे बड़े होते हैं। उसी प्रकार से जब हम जे जहरीले तत्व हैं, जो रासायनिक खादें हैं, इनको प्रयोग ना करेंगे, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनको प्रयोग हम ना करेंगे, तो जो उपज मिलेगी हमारे लिए, बा उपज में किसी भी प्रकार को नुकसान पहुंचाने वालों को ऐसे तत्व ना हुए है, बासे हमारे स्वास्थ्य ठीक बनो रही है और जो हमारी धरती माता है बाऊ को स्वास्थ्य अच्छो बनो रही है।
1: हाँ भैया, जा सका हो कि जो रासायनिक खाद है, आपने देखी है कि रासायनिक खाद जब खेत में लगती हैं तो वे मिट्टी को धीरे धीरे कमजोर करती हैं, और प्राकृतिक खेती में मिट्टी में जीवाणु और केचुआ जो होता है उनकी उपज बढ़ती है।
0: देखो तो पहले के समय में कहो, पहले जो जो रासायनिक खाद हैं ये थोड़े ही, पहले हमारे भैया लोग जो गोबर वगैरह हो तो बाको एकत्र करते रहते, गोबर की खाद बनती, जो सब्जी के छिलका वगैरह होते वे सब एकत्र करते रहते, और बा खाद को जब हम खेतों में इस्तेमाल करते तो बाको असर काफी काफी समय तक रहते।
1: हाँ भैया, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जरूरत है सबको प्राकृतिक खेती अपनाने की, है ना।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जो महंगे महंगे रसायन हैं इनसे हमारे किसान भैया दूर रहें, उससे हुए का कि जब प्राकृतिक खेती को अपनावेंगे उनकी जो लागत है वह कम होएगी, जो ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं वह उनको पैसा बचेगा, और बाकी जो पैदावार होगी वह हमारे स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार को कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगी।
1: हाँ भैया, और ऊपर से फसल को उचित दाम भी अच्छो मिलाए, जब वह फसल हमारी अच्छी होगी और वह अच्छी तरीका से होगी और वह कतई सही तरीका से करी भी होगी, यानी कि बिना रासायनिक दवाइयां करी भी होगी, तो वह हमारी फसल को दाम अच्छो मिलेगा।
0: देखो पूनम जी, आपने देखो ये कि आजकल कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, और जो बीमारियां बढ़ रही हैं इसको मुख्य कारण यह है कि हम जो फसल होती है, जो उत्पादन होता है, वहाँ कई प्रकार के रसायन को प्रयोग करो जाते हैं। अच्छा भाई देखो बहन जी, हम अपने कार्यक्रम में कोशिश जय करते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आ में, तो आज का जानकारी हमारे भैयन के बीच में पहुँचा रही हो।
1: भैया, अब कार्यक्रम में आप जो हमारे भैया बहन हैं वे फोन करते हैं, और फोन के माध्यम से उनकी जो समस्या होती है वह को समाधान करता है, तो कार्यक्रम में डॉक्टर साहब उपस्थित हो चुके हैं और देख रहे हैं कि हमारे कौन से भैया बहन ने कॉल करी है, और बिन्ने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वे हैं शार्दुल विक्रम लाल, और विषय है गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन।
0: साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने किसान भाइयों के पास कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपने किसान भाइयों के पास पहुंचाएं, जिससे कि जो हमारे किसान भैया खेती बाड़ी के काम कर रहे हैं या पशुपालन के काम कर रहे हैं, पहुंचाई गई जानकारी से उन्हें लाभ मिले। तो ऐसे ही आज हमारे कार्यक्रम में है डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु विज्ञान ICARIVRI बरेली से हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारी बातचीत का विषय है गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन, जैसा कि इस समय गर्मी का समय है, नौ तपा का समय चल रहा है, गर्मी भयंकर वाली पड़ रही है, ऐसे में इंसान तो परेशान है ही है, उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं तो पशुओं के सामने भी इस प्रकार की समस्या आती है, विशेष करके जो दूध देने वाले पशु हैं वो गर्मी में ठीक ठाक बने रहें, उनका जो उत्पादन है वो कम ना हो, इससे संबंधित आपसे बातचीत करनी है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे।

0: कि जिस प्रकार से इंसानों को लू लगती है, उसी प्रकार से क्या जो हमारे पशु हैं उनमें भी लू लगती है? और यदि लगती है तो उसके लक्षण क्या हैं?
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी हाँ, जैसे इंसानों को लू लगती है वैसे ही पशुओं में भी लू लगता है। आप जानते हैं कि जो गाय भैंस सही एक 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से अपना जो जीवन है वो निर्वहन कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि वो अपने जो भी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बाहर वातावरण में नहीं ट्रांसफर कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे अभी टेम्परेचर चल रहा है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में क्या है कि उसके अंदर जो भी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो वातावरण तक नहीं ट्रांसफर हो पाती। गर्मी के कारण जो तनाव हुआ है वो जन्म ले लेता है और उसके कारण उसका खान पीना कम हो जाता है, वो हाँफने लगता है, आप देखेंगे तो उसका दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, वो खाना पीना भी कम कर देता है अपना, और कभी कभी आप देखेंगे ये लंबे समय तक यदि चलता है तो गाय में आप देखेंगे तो वो बांझपन की भी समस्या देखने को मिलती है, मतलब आप बार बार उनको गर्भधारण करवाएंगे लेकिन फिर भी वो ठहरेगी नहीं।
0: डॉक्टर साहब, इस प्रकार की जब स्थितियां हमें दिखाई दें या जो लक्षण आपने बताए वो लक्षण हमें अपने पशु में दिखें, तो हमें पशुशाला में क्या-क्या परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि हमारी पशुशाला ठंडी बनी रहे, या वहां पे हम जो अपने पशुओं को बांध रहे हैं वो गर्मी के प्रभाव से बचे रहें?
1: देखिए, सबसे पहला जो बदलाव हमें करना होता है वो पशुशाला में ही है, क्योंकि यदि पशुशाला सही तरीके से हम लोग रखेंगे जहाँ पे उसको सही तरीके से आवास प्रदान करेंगे तो इस तरह की परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। तो इसमें सबसे पहले तो यदि आपका जो छत है, जो पशुशाला का छत है, यदि वो टिन और एस्बेस्टोस से बना हुआ है तो आप जानते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ऐसे में उसको क्या है, ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 से 6 इंच का जो पुहाल होता है, पुहाल का लेयर उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर घास जो होती है उसको रख सकते हैं जिससे कि वो गर्म ना हो। इसके अलावा आप यदि उसमें चूने का, वाइट कलर के चूने का पेंट भी कर देंगे तब भी वो गर्म कब होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आवास दे रहे हैं आप पशु को वो खुला होना चाहिए, तो उसमें जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और जो वायु है वो निरंतर फ्रेश वायु पशु को मिलती रहे। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि जैसे पशु को ठंडक, थोड़ा ठंड प्रदान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे दोपहर के टाइम में आप टाट के जो पर्दे होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जूट की जो बोरियां होती हैं उसको जो भी जो खुला हुआ प्रवेश का द्वार है वहां पे उसे लटका सकते हैं और उसको थोड़ा भिगा देंगे तो उससे जो भी हवा पास करेगी तो वो पशु को थोड़ा ठंडक देगी, तो इससे भी पशु को थोड़ा राहत मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, गर्मी के समय में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे जो पशु हैं उनको भी प्यास ज़्यादा लगती होगी, तो पानी पिलाने का सही तरीका क्या है? कहीं कहीं गांव में ये देखने को मिलता है कि गांव में जो तालाब होते हैं, किसान भाइयों के पास में 4-6 जानवर हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि सारे जानवरों को तालाब में ले गए, वहीं पे नहलवाया, वहीं पे पानी पिलवाया, तो वो पानी पिलवाना कहाँ तक उचित है? क्या उन्हें तालाब का पानी अपने जानवरों को पिलाना चाहिए? सही तरीका क्या है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पे आप तालाब में सभी जानवरों को नहला रहे हैं और वहीं का पानी पिलाएंगे तो वो पानी स्वच्छ नहीं होगा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरह का जो पद्धति उससे थोड़ा हटे। आप जानते हैं जैसे आपने बताया कि ये जो पशु जो है गर्मियों के टाइम में ज़्यादा पानी पीते हैं, तो पानी पीने का जो कैपेसिटी है वो 40 से 50% ज़्यादा पानी पीते हैं, तो हमको चाहिए कि हम लोग इनको लगभग दिन में हर वक्त इनके पास उपलब्ध रहे पानी, शीतल स्वच्छ जल इनके पास हर वक्त उपलब्ध रहे, और लगभग दिन में 4 से 5 बार हमें इनको पानी का सेवन, और हर बार स्वच्छ पानी ही देना है, एकदम फ्रेश पानी। दूसरा चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि जब भी हम पशु को इस तरह से रख रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसके साथ हमको चाहिए कि कुछ थोड़ा जैसे आप लवण उसके साथ या फिर उसके साथ गुड़ दे देंगे थोड़ा ऐड करके उसी पानी के साथ, तो क्या वो भी लू से पशु को बचाने में हेल्प करेगा।
0: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं कुछ बुजुर्ग गांव में कहते हैं कि गुड़ जो होता है गर्म होता है ठंड के समय में देना चाहिए, गर्मी के समय में अगर हम गुड़ देंगे तो हो सकता है उसका कोई दुष्प्रभाव हो जाए, क्या ऐसा कहीं है?
1: नहीं, गुड़ जो है वो उसको लू से बचाए गए, हम जैसे ORS का इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: आप जानते हैं कि गर्मियों में जब भी डिहाइड्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है पशु
0: जी
1: को।
0: जी अच्छा, होता क्या है कि गर्मी के समय में हमारे पशु जो है खाना कुछ कम कर देते हैं, जो उनका चारा है उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्या कारण है और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो पशु हैं वो चारा ठीक ठाक खाएं? क्योंकि जब वो चारा ठीक ठाक लेंगे तभी जो दूध का उत्पादन है वो ठीक ठाक रहेगा, तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें?
1: गर्मी के टाइम में पशु लगभग 10 से 15% जो है अपना आहार कम कर देते हैं, और कुछ कुछ किसान हमारे भाई क्या करते हैं कि वो ज्यादा दाना देते हैं।

0: हैं जैसे कि दूध उनको ज्यादा मिले। सही मायने में ये चीज नहीं करना चाहिए, हमें 10 से 15% उसको दाना कम देना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि आप जानते हैं जितना ज्यादा दाना देंगे उतना ज्यादा वो शरीर में गर्मी पैदा करेगा, और गर्मी पैदा करने से फिर तनाव बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर गर्मी पैदा क्योंकि बाहर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है वो वातावरण में। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम जितना हो सके हरा चारा हम अपने पशु को गर्मियों के टाइम में दें, और कोशिश करें कि ये जो भी हम चारा दे रहे हैं, जो भी दाना दे रहे हैं पशु को, वो हम ऐसे समय में दें जबकि वातावरण का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है। जैसे आप देखें तो सुबह 6 बजे के पहले यदि हम दाना दें, शाम में 6 बजे के बाद हम लोग यदि हरा चारा और दाना दें, तो क्या है कि पशु अच्छे से खाएगा भी और वो उसको लगेगा भी। और हम कोशिश करें कि लगभग 60 से 70% जो भी हरा चारा है और जो दाना है वो हम लोग ऐसे समय में दें जब ठंडा रहता है।
1: जी, होता क्या है जैसे ठंड के समय में हरा चारा जो हमारे किसान भाई हैं वो कम मात्रा में देते हैं, 70% लगभग सूखा चारा भूसा वगैरह लेते हैं, और बल्कि 25-30% के आसपास हरा चारा मिलाते हैं। तो कहने का मतलब है गर्मी के समय में हरे चारे की मात्रा ज्यादा कर देनी चाहिए, आधा आधा कर दिया जाए,
0: जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि 1/4 ही, लगभग आप देखें तो 4 से 5 kg से ज्यादा हमें सूखा चारा
1: जी
0: नहीं प्रदान करना चाहिए।
1: अच्छा, इसके अलावा जैसे दलिया खर वगैरह इस प्रकार की जो चीजें देते हैं हमारे किसान भाई, तो गर्मी के समय में क्या वो सुबह शाम भी दे सकते हैं?
0: सुबह शाम देने से अच्छा है, ऐसे क्या है कि क्योंकि दिन के टाइम में वैसे भी पशु आपका कम खाएगा, और फिर जो भी ऊर्जा पैदा होगा उससे उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो फिर पशु को तनाव क्रिएट कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि उसे शाम के टाइम या सुबह के समय।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, चारा और ये दाना वगैरह तो हमारे किसान भाई देते ही देते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं?
0: हाँ, इसमें सबसे पहला तो चीज़ें आप देखिए, हाँफने से क्या होता है, कितने बार क्या पशु के पेट में एसिड बनता है, तो जिससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम के करीब मीठा सोडा हमको प्रदान करना चाहिए। दूसरी चीज़ है सप्लीमेंट में आप देखें तो खनिज मिश्रण भी हमें पशु को प्रतिदिन 50 ग्राम देना चाहिए गर्मी के टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं जो भी पसीना बहता है, जो भी लार टपकता है उसका जो लार छूटता है, तो उसमें बहुत सारे खनिज और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ये हमारा पशु है वो लूज कर देता है। तो
1: डॉक्टर साहब, अपनी बातचीत के साथ साथ एक श्रोता लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ भैया जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर आर बी सिंह बोल रहा हूँ, अल्लाह के जनपद शाहजहांपुर से।
1: आज हमारी बातचीत का विषय है गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से पूछिएगा, डॉक्टर साहब उपस्थित हैं।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते सिंह साहब, बताइए।
2: एक हमारी गाय है डॉक्टर साहब, तो उसे इस समय बुखार आ जाता है।
0: अच्छा।
2: और पानी भी कम पीती है, इस समय पानी कम पीती है ना साहब? तो क्या काम हो सकता है?
0: ये देखिए, अभी तो टेम्परेचर भी ज्यादा है आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि लू जब लगती है तब तापमान भी बढ़ जाता है, पशु का जो तापमान है वो भी बढ़ा रहता है, और आप जैसे कह रहे हैं पानी भी कम पी रही है क्योंकि चारा पानी भी कम हो जाता है उसका, तो ऐसा हो सकता है कि इसको लू लग गया हो। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहलाइए, स्वच्छ और शीतल जल इसको 24 घंटे इसके पास में रखिए, और इसके साथ साथ जो है मीठा सोडा लगभग 50 से 100 ग्राम के करीब प्रतिदिन इसको दीजिए, और 50 ग्राम के करीब खनिज मिश्रण। आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर जो भी आपका पशु है वो फिर से पहले की तरह से ठीक हो जाएगा, और नॉर्मली जो भी उत्पादन दे रहा है और खाना पीना खा रहा है वो खाने लगेगा। देखिए, ज्यादा गर्मी होने के कारण यदि आप ऐसा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं तो कोशिश कीजिए उसको छांव में ही रखिए, और जैसे अभी हमने थोड़ा सा चर्चा की कि कैसे पशुशाला का हमें प्रबंधन करना है, थोड़ा उस दिशा में थोड़ा काम कीजिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हमें मीठा सोडा देना चाहिए, तो मान लीजिए हमारी एक भैंस है तो मीठा सोडा 50 ग्राम डेली दिया जाए?
0: हाँ।
1: पानी में घोल दिया जाए या चारे में, किस प्रकार से?
0: चारे के साथ भी मिला के दे सकते।
1: अच्छा, और आपने कहा कि खनिज लवण, तो खनिज लवण में हम नमक ही दे सकते हैं या अन्य भी कुछ?
0: नमक दीजिए।
1: अच्छा,
0: नमक दे सकते हैं, नमक दीजिए 30 से 40 ग्राम के करीब, और 50 ग्राम के करीब खनिज लवण का मिक्सचर आता है वो।
1: जी। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब देखने को मिलता है कि हमारे पशु जो हैं गाय की तुलना में भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रजनन की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है, तो ऐसे में हमारी जो भैंस है उनकी प्रजनन की क्षमता ठीक ठाक बनी रहे क्या करना चाहिए?
0: आप जानते हैं कि जो भैंसें होती हैं वो थोड़ा काले रंग की होती हैं,
1: इसके
0: साथ साथ इनमें जो पसीने बहाने की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी कम होती हैं, जिसके कारण इनमें जो लू का प्रकोप है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि बहुत बार जब गर्मियों में

0: भैंस यदि गर्मी में भी काल में भी आती है तो हमारे किसान भाई पहचान नहीं पाते। ऐसे में क्या है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको चाहिए, स्पेशली क्योंकि गर्मियों के टाइम में दिन के समय तो बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, तो जो भी भैंसें होती हैं वो रात के टाइम में जो भी मध्यकाल है वो शो करते हैं। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के करीब थोड़ा मॉनिटर करते रहें अपने भैंसों को, और वो यदि गर्मी में दिखती है तो कोशिश करें कि उन्हें सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब थोड़ा ठंडा रहता है उस वक्त ही कृत्रिम बीजदान के द्वारा उनको गर्भदान करवाएं।
1: नासा कुछ लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि भैंस में लक्षण हमें अगर सुबह के समय दिखे हैं तो हम कृत्रिम गर्भाधान तुरंत ना करवाएं
0: हाँ, शाम
1: बल्कि कुछ समय के बाद करवाएं, तो वो समय कितना होना चाहिए, कितने अंतराल के बाद हमें कराना
0: लगभग
1: चाहिए?
0: 12 से 14 घंटे के बाद हम लोग AM PM रूल कहते हैं उसको।
1: जी
0: जैसे सुबह के टाइम यदि भैंस या गाय गर्मी में आई है तो
1: जी
0: हमको उसको शाम के टाइम में गर्भदान करवाना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी के समय में आपने बताया लू लग जाती है, किस प्रकार से हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अलावा लू के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं गर्मी के समय में पशुओं को देखने को मिलती हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप देखेंगे कि गर्मी के समय में जो जीवाणु है वो भी बहुत तेजी से पनपते हैं, तो इसके कारण आप देखेंगे कि थनैला का जो प्रॉब्लम होता है वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे पशुओं में। तो इसके लिए हमारे
1: डॉक्टर साहब अपनी बातचीत के साथ साथ एक कोई श्रोता लाइन से जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो किसान वाणी।
1: हाँ, किसान वाणी में आपका फोन लगा है, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
2: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया बोल रहे हैं सर।
1: आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद
0: सर। नमस्ते ठाकुर जी। हाँ, आपका प्रश्न बताइए।
2: इस समय बहुत बेहद गर्मी पड़ रही है,
0: हाँ
2: इसमें हम पशुओं की सुरक्षा किस प्रकार रखते हैं? सुबह शाम के लिए तो वैसे नहलाते हैं,
0: हाँ
2: हरा चारा भी खिलाते हैं, और फिर इसके अलावा कोई बीमारी न पैदा हो इनके लिए के बारे में।
0: आपने टीकाकरण तो करवाया होगा ना मार्च अप्रैल में, खुरपका
2: अप्रैल में
0: मुंहपका
2: हुआ था।
0: अप्रैल में हुआ ना, खुरपका मुंहपका का करवाया होगा आपने, फिर गला घोटू का करवाया होगा।
2: हाँ
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात
2: हाँ
0: है। और पेट के कीड़े की दवा आपने दिलवा दी अपने पशु को?
2: हाँ दिलवा दी।
0: चलिए अच्छी बात है, अच्छा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि खनिज लवण आप देते हैं अपने पशु को?
2: हाँ लवर देते हैं, खनिज लवर देते हैं,
0: हाँ
2: भैंसियाँ आए उनके लिए खिलाते हैं।
0: हाँ तो 50 ग्राम खनिज लवण अपने पशु को अवश्य दें, और मीठा सोडा हो सके तो 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। और दूध उत्पादन यदि आपका पशु कर रहा है ठीक है, तो बाईपास फैट होता है, एक अच्छे क्वालिटी का बाईपास फैट
2: हाँ
0: अपने पशु को यदि आप 100 से 200 ग्राम के करीब प्रदान करते हैं तो उसका दूध का उत्पादन भी बना रहेगा, जस का तस, और अच्छा दूध का फैट भी मिलेगा। ये काम आप कर सकते हैं ठीक है।
2: एक जानकारी और चाहते हैं सर
0: हाँ बताइए।
2: कि हमारी एक भैंस है, झुटिया भैंस है, गर्भाधान नहीं रुकता। कई
0: अच्छा
2: बार डॉक्टर साहब से भी कराई थी, उन्होंने कहा इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की
0: हाँ
2: दवा डॉक्टर साहब ने दिलवाई थी,
0: अच्छा,
2: ये
0: उसका
2: बात फिर कराई थी, लेकिन वो नहीं रुक, काफी तगड़ी भैंस हो गई है।
0: अच्छा, तगड़ी ज्यादा हो गई है तो उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करवाइए, क्योंकि व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और दूसरी चीज है, उसका एक बार किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से उसको एक बार जांच अच्छे तरह से करवाइए ठीक है, जिससे कि उसका जो सही कारण है जिसके कारण वो नहीं ठहर पा रही है वो पता लग सके, बाद कृत्रिम बीजदान करवाइए, तभी सक्सेस आपको मिलेगा। नहीं तो फिर क्या है, आप बार बार कृत्रिम बीजदान करवाते रहेंगे और आपका समय और पैसा भी व्यर्थ होता रहेगा। तो इसलिए पहले अच्छे से उसका एक बार जांच करवा लीजिए किसी कुशल पशु चिकित्सा अधिकारी से, और उसके बाद कृत्रिम बीजदान करवाइए ठीक है ठाकुर साहब।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अप्रैल के समय में टीकाकरण करवा देना चाहिए, गला घोटू है, खुरपका है, मुंह पका है, यदि हमारे कोई किसान भाई अप्रैल के समय में टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं तो क्या वो मई में इस समय या जून में करवा सकते हैं?
0: जिन भी किसान भाइयों ने टीकाकरण नहीं करवाया उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और जो भी उपलब्ध होंगी और उसके हिसाब से वो उनको अपने एरिया के हिसाब से वो बता देंगे कि कौन सी वो टीकाकरण अभी लगा सकते हैं। और इस बार यदि छूट भी गया आपका तो अगले साल उसको लगाना ना भूलें, कोशिश करें कि मार्च या अप्रैल के मंथ में ही आप टीकाकरण अपने पशु को करवा लें, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो भी बीमारियों का प्रकोप होता है उससे अपने पशु को बचाया जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, होता क्या है गाँव में जब हमारी गाय या भैंस ब्याती हैं तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, जो महिलाएं होती हैं गाँव में वो ये कहती हैं कि जो खीस वाला दूध है ये लवारे को मत देना, जिससे उसके पेट में गांठे बन जाएंगी या पेट में कीड़े बन जाएंगे, जबकि डॉक्टर लोग बताते हैं, कहते हैं कि माँ का दूध अमृत के समान होता है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए सही राय क्या है?
0: माँ का दूध अमृत के समान होता ही है, और ये ऐसे हमारे सभी किसान

0: भाइयों को चाहिए कि जो भी माँ का पहला जो गाढ़ा दूध होता है, आधे घंटे के अंदर ही अपने जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उनको वो पिलाएं। इससे क्या है कि जो आगे आने वाले समय 2 से 3 महीने में जो भी बीमारियां आने वाली हैं उससे आपका जो बच्चा है वो बची रहेगी, उसको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। क्योंकि ये यदि शुरू के 1-2 घंटे के अंदर नहीं पिलाएंगे तो उसके बाद क्या है, आंतों की जो क्षमता होती है उस दूध के जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने की, वो खत्म हो जाती है, तो इम्यूनिटी वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है।
1: जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, और गर्मी के समय में कुछ खास बातें छूट रही हों जिन्हें हमारे किसान भाई ध्यान रखें, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
0: चलते चलते मैं हमारे किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि पशु उनके लिए एक जीवन यापन का जरिया है, तो हमारे किसान भाई थोड़ी सी देखभाल इस गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं की करेंगे, ठीक से प्रबंधन करेंगे तो उनसे वो साल भर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने महत्वपूर्ण विषय गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन, इस विषय पे बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के पास तक पहुंचाई। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।
1: भैया लोगों, अब आपने महत्वपूर्ण जानकारी सुनी और हमें उम्मीद है कि हमारे भैया लोग अगर जे बताई भी बातों पर ध्यान रखेंगे तो उनके जो दुधारू पशु हैं वे सुरक्षित बने रहे हैं और दूध की मात्रा भी ठीक ठाक बनी रही है।
2: भैया बहनों और हेलो किसानवाड़ी को आज को विषय हो गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन, और आज के विशेषज्ञ थे शार्दुल विक्रम लाल। तो भैया बहनों अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी कार्यक्रम में फोन करके अपनी वह समस्या को समाधान पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सबके बीच में एक जरूरी सूचना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरीफ अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 और 29 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होगा, जिसमें देश भर में कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक अधिकारी एवं किसान हित से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में खरीफ फसलों की तैयारी, आधुनिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण, उर्वरक प्रबंधन, प्राकृतिक खेती तथा किसानों के हित में नई नीतियों एवं योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी एवं किसानवाणी के माध्यम से इस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की विशेष कवरेज एवं महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्रसारित की जाएगी। सभी किसान भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे आकाशवाणी के कार्यक्रमों एवं किसान बाड़ी प्रसारण से जुड़े रहें और कृषि संबंधी नवीन जानकारियों का लाभ उठाएं। और भैया बहनों कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो गए हो आप सबसे एक सवाल, तो राकेश भैया वह सवाल को जवाब का है।
1: बहन जी देखो, सवाल पूछो हो कि गर्मी में गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। बाको जवाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों को सेवन करें, हरी सब्जी है, फल है, इनको सेवन करें, धूप से बचे रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजो भोजन इस्तेमाल करें। ये बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे भैया लोग गर्मी के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और पूनम बहन जी अगर बात करें नसीहत की, तो नसीहत के रूप में हम यह कहना चाहेंगे कि जहाँ तक संभव होए धूप में हमारे किसान भैया बाहर निकलने से बचें, और अगर कोई ज़रूरी काम से जाने ही है तो अपने सिर को ढक कर पानी अपने संग में लेकर तब जाएं। बात करें मौसम की कि कल मौसम कैसे रहेगा, तो कल 27 मई 2026 के लिए उच्चतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बारिश की संभावना कल नाय है। बात करें हवा की, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलन को अनुमान है और वायुमंडल में आर्द्रता 39% रहने की संभावना है।
2: तो भैया बहनों आप सब ने कितनी अच्छी तरीका से हमारे जो कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियां ही वो सब सुनी होंगी, और हमें उम्मीद है कि आपको इनसे लाभ भी मिलेगा और आप कार्यक्रम में मंगलवार को फोन भी जरूर करेंगे। तो हम सब आपसे बातें तो करते रहेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम में बिल्कुल

0: है कि आपसे कुछ और बात होए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन पूनम।
1: और आपके भैया राकेश शर्मा को दियो अनुमति। भैया बहनों, राम
0: राम राम।
1: राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 100.4 एफएम पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, अब हमारे ग्रामीण साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। और भैया बहनों, कैसे हालचाल हैं आपके? हमें उम्मीद है कि हमारे राकेश भैया सोच रहे हैं कि भैया बहनों से तो पूछ ली, लेकिन हमसे ना पूछ रही हैं कि राकेश भैया आपके हालचाल कैसे हैं। तो
1: पूनम जी, बात बिल्कुल आपने सही कही। देखो, है का हमारे भैया बहन से आपने हालचाल ले ले तो हमारे हालचाल आपने पहले ले ले, क्योंकि है का हमारे कार्यक्रम में हम जय कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारी लेके आए जो कि हमारे भैया लोग सुने, तो उनको जो खेती बाड़ी के काम धंधा हैं या पशुपालन संबंधी काम धंधा हैं, जो ग्रामीण जीवन में काम धंधा उनके सामने आते रहते हैं, उनमें उनके लिए सहायता मिले।
0: हाँ भैया, बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन उन सब के संग संग आपने जो बात कही ना कि भैया बहनन के हाल चाल पूछ ले आपके पहले पूछ ले, तो जय तो हो तो है घर के सब भैया बहनन को आप उसमें मेल और प्रेम।
1: बिल्कुल बात सही कही। अगर बात आपने प्रेम की करी है तो देखो पूनम बहन जी, आज हमारी चर्चा को विषय भी प्रेम से संबंधित है। आज को विषय का है कि प्रेम से रहें। आपने देखो ये कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो पहले के समय में जिस प्रकार से हमारे भैया लोग प्रेम से रहते, आपने देखो ये जगह बेजगह लोग चाचे भैया बैठ जाते, खेलते रहते, बतलात रहते, ठंडने के दिन में अघियानों लगाए लोग बैठे पड़े हैं, 10-10 बजे तक कहानी किस्सा चल रहे हैं।
0: हाँ, और भैया गर्मियों में अपने अपने हाथों में बिजनेस ले लो और एक चौपार बैठ कर हवा कर रहे हैं और बातें करे पड़े हैं और अपने कुछ ना कुछ जरूरी काम उनमें निपट जाते।
1: बिल्कुल सही कही पूनम बहन जी। तो कहने को मतलब है कि जिस प्रकार को ग्रामीण क्षेत्र में प्रेम देखने के लिए हमारे पहले मिलते, उसी प्रकार को प्रेम आज भी है।
0: हाँ,
1: लेकिन कहीं कहीं प्रेम में कुछ कमी देखने को मिलती है।
0: तो भैया एक बात जो तो है कि पहले के समय में तो लोग खेतन पर काम करके अपनो गुजारो कर लेते, लेकिन आज के समय में आप देख रहे हो कि कितनी महंगाई है, तो हमारे भैया बहन जो हैं वे काम करने बाहर जा रहे हैं, तो बेचारे हारे थके जो आते हैं तो जय सोचते हैं कि अरे अब तो आराम मिल जाए, यानी कि खाए पी कर बिस्तर में लेट जा।
1: बिल्कुल बात हमने सही कही कि देखो आराम की आवश्यकता तो खैर पड़ती है, क्योंकि अगर व्यक्ति हर समय काम करते रहे और आराम ना करेगा तो वाको शरीर जो है वो प्रभावित हो जाए और बीमार पड़ जाए वो। लेकिन इसके संग संग हम क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रेम में कमी को एक कारण और है कि परिवार के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे के लिए समय अब ना देते हैं। वाको कारण का है? वाको कारण है सोशल मीडिया। जहाँ देखने को मिलती है कि चार जने हैं, चारों के पास में अपना अपना मोबाइल है, अम्मा अपना मोबाइल लेटी हैं, पापा अपना मोबाइल ले पकड़े लेटे पड़े हैं और बालक अपने अपने मोबाइल से चिपके पड़े हैं। ना तो अम्मा के लिए चिंता है कि लला हमारे पास आके लेट जाओ, ना पापा को चिंता है कि लला हमारे पास आके बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। जब इस प्रकार से हमारे परिवार के लोग बच्चन को संस्कारें ना देंगे, शिक्षाएं ना देंगे, बालक आखिर देखत कहा है? बालक ज्यादा देखता है हमारे अम्मा पापा का काम कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: जब अम्मा पापा मोबाइल को पकड़े हैं तो बालक भैया मोबाइल को पकड़े।
0: हाँ भैया, बिल्कुल सही कही आपने। इसलिए आपके कहने को मतलब हम समझ रहे हैं कि जय है कि भैया बहनों मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाओ, जिससे आपके बच्चा मोबाइल ना देखेंगे और

0: आप अगर उनसे प्यार से बोलोगे, प्रेम से रहोगे उनके संग में, तो बेऊ वैसे ही रहेंगे अपने सबके संग में, घर परिवार में जो सदस्य हैं उनके संग, और सब बहन भैया मीठी मीठी बात है अपने आपस में करते ही रहेंगे।
1: बिल्कुल पूनम बहन जी, आपने हमारी बात को समझो। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल अगर देख रहे हो जो जरूरी चीजें वह देखो, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए समय दो। आप बाहर से आए रहे हो, अगर आपके परिवार में आपके पापा मम्मी हैं, तो पापा मम्मी से जा हालचाल तो लइए सकता हो कि पापा आपने भोजन करो है कि ना करो है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो ना है। जब इतनी अगर हालचाल ले लोगे तो उनके लिए एहसास हुए कि हमारे बालकन ने हमारे बारे में पूछी।
0: हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कही, तो आपकी बातन को मतलब जय है कि हमारे सब भैया बहन प्रेम से रहाएं, प्रेम से अपने घर परिवार में सबको रखें। तो ये बातें तो और भी करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता है, काव तो अपने भैया बहन को सुनवा दें कि हमारी किरण देवी जी ने क्या बात करी है।
1: बिल्कुल पूनम बहन जी, क्या बात करके आप लेके आई हो, सुनवा वो हमारे भैया के लिए।
0: क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता के अंतर्गत आज हमारी बात हो रही है बैंक सखी से, तो जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम?
2: मेरा नाम किरण देवी है, मैं फरीदपुर तहसील है और जिला बरेली है, ग्राम सरकड़ा है।
0: तो आप क्या क्या काम करती हैं?
2: मैं बैंक में जा बैठती हूँ, बैंक में ब्लाक से संबंधित जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। महिलाओं को सरकारी समूह होते हैं सर जी, उसके बारे में बचत जमा करवाती हूँ 100 रुपए महीने।
0: कि भी किस प्रकार से अपनो जो समूह है वाको चलावें, कैसे करके जो समूह बनाए जाते हैं?
2: सीआरपी की टीम होती है एक ब्लाक में, तो हम फील्ड में भी जाते हैं, महिलाएं हमसे कहती है हमें भी समूह में जुड़ना है, क्या क्या करना होगा। तो हम उनसे कहते हैं सभी के आधार कार्ड होना चाहिए, जो 3 पदाधिकारी हम बनाते हैं उनका पैन कार्ड होना चाहिए, मतलब डबल आईडी होनी चाहिए। अच्छा। तो वो 10 ग्रुप बना देते हैं 10 महिलाओं को जोड़ के, तो उसको बैंक में बुलाते हैं, बैंक में बुला के उनका खाता खुलवा देते हैं। खाता खुलवाने के बाद वो हमसे पूछती हैं अब क्या करना होगा, तो हम उनसे कहते हैं 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं से 100-100 रुपए जमा करो और बैंक में आके जमा करो, हर महीना बचत जमा होती है।
0: अच्छा, तो उनको खाता किस प्रकार से खुलता है?
2: खाता बैंक में 3 पदाधिकारी आती है और आईडी 10 लोगों की लाती
0: है। तो वे 3 जनी आती है, वे का पद पर होती है? आप
2: एक अध्यक्ष के पद पर होती है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सचिव होती हैं, तीसरे नंबर पे कोषाध्यक्ष होती
0: हैं। इनको काम का होता है?
2: इनका काम ये है समूह की देखभाल कर, लेखा जोखा जो भी करना होता है ये 3 पदाधिकारियों का होता है।
0: अच्छा, समूह में वैसे लेखा जोखा होता कहाँ है?
2: बचत समय से जमा करें, लेन देन सही से करें और महीने में 4 बैठकें करें।
0: अच्छा,
2: और मतलब रजिस्टर पे प्रस्ताव लिखें।
0: प्रस्ताव कब कब लिखे जाता है?
2: महीने में 4 बार।
0: अच्छा, यानी कि हर सप्ताह में मीटिंग होना जरूरी है?
2: मीटिंग होना जरूरी है।
0: तो कितने कितने रुपए जमा होते हैं जो आपने बताई कि महीना पर करते हैं?
2: अगर सप्ताह में करेंगी तो 25 रुपए होंगे और महीने में करेंगी तो 100 रुपए होंगे।
0: अच्छा।
2: फिर उसका CCL करवाती हूँ। अच्छा। फिर देखो CIF का पैसा जो 1.5 लाख आता है वो करवाते हैं।
0: अच्छा,
2: 1.5 लाख रुपए आने के बाद तो वो महिलाओं को हम निकलवाते हैं पैसा, उससे रोजगार करने के लिए होता है, या मुर्गी फार्म या भैंस कोई भी काम कर सकती है, लेकिन अपना रोजगार करें। कुछ महिलाओं ने कांटीन फरीदपुर में भी खोल रखी है, सरकारी अस्पताल है, उसमें एक कांटीन खुली हुई है, वो हमारे समूह से ही है।
0: अच्छा, समूह से ही है?
2: हाँ, समूह से ही है।
0: तो जाको मतलब बहुत रुपए मिल जाता होना।
2: हाँ।
0: फिर कैसे जमा करने होता
2: होना? वो ऐसे जमा करने होते हैं जैसे आपके पास है तो किस्तों में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन 12 महीना में अदा करना है, चाहे इकट्ठे कर दो चाहे किस्तों में जमा कर दो।
0: हमारी जो बहनें हैं उनको आपने बताई कि वो बहुत से ऐसे काम कर लेती हैं अपने जो रुपए लेकर के, फिर उन्हें जमा कैसे करने होते हैं?
2: वो 12 महीने में जमा करने होते हैं।
0: अच्छा,
2: चाहे किस्तों में कर सकती हैं चाहे इकट्ठे कर सकती हैं।
0: सूद कितना जाता है?
2: ब्याज 1% जाता है उसमें।
0: जो समूह की बहनें हैं जो कि बैंक में खाता खुलाने जाती हैं, तो उन्हें क्या क्या करना होता है?
2: 2 आईडी ले जानी पड़ती है, 1 आधार कार्ड पैन कार्ड, और एक ग्रुप होता है 10 लोगों का, 10 लोगों में वो खाता खुलता है। खाता खुलने के बाद जब खाता खुल जाता है पासबुक मिल जाती है, तो हर महीने 100-100 रुपए प्रत्येक महिलाओं से जमा होता है।
0: अच्छा।
2: से बचत बोलते हैं।
0: अच्छा,
2: 6 महीने जमा करनी पड़ती है, उसके बाद में पैसा सरकार देने लगती है,
0: फिर मिल जाता है 6 महीने बाद।
2: हाँ, जो आप बचत के रूप में जमा करती है 100 रुपए, वो तो आपके जैसे पर्सनल अकाउंट में करती है वैसे ही जमा रहता है, वो आपका पैसा कभी भी निकाल सकती है, लेकिन सरकार पैसा आपको देगी रोजगार करने के लिए।
0: अच्छा,
2: हाँ, तो उससे रोजगार कर सकते हैं।
0: और जो उनको खुद को पड़ो होता है वो कब मिलता है?
2: वो जब भी इच्छा हो निकाल सकती हैं।
0: हाँ, फिर जाए उनको खाता बंद ही जाए?
2: नहीं, 1000 रुपए रहने दो उसमें।
0: अच्छा, तो चलता रहा है?
2: चलता रहेगा।
0: तब तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो बहनें हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं उन्हें बहुत फायदा होता है, और आप भी बैंक में काम करती हैं, बैंक सखी हैं, आपको और क्या क्या काम इससे अलग देखने पड़ते हैं? जो बहनें बैंक में आती होंगी उनकी क्या सहायता करनी पड़ती है?
2: उनकी सहायता ये करनी पड़ती है, जो गरीब महिलाएं हैं या कोई भी अदर वाला भी हम काम कर देते हैं, जैसे अदर किसी को लोन चाहिए होता है तो वो हमसे संपर्क करते हैं कि बहन जी आपको अगर कोई लोन के बारे में मालूम हो तो हमें बताओ।
0: अच्छा।
2: तो जैसे युवा उद्यमी है

0: युवा उद्यमी लोन आता है 5 लाख का,
1: अच्छा
0: उसमें 50,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। वो रोजगार के लिए आता है, कई एक फार्म हमने ऑनलाइन करवाए थे, मिल भी गया था, तो उससे रोजगार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी लोन लिया था जे युवा उद्यमी वाला, तो मैंने ट्रैक्टर और ट्रैक्टर वाला राइस मिल लगा लिया था। तो
1: अच्छा
0: मेरे हस्बैंड गाँव गाँव जाके धान कूटते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं।
1: उसमें फिर कितना देने पड़ता है आपको, वैसे ही देने
0: दस
1: पड़ते हैं?
0: हजार रुपये महीने में किस्त में बांध ली है मैंने, 20 तारीख को 10,000 रुपये महीने निपटा रही हूँ।
1: अच्छा, एक महीना में 10,000 देती हैं,
0: 10,000 देते
1: तो
0: हैं,
1: जहाँ ब्याज ना जाता है?
0: नहीं जाता है ब्याज,
1: अच्छा
0: और हमें मिलता है सरकार की तरफ
1: ब्याज,
0: से।
1: अच्छा ब्याज जातना है
0: ना ना,
1: एक
0: जो
1: रुपया
0: हमने
1: को?
0: 5 लाख अगर लेंगे तो 4.5 लाख हमें जमा करना पड़ता है, 50,000 हमें छूट देती है सरकार।
1: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी जो भैया बहन हैं अगर जा योजना को लाभ लेना चाहेंगे तो बात तो अच्छी है, लेकिन जाके लिए करने का होता है?
0: ऑनलाइन करने पड़ती है, जनसेवा केंद्र पे जाते हैं तो युवा उद्यमी नाम से लोन ऑनलाइन करवाना पड़ता है। मैनेजर साहब के पोर्टल पे आता है, मैनेजर साहब वहाँ से वेरीफाई करते हैं।
1: अच्छा, फिर हुई जाता है
0: जी,
1: कि CSC केंद्र पे जाने पड़ता है, क्या क्या कागज ले जाने पड़ता है?
0: उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक, पढ़ाई के कागज
1: अच्छा,
0: और मूल निवास,
1: पढ़ाई के कागज कितने तक के होने चाहिए उनके?
0: 8 से लेके कितने हो।
1: अच्छा, 8 से बाद वन को मिल जाए,
0: जी,
1: तब तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे छोटे से छोटे भैया बहन जैसे उनके पास पैसा ना है तो वे अपनों आराम से जो लोन लेके अपनों काम शुरू कर सकते हैं ना।
0: लेकिन 18 से 40 साल एज होनी चाहिए।
1: अच्छा, जो समूह से जुड़ी हुई आपने बताई उनको और का का फायदा मिल जाता है?
0: और फायदा यही है, जो है सुकन्या वाला फार्म ऑनलाइन होता है, LIC बीमा भी कर सकती हैं, कई एक रोजगार महिलाओं से, जो भी ब्लॉक में सुविधा आती है तो महिलाओं को पता चलती है, महिलाएं उसका लाभ उठाती हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे हमारे यहाँ समूह सखी, CRP और पोषण सखी, ये नौकरी भी आती है तो समूह वाले औरतों को ही मिलती है।
1: जो बता रही हमें बैंक सखी वाले काम में लगी ही, कब लगी ही?
0: जी, हम 2023 में लगे थे।
1: इतने दिन से जो काम कर रही तो आपको खूब अनुभव भी हुआ है, तीन
0: जी
1: चार साल
0: जी
1: ही चुके
0: जी
1: हैं।
0: हम सबका लोन भी करवा देते हैं, मतलब जो लिखा पढ़ी बैंक की होती है वो हम खुद से करते हैं,
1: अच्छा
0: ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं।
1: अच्छा बैंक में ही हो जाती है?
0: जी
1: समूह से जुड़ी हुई जो बहनें होती हैं उनको बहुत से ऐसे लाभ मिलते हैं जो आपने बताए, लेकिन वो जो रुपए इकट्ठा करती हैं उसके बाद वे अपने काम शुरू करती हैं, तो
0: जी
1: आपने तो अपना काम शुरू करो ही है, लेकिन और कोई बहन ऐसी है जिसने और कोई काम शुरू करो हो आपके यहाँ?
0: जी हमारे यहाँ नहीं, जैसे जो नवादा हमारा क्षेत्र पड़ता है, नवादा खलपुर, उसमें गांव में मतलब 40 समूह हैं, 400 औरतें जुड़ी हुई हैं, प्रत्येक घर में अचार का काम और जे आलू वाली चिप्स वाली मशीन ले रखी है औरतों ने, और जे चप्पल वाली मशीन ले रखी है, लेकिन
1: अच्छा,
0: रोजगार स्वयं कर रही हैं।
1: खुद कर रही हैं,
0: जी
1: तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बैंक सखी की ही अगर हम बात
0: जी
1: करें तो आप जब लगी थी तब आपको कितना अनुभव हो जाको?
0: हमें अनुभव था लेकिन इतना नॉलेज नहीं थी, अब हमारे लिए जो भी योजना आती है उसके बारे में हमें पता चलती है तुरंत।
1: अच्छा, हमारी बहनों को कोई और भी ऐसी योजना मिल सके जो आपने बताई इनके अलावा?
0: से जो सरकारी योजना आती है उससे लाभ उठा सकती है, बकाया जैसे जो प्राइवेट है उसको पता नहीं चलता है।
1: अच्छा, सरकारी योजनाएं जो जो होती हैं जो आपने बताई कि इतनी सारी योजनाएं हमारी बहनों को मिलती हैं और हमारे भैया भी फायदा उठा सकते हैं, इसके अलावा और क्या करती हैं? अपने घर पे जानवर पालती हैं?
0: हम अपने घर पे जानवर पालते हैं और बच्चों की भी देखभाल करते हैं।
1: अच्छा, तो कितने जानवर हैं आपके घर में?
0: एक भैंस है केवल,
1: तो वो दूध दे रही है?
0: नहीं अभी नहीं,
1: कैसे ध्यान रख रही हैं जो गर्मी के मौसम में फिर अपनी
0: जैसे
1: भैंसिया को?
0: सुबह को नहलवाते हैं और दोपहर को भी नहलवाते हैं, पानी ठंडा पिलाते हैं, जैसे नॉर्मल पानी रखा हुआ पानी नहीं पिलाते हैं उसको,
1: अच्छा,
0: और चारा भी सही से देते हैं, जैसे पालिस है, चोकर है, उसकी सानी भी करते हैं।
1: चोकर आपने बताई, वे तो ज्यादातर लोग अपनी दूध वाली भैंसिया को देता है, आप बाई को खिलाती हैं
0: नहीं,
1: होगा?
0: हमारे घर बच्चे की भी धुलवाएं साबुन से,
1: अच्छा, और खान पान को कैसे ध्यान रख रही हैं ऐसे
0: खान
1: गर्मी के मौसम में?
0: हरी सब्जी देते हैं उसे, और पानी ज्यादा से ज्यादा देते हैं, नॉर्मल पानी देते, दूध दही और जो जूस है मौसमी का जूस पिलाते हैं।
1: ये सब चीजें तो आप खिलाती हैं, लेकिन इनके संग संग अपने बच्चन की साफ सफाई को भी ध्यान रखते हो, किस प्रकार से उनकी साफ सफाई करते?
0: कपड़े भी धोते हैं, मतलब सुबह को नहलवा देते हैं बच्चों को, और गर्मी लगती है तो शाम को भी धुलवाते हैं,
1: अच्छा,
0: हाथ पैर धुलवा के ही खाना देते हैं, और खुले में शौच नहीं करने देते हैं, शौच करते हैं बच्चे तो साबुन से हाथ धोते हैं।
1: किरण जी, हमारे बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रही हैं, आप उन सबसे सलाह के रूप में क्या कहना चाहोगी?
0: बहनों से यही कहना चाहते हैं कि गरीब परिवार हो या कैसा भी परिवार हो, समूह में जुड़े और उसका लाभ उठाएं, अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हों, मतलब अपना रोजगार स्वयं करें, नौकरी लेने वाली नहीं नौकरी देने वाली बने। जैसे महिलाएं हैं बेचारी दुकान चलाने की सोच रहा है, उस पे पैसे नहीं है, तो समूह में जुड़े, लोन लें समूह से और अपनी दुकान लगा लें, मतलब घर में भी बहुत काम है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना रोजगार अपने घर में ही कर सकते। चप्पल वाली वो मशीन होती है, वो आती है 60-65 हजार की, तो महिलाएं ले लेती है, घर में मंगा लेती है, एक ग्रुप 10 लोगों का होता है तो 10ों का पैसा कट के, और वो मशीन आती है, मशीन आके तो सभी महिलाएं वो बना गाँव में
1: ये
0: चप्पल बेचती है।
1: जो मशीन की आप बात कर रही हैं, तो जहाँ कोई सब्सिडी मिलती सब्सिडी अगर हमारी बहनों
0: हाँ
1: का।
0: सब्सिडी मिल जाती है, मतलब 65।

0: हजार की ली अगर सही से चलो तो वो ब्याज मतलब वापस हो जाता है।
1: अच्छा, बहुत से ऐसे काम हैं आप जो बता ही रही हो, इनके अलावा
0: कचड़ी बनाती हैं महिलाएं, जैसे होली आती है तो होली पे पापड़ भी बनाती हैं महिला,
1: हाँ
0: अचार जैसे वहां से मंगाती हैं ग्वालियर से,
1: अच्छा
0: ग्वालियर से अचार आता है 30 रुपए किलो, और हमारे गांव में आके 200 रुपए किलो लहसुन का अचार बेचती हैं।
1: अच्छा
0: बांस का अचार आता है 35 रुपए किलो ग्वालियर से, वो बेचती हैं 300 रुपए किलो।
1: अच्छा
0: मतलब छिरका की भी स्वयं सहायता समूह की ओर से प्रचार लगाती हैं छिरका वाला। हमारे ब्लॉक में महिलाएं आती हैं, जब कैंप लगता है तो अपने अपने कैंप लगा लेती हैं। हमारी बहनें बहुत अच्छे से पैसे कमा रही हैं, बहुत अच्छे से अपना बच्चों का ख्याल रख।
1: आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमारी बहनों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, वो सुनकर लाभान्वित होंगी। किरण जी, आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहनों, अब कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना है कि आपसे कुछ और बात करी जाए। अब कार्यक्रम से अपनी बहन पूनम,
2: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों,
1: राम
2: राम राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। रामवीर सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह ग्राम बजरिया थाना शीशगढ़ बरेली से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी चंद्रा मंडल 22 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फीट, इखरा जिस्म, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंख और बाल काले, ये गुलाबी सूट और नारंगी चुनरी पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना। ग्राम जुवा जवाहरपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली से धर्मवीर सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी सीमा 1 मई 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 28 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फीट, इखरा बदन, रंग गोरा, आंख और बाल सामान्य। यदि इनके बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने

0: 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
3: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरोध विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4

4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
4: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
4: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
4: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
4: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
4: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल,
4: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: सभी श्रोताओं को और पांडे जी, आपको मेरा नमस्कार।
6: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। चूंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
7: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भ पीरियड है,
6: जी गर्भकाल,
7: गर्भकाल है 37 वीक से,
6: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का जो समय है,
7: जी वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
6: जी।
7: तो लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
6: अच्छा,
7: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
6: जी। जी
7: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
6: जी,
7: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में,
6: अच्छा,
7: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
6: अच्छा,
7: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
6: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
7: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
6: जी।
7: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
6: जी
7: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
6: अच्छा अच्छा।
7: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
6: जी। जी
7: जब बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
6: जी, जी, अच्छा।
7: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
6: जी, जी।
7: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते
6: हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने, 9 दिन, 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने, यानी जो 26, 24,
7: 9 महीने।

0: सात दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाता है।
1: नॉर्मल माना जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं ये तो छह महीने साढ़े छह महीने का
0: जी जी जी जी साढ़े छह महीने के जो बच्चे, छह महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
1: जी,
0: तो उनमें एक तो सबसे ज्यादा जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते।
1: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत
0: नहीं, हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर। जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके।
1: जी जी।
0: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
1: अच्छा,
0: तो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
1: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली कम,
0: क्षमता तो कम है ही
1: जी,
0: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उससे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके, मतलब सांस की गति बढ़ा के
1: ऑक्सीजन की जो जरूरत
0: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सर्फेक्टेंट?
0: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है। अच्छा। लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो उनमें कम होता है।
1: अच्छा।
0: ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से।
1: अच्छा।
0: और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती
1: जी जी।
0: लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे
1: जी,
0: उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर।
1: अच्छा।
0: डोजेज में
1: जी,
0: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
1: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
0: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो डेक्सामेथासोन या बिटामेथासोन इंजेक्शन दो दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े।
1: यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती हैं?
0: वो फैसला लेती है।
1: अच्छा।
0: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ये लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं आईवीएच इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी, जी। डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं स्टेरॉइड कहा जाता है और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता
0: नहीं,
1: है?
0: नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती। अच्छा। है वो भी सिर्फ दो दिन के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं। और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है
0: जी,
1: ये बच्चे के हित में है।
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट
1: जी जी,
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे। अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट, अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा, ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना।
1: अच्छा,
0: है ना। तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया।

0: जी
1: या घर में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया,
0: जी
1: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली,
0: जी
1: लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा।
0: जी डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
1: जी अब पंडित जी, आपको ये बहुत अच्छा सवाल है।
0: जी
1: देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते।
0: जी
1: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें,
0: जी
1: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आर्द्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और
0: जी,
1: टेम्परेचर कंट्रोल करते
0: यानी
1: हैं,
0: जो नमी होती है
1: ह्यूमिडिटी, हाँ नमी को
0: और
1: और टेम्परेचर तापमान
0: तापमान
1: को,
0: को।
1: दोनों को कंट्रोल करते हैं।
0: जी
1: और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है,
0: जी
1: जो एक पर्टिकुलर कंपनी की, जिसको ओमनीवेड बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं,
0: जी
1: उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
0: जी आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनी बेड, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
1: जी जी बिल्कुल ठीक कहा है। और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है और उसमें बच्चे को, वो अपने उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत
0: जी
1: प्रीमेच्योर बच्चा होता है,
0: जी
1: और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, वहां उसको दूध पीता रहता है, उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
0: जी जी
1: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया है।
0: जी डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और
1: जी
0: प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
1: हेलो
2: हेलो,
0: जी रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
0: जी
1: नियमित श्रोता।
0: जी जी आज क्या प्रश्न है आपका?
2: सर हमारा सवाल ये सर, जो प्रीमेच्योर जो बच्चा है वो किसे कहेंगे जी, प्रीमेच्योर बच्चा है पहली बात तो।
0: जी जी
1: जी चलिए एक सवाल, दूसरा
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रीमेच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
1: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
1: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे हैं। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पंडित जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
0: मशीन कौन
1: जो, हाँ मशीनें कौन सी आती हैं, वो तो है ही। समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं, ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है, ऐसी आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो एनईसी यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। ऐसे इन बच्चों का तापमान नियंत्रण करने में दिक्कत आती है, तापमान नियंत्रण करने में इसलिए उन मशीनों में रखा जाता है जिसमें कि बंद जो मशीन होती है जैसे इंक्यूबेटर्स, तो जिनमें कि आप तापमान और नम जो ह्यूमिडिटी है दोनों को, नमी को कंट्रोल कर सके।

0: इनको आपको जो दवाइयां हैं बड़े लिमिटेड दवाइयां लगानी पड़ती हैं और दूसरा बहुत स्लोली लगानी पड़ती हैं, तो आपको और इन्फ्यूजन पंप्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक पंप्स हैं सिरिंज में। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत। अब वेंटिलेटर्स भी नियोनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए। जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि एक एक ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर kg के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इको कार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की, यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ। फिर बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए, या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आरओपी होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो ये इस तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें, जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसके ऑक्सीजन गिरने लगती है, और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स को जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को और नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है, या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए फ्लोरबेन का, वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए ही सीरम फ्लोरबेन हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं ये होती हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी आने के लिए डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: हम राजपुर कला से बोल रहे हैं,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी,
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को

0: जन्म हो जाए
1: जी
0: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पे ही जन्म हो और वो मतलब वो सही सांस वास सही ले रहे हो लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पे सही होता है बना है खा रही है तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब लाइन पर है अगली आवाज डॉक्टर साहब की
3: जी। ऐसे जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
0: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
3: और वजन कितना है इसका?
0: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना चाहे 120 के करीब।
3: देखो जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए। अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
0: लगभग हो चुका है 22 दिन को।
3: 22 दिन का हो गया तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में। तो आपको करीब 20-22 ml 23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़वा लीजिए और घर पे फीड करिए। बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए। और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए
0: जी। भले डॉक्टर साहब अब तक तो ठीक है लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
3: ना उससे दूध नहीं पिलाएंगे। निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
0: शुरू शुरू में साल रुई से मतलब जो है घर में गांव में पिया दो अब वो निप्पल से देना शुरू कर दो है तो अब पी तो निकलो है लेकिन समस्या जो है कि वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिच को सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
3: देखिए निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच कटोरी से दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं। एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
0: अच्छा तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी लेकिन बाको सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जाके लिए हमने कहा करने पड़ेगा।
3: देखिए दो तीन चीजें हैं अगर बच्चे का वजन 1 किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी कैल्शियम फॉलिक एसिड और आयरन ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए। अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पे ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं KMC केयर। तो माँ या घर में कोई और है सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
0: अरे आप जानना चाह रहे जैसे अभी तो माँ के दूध के लिए और बाकी जो हलवा वगैरह आते हैं और जे मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम बात पिलाना शुरू करें?
3: 6-7 महीने तक 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे सिर्फ माँ का दूध शहद गुट्टी पानी ऊपर का दूध बकरी का दूध शहद या गाय भैंस का दूध ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
0: अच्छा हाँ हाँ जब पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी का दूध दे कोई बात ना है तो आप देंगे तो अच्छा ले तो
3: नहीं बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए आपके बच्चे के लिए नहीं है
2: जी।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब जब

0: अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
1: अमृत तुल्य है, अमृत है
0: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए।
1: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
0: अच्छा, ये बात।
1: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है।
0: अच्छा।
1: तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है, एक चीज। और इसलिए एक माँ दूसरे माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
0: अच्छा,
1: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
0: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
1: हाँ, वो टेलर मेड है। जैसे आप दर्जी के पास जाते तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना।
0: डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती है जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
1: देखिए, ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि, और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है कि दूध कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के दो बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को दो बच्चे के हिसाब से दूध होता है
0: जी।
1: और जब बच्चे का, जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
0: जी।
1: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
0: जी।
1: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
0: बच्चे की आवश्यकता के अनुसार।
1: जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
0: जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे?
1: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भधारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
0: अच्छा।
1: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर, वो जब जब आपको बुलाए, माँ को समय से टीके लगवाएं, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराएं, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टेरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसके बाद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा, अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे,
0: बना के रखे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए
1: जी।
0: जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
1: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
0: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे
1: और माँ का दूध पिलाएं तो दो चार आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार पांडे जी और सभी श्रोताओं।

0: मेरा नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
1: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच।
2: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
1: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD।
2: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल,
2: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
1: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।
5: चंद्रशेखर वर्मा।
6: डॉक्टर समीउल्लाह पर्यावरण प्रेमी पहले थे और प्रोफेसर बाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बॉटनी में MSc करने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलोशिप मिल गई थी। डॉक्टरेट करने के बाद वो JNU में ही प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पर्यावरण पर डॉक्टर समीउल्लाह की पकड़ कमाल की थी। देश विदेश की संस्थाओं और सरकारों द्वारा उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता था। दुनिया भर में कम से कम 30 विश्वविद्यालयों में उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। एक दिन उनके केबिन में उन्हीं के विभाग के डॉक्टर देवव्रत मिश्रा आए। समीउल्लाह साहब, अपने घर में सत्य नारायण की कथा करवा रहा हूँ, हालांकि आप आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बुलाए लेता हूँ। देवव्रत मिश्रा ने ये बात डॉक्टर समीउल्लाह के धर्म को मद्देनजर रखते हुए कही थी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊंगा? काशी में बचपन गुजरा है साहब, जहां हर गली नुक्कड़ पर मंदिर देखे हैं। मेरी आस्था इस्लाम में है, लेकिन श्रद्धा मैं हर धर्म के प्रति रखता हूँ। डॉक्टर समीउल्लाह ने देवव्रत मिश्र को निशब्द कर दिया। अगले दिन नियत समय पर डॉक्टर समीउल्लाह नहा धोकर प्रोफेसर देवव्रत के घर पहुँच गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथावाचक एक नौजवान पंडित थे। कथा के बाद विधिवत रूप से हवन हुआ और उसके पश्चात पंडित जी ने सभी को फूल देकर शालिग्राम जी पर चढ़ाने को कहा। आमतौर पर ऐसे में लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही पूजा की चौकी की ओर फूल उछाल देते हैं और प्रोफेसर देवव्रत के यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जाहिर सी बात है, सभी फूल पूजा की चौकी तक नहीं पहुँचे और उनमें से कुछ इधर उधर गिर गए। इसी प्रक्रिया में 2-4 फूल हवन कुंड में भी गिर गए। ये देखकर डॉक्टर समीउल्लाह तुरंत उठे और उन्होंने अपने हाथों के जलने की परवाह न करते हुए फूलों को जलने से बचा लिया। डॉक्टर समीउल्लाह की इस हरकत से प्रोफेसर देवव्रत, कथा सुनने आए सभी लोग और तो और पंडित जी भी चौंक गए। फूल ईश्वर का उपहार है, इनको जलना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों की पूजा में कोई व्यवधान नहीं डाला होगा। आपने एकदम ठीक किया, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी जो आपने कह दी, पंडित जी झेपते हुए बोले। फूलों को कभी भी जलना नहीं चाहिए। डॉक्टर समीउल्लाह का फूलों से विशेष लगाव था और उनका मानना था कि जीवित इंसान को फूल माला पहनाना तो फूलों का अपमान है। डॉक्टर समीउल्लाह के केबिन में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा एक बड़े फ्रेम में जड़ित होकर टंगी हुई थी। कुल मिलाकर समीउल्लाह साहब जितने ज्ञानी थे उतने ही सनकी भी, लेकिन उनकी सनक में इंसानियत थी जो आज के जमाने में बिरले ही देखने को मिलती है। एक दिन डॉक्टर समीउल्लाह जब क्लास पढ़ाकर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कई सारी मिस्ड कॉल्स थीं। डॉक्टर समीउल्लाह अपने क्लास के दौरान आई प्रत्येक कॉल का जवाब अवश्य देते थे। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जिससे उन्हें कई सारी कॉल्स आई थीं। उधर से फोन उठते ही वो बोले, JNU से डॉक्टर समीउल्लाह बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, क्लास में व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल नहीं ले सका। कोई बात नहीं, उधर से आवाज आई, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। जी जरूर, डॉक्टर समीउल्लाह कौतूहल छुपाते हुए बोले। आखिर भारत का प्रधानमंत्री उनसे क्या बात करना चाहता है? जितनी देर में उनकी कॉल प्रधानमंत्री से कनेक्ट होती उतनी देर में डॉक्टर समीउल्लाह ने हर संभावना पर विचार किया। तभी लाइन पर प्रधानमंत्री आ गए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, पर्यावरण पर आपके चिंतन मनन से बहुत प्रभावित हूँ। आपका बड़प्पन है सर, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, मना मत करिएगा। प्रधानमंत्री प्रार्थना के स्वर में

0: बोले। डॉक्टर समीउल्लाह की वाणी की मिठास सामने वाले के स्वर में भी घुलने लगती थी। हुक्म करें सर, डॉक्टर समीउल्लाह बोले। दो दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहा हूँ और पर्यावरण मंत्रालय के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति मेरी नजर में नहीं है।
1: अरे नहीं सर, मैं तो एक अदना सा प्रोफेसर हूँ, इतने बड़े पद के लायक कहाँ हूँ।
0: डॉक्टर समीउल्लाह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री उन्हें इस आशय से फोन करेंगे। मैं आदमी को पहचानने में कभी गलती नहीं करता, आप मेरी इस काबिलियत पर शक मत करिए। डॉक्टर समीउल्लाह के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। दो दिन बाद डॉक्टर समीउल्लाह ने देश के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। आमतौर पर सरकार के हर कदम की आलोचना करने वाली मीडिया ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की। डॉक्टर समीउल्लाह ने वैज्ञानिक सोच के साथ पर्यावरण में सुधार लेने वाले निर्णय लेने शुरू किए। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों जैसे खनन, पशुपालन और स्वास्थ्य के साथ कई साझा कार्यक्रम बनाए और उनकी पहल का असर कुछ ही दिन में दिखने लगा। काशी डॉक्टर समीउल्लाह का जन्म स्थान था और जितना समीउल्लाह काशी को अपना मानते थे उससे अधिक काशी समीउल्लाह पर अपना हक समझता था। पर्यावरण मंत्री बनने के तुरंत बाद ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने डॉक्टर साहब को न्योता दे दिया। आप हमारे भी गौरव हैं डॉक्टर साहब, हमें आपको सम्मानित करने का मौका मिलना ही चाहिए। BHU के कुलपति के प्यार भरे इसरार को समीउल्लाह साहब टाल नहीं पाए। मैं सोमवार को पहुंचता हूं बनारस, डॉक्टर समीउल्लाह ने अपनी स्वीकृति दे दी। काशी के एयरपोर्ट पर डॉक्टर समीउल्लाह के भव्य स्वागत की तैयारी थी। बैंड बाजा और ढोल सुबह से ही पहुंच गए थे। उनके कटआउट और तस्वीर वाले बैनर पूरे हवाई अड्डे पर लगे हुए थे। सत्तारूढ़ पार्टी के लोकल कार्यकर्ता भी बहती गंगा में हाथ धोने चले आए थे। मीडिया कर्मियों की फौज भी अपने कैमरामैन के साथ जुटी हुई थी। डॉक्टर समीउल्लाह का प्रसिद्धि और ख्याति से ये पहला साक्षात्कार था। संकोची स्वभाव के डॉक्टर समीउल्लाह इतना सब देख के थोड़ा घबरा भी गए। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रेहाना जी ने अपने पति से शेर की मार्फत एक चुटकी ली। तभी समीउल्लाह साहब ने देखा कि एयरपोर्ट के आगमन गेट के बाहर कई सारे छोटे छोटे बच्चे उनका स्वागत करने को आतुर हैं। यूं तो बच्चे ये स्कूल यूनिफॉर्म में थे, लेकिन यूनिफॉर्म का साइज और बच्चों की असहजता को देखकर ये साफ लग रहा था यूनिफॉर्म उन्हें जबरदस्ती पहनाई गई है। डॉक्टर समीउल्लाह को देखते ही उन बच्चों के साथ आए सज्जन ने बच्चों को इशारा किया और बच्चे अपनी तोतली आवाज में जोर जोर से नारा लगाने लगे, काशी का सपूत है, पर्यावरण का दूत है। डॉक्टर समीउल्लाह को इस तरह के महिमा मंडन की न तो आदत थी और न ही ये सब उनके उसूलों पर खरा उतरता था, लेकिन उनके सब्र का बांध तब ढह गया जब स्कूली बच्चे उनकी तरफ माला लेकर आगे बढ़े। बच्चों के हाथ में फूल माला देखकर डॉक्टर समीउल्लाह की पत्नी रेहाना जी मुस्कुराई। उन्हें फूलों के प्रति डॉक्टर समीउल्लाह के भाव मालूम थे, लेकिन इस स्थिति में पति कैसे निपटेंगे ये वो देखना चाहती थी। मुझे माला मत पहनाओ, डॉक्टर समीउल्लाह बच्चों से बोले। बच्चों पर समीउल्लाह साहब की बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ते गए। अब डॉक्टर समीउल्लाह ने अपने हाथ जोड़ लिए, बच्चों मैं माला नहीं पहनता। इतनी देर में बच्चों ने उन्हें घेर लिया। समीउल्लाह साहब वहाँ से हटकर थोड़ा तेज चलने लगे, लेकिन ये बच्चे भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी तेजी में आ गए। काशी एयरपोर्ट पर उपस्थित लोगों को अजीब दृश्य देखने मिल रहा था। आगे आगे देश के कैबिनेट मिनिस्टर और उनके पीछे हाथ में फूल मालाएं लिए बहुत से बच्चे। भागते भागते डॉक्टर समीउल्लाह अपने सुरक्षा घेरे से बहुत दूर निकल आए थे। वो थोड़ा झिक कर बोले, अजीब मुसीबत है, कह दिया ना मैं माला वगैरह नहीं पहनता। बच्चे डांट खाकर थोड़ा सकते में आ गए। तभी एक बच्चे ने उनको झुकने का इशारा किया। डॉक्टर समीउल्लाह जैसे ही झुके उस बच्चे ने कान में कुछ फुसफुसाया और उसके बाद जो हुआ उसको देखकर रेहाना जी चौंक गई। समीउल्लाह साहब जमीन पर बैठ गए थे और सभी बच्चे बारी बारी से उन्हें माला पहना रहे थे। डॉक्टर समीउल्लाह की पत्नी आश्चर्यचकित थी। थोड़ी देर में ही डॉक्टर समीउल्लाह और रेहाना जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस पहुंच गए। सम्मान समारोह शुरू होने में अभी 1 घंटा है, आप लोग तब तक तैयार हो जाइए, मैं बाहर ही हूँ, कुलपति के ड्राइवर ने सामान रखते हुए कहा। आज आपने अपने असूल तोड़कर माला पहनी ही ली, ड्राइवर के जाते ही रेहाना जी बोली। वो कब से एकांत मिलने का इंतजार कर रही थी। राजनीति जो ना करवाए। हाँ, राजनीति जो ना करवाए, मैं कतई भी माला नहीं पहनता अगर उस लड़के ने मेरे कान में ये शब्द ना बोले होते। डॉक्टर समीउल्लाह की आंखें थोड़ा सा भर आई थीं। रेहाना जी अपने पति की आंखों में हुई हलचल से अनभिज्ञ थीं। उसने बोला, अंकल किसी को बोलिएगा मत, पर हमसे कहा गया है कि आपको माला पहनाने पर हमको 10 रुपया और साथ में केला और शरबत मिलेगा। आप अगर माला नहीं पहनेंगे तो हमें कुछ नहीं।

0: मिलेगा। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे इसी उम्मीद में खड़े हैं। अब तुम ही बताओ रेहाना, मैं क्या करता। रेहाना जी ने बरसों बाद अपने पति को गले लगा ली।
1: फूल तोड़ना मना है। ये कहानी अभी आप सुन रहे थे, कहानीकार थे श्री चंद्रशेखर वर्मा। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए नितिन मुकेश के गाए भजनों।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को सुना यादों की कसम फिल्म में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: चित्रपट से कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए जीना तेरी गली में इस फिल्म का गीत। इस गीत में अनुराधा पौडवाल का साथ दिया है नितिन मुकेश ने।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए दम लगा के हैसा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत

0: करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
2: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
3: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को, कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे।

0: श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

0: कुछ।
1: करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: जमाने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को

जौहर फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी

0: स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
1: श्रोताओ नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: आशीष जी। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
2: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
2: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
1: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
2: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
1: अच्छा।
2: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
1: जी।
2: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
1: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती है। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
2: जी,
1: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
2: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
1: अच्छा।
2: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
1: जी
2: उस टाइम पे जूनियर की थी।
1: अच्छा।
2: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
1: अच्छा।
2: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
1: जी,
2: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था,
1: हाँ।
2: 2006 में ये हुआ और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा।
2: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
1: जी।
2: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी। और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा।
2: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रॉन्ग

0: आंकड़े खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल,
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है
1: निश्चित रूप से बड़ी बात
0: जी।
1: होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे,
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं,
1: जी
0: राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे, तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं, कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे,
1: क्या बात।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लगा लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया मुझे इतना क्राउड दिखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था,
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है, तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा, वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था,
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: हाँ
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है, और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था,
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे, और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ,
0: था।
1: उतनी पॉपुलरिटी

0: इंडिया
1: पॉपुलरिटी
0: में।
1: नहीं थी, लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
0: कुल मिला के तालमेल बन गया,
1: तालमेल बन
0: बन
1: गया।
0: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
1: जो यंग बच्चे हैं,
0: जी
1: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
0: जी
1: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
0: अच्छा
1: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स
0: जी,
1: है।
0: मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं, तो
1: हाँ
0: उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
1: देखिए,
0: पूछना चाह रहा
1: मैं
0: था।
1: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
0: अच्छा
1: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है,
0: जी,
1: जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
0: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि
1: जी
0: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक
1: जरूर,
0: है, चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
1: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना,
0: जी
1: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है, तो वो या तो इतिहास रचता है, या तो अपना एक नाम बनाता है
0: जी
1: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ,
0: जी
1: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था,
0: जी
1: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए, चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं करूँ, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया, तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया, तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
0: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान, मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है, उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो, एक खेल है, उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी।
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
3: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और

0: खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
1: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रोअर और डिस्कस थ्रोअर थे,
0: जी
1: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए।
0: जी
1: और मेरे गुरु भी, जिनका आप नाम ले रहे, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
0: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
0: जी।
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था, इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन, तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा एडवांस है, गांव के बच्चों को उसको खेलने में मजा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है?
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है
0: जी।
1: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहां तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी है जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो ऐसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है
1: जी।
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: चुनौतियां तो बहुत हैं
0: जी।
1: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए
0: जी। चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब

0: तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें।
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
0: जी
1: हेमंत थोर से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
0: जी
1: यूरोपियन थोर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब,
0: जी
1: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनी भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनी फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोज़ देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने वो मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
0: जी
1: दुनिया में सबसे यादगार पल है हमारा।
0: और कोई अनुभव?
1: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
0: जी
1: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
0: जी जी
1: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो
0: जी
1: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
0: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं। तो सफल और असफल होने के बीच की किन-किन चीजों की भूमिका होती है, क्या-क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
0: जी
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
0: जी
1: आज सफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हेमंत थोर खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
0: जी
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
0: जी
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
0: जी
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
0: जी
1: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
0: जी
1: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
0: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है।
0: जी
1: मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
0: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था।

0: इसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
3: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
4: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब,
3: एक ऐसा कार्यक्रम
4: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
4: और एक नए भारत की आवाज,
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
4: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
6: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
5: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे?
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का राग आभोगी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है अनीश प्रधान ने और सारंगी पर हैं लियाकत अली खान।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप पंडित जगदीश प्रसाद का राग अभोगी में ख्याल गायन सुन रहे थे। संगत कलाकार थे तबले पर अनीस प्रधान और सारंगी पर लियाकत अली खान। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु

0: कौन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।